0: साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है।

का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान,
चक्कर ला सकते हैं।

जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्ने हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2, 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपनी स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है।

नमस्कार, सुप्रभात प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी सुबह की पहली किरण, जहां हर शब्द में शांति है, हर भाव में विश्वास है। आज की पहली किरण समर्पित है उस प्रकाश को जो युगों से अंधकार को दूर करता आया है, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म का जीवंत स्वरूप, प्रभु श्री राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, राम एक विचार थे, राम एक मार्ग थे और वो आज भी हैं, हम सभी के मन में, हम सभी के आदर्श के रूप में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आज हम बात करेंगे श्री राम प्रभु को सबसे ज्यादा जिसके लिए लोकप्रियता मिली, जी हाँ, और उनको एक और उपाधि मिली, वो थी मर्यादित होने की, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसका अर्थ है वह पुरुष जो पुरुषों में आदर्श स्वरूप हो, जिन्हें धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के लिए उच्चतम मानदंडों का पालन करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अर्थ है वो आदर्श पुरुष जिन्होंने धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए जीवन जिया और एक श्रेष्ठ शासक, पुत्र, भाई, पति और मनुष्य के रूप में हर किसी के लिए एक आदर्श स्थापित किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है मर्यादाओं के पालन में सर्वश्रेष्ठ। मर्यादा का अर्थ है सीमा, नियम, कर्तव्य, धर्म और गौरव के साथ सदाचार। पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या पुरुषों में उत्तम। अब आइए जानते हैं कि आखिर में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों गया, क्योंकि इन्होंने वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा, राजपाट, परिवार और सुख का त्याग किया। इन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए शासन किया, जिससे रामराज का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इन्होंने एक आदर्श पति, पुत्र और भाई के रूप में सभी रिश्तों को निभाया, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त करके सभी सद्गुणों से युक्त अपना जीवन यापन किया। संक्षेप में कहूं तो श्री राम ने अपने आचरण और जीवन शैली से मानवता के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और आदर्श बना सकता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हम सभी के हृदय में वास करते हैं, श्री राम प्रभु।

मर्यादित होने के कई सारे गुण हैं, जिसमें एक गुण ये भी है कि प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के उपरांत भी उन्होंने एकमात्र धर्म पत्नी यानी माता सीता का सदैव अनुसरण किया, जिनसे विवाह उन्होंने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर किया था। हालांकि कुछ कम प्रचलित कथाओं जैसे जैन रामायण में उनका उल्लेख अन्य पत्नियों के साथ भी मिलता है, पर मूल वाल्मीकि रामायण और धार्मिक मान्यता के अनुसार वे सीता के प्रति निष्ठावान रहे और उनका जीवन एक पत्नी व्रता का प्रतीक है जिसमें अन्य रानियों का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम की एकमात्र पत्नी देवी सीता थी, जो राजा जनक की पुत्री थी, जो की आदर्श पत्नी और धर्म पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और जैन रामायण जैसे ग्रंथ में राम के कई विवाह जैसे उत्तरा, वरुणी और लक्ष्मी के साथ बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा यानी एका पत्नी व्रता का पालन किया और उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जहाँ वे केवल सीता के प्रति समर्पित थे। तो आइए हम भी अनुसरण करते हैं सियावर रामचंद्र का।

यूं तो श्री राम के बहुत सारे गुण हैं, पर श्री रामचंद्र की खासियत उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, आदर्शवादी व्यवहार, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता में निहित है, जिन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में हर रिश्ते में अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपने शांत, सौम्य और तेजस्वी चरित्र के कारण चंद्र कहलाए, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है।

अब मैं चर्चा करना चाहूंगी श्री राम प्रभु के उन गुणों के बारे में जो आज भी अनुसरण किए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रचलित गुण, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। वे हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करते थे, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा, उन्होंने हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किए, जैसे पिता की आज्ञा का पालन यानी वनवास, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रेम और एक निष्ठावान मित्र यानी सुग्रीव और निषादराज की मित्रता, धैर्य और सहनशीलता, कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे वनवास और सीता के हरण में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, विनम्रता और सौम्यता। राजा होकर भी वे अत्यंत विनम्र और मिलनसार थे, उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उन्हें चंद्र यानी चंद्रमा कहा गया। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक, वे एक न्यायपूर्ण और प्रजा के हित चाहने वाले राजा थे। सत्यनिष्ठा और वचन के धनी, वे अपने वचनों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह पिता के वचन का पालन हो या फिर मित्र के साथ किया गया वादा। परोपकारी, वे दूसरों का भला करने वाले संत हितैषी थे। तेजस्वी और शक्तिशाली, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और दानवों का नाश करने वाले थे, लेकिन उनका तेज सौम्यता से युक्त था। कुशल संचारक और अनुशील, वे स्पष्ट बोलते थे और हर परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लिया करते थे। तो इतने सारे गुणों से युक्त रहा जीवन हमारे प्रभु श्री राम का। उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों से कुछ तो चुरा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं श्री राम प्रभु के एक और गुणगान यानी भजन की ओर।

श्रोताओं, आपने श्री राम प्रभु का एक नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में सुना होगा, रामचंद्र। आखिर इसका मतलब क्या है? रामचंद्र का मतलब है राम जैसा चंद्रमा, जो भगवान राम यानी विष्णु के अवतार और रामायण के नायक, और चंद्रमा यानी चंद्रमा शब्द को मिलाकर बना है। ये नाम दिव्य, शांत, आकर्षक और पवित्र गुणों का प्रतीक है, जो भारत में एक लोकप्रिय नाम और उपनाम है। राम दो शब्दों से मिलकर बना है, रमना यानी आनंद देना, और दूसरा रम यानी समा जाना, जिसका अर्थ है परमात्मा या सर्वव्यापक। चंद्र, जिसका अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता, सौंदर्य और चमक। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा होगा।

श्रोताओं, ये नाम यानी रामचंद्र भगवान राम की शांति, सुंदरता और दिव्य गुणों को चंद्रमा के साथ जोड़ता है, जो उन्हें सुखदायक और आकर्षक बनाता है। ये नाम धार्मिकता, वीरता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। ये दक्षिण भारत में एक आम नाम है, एक उपनाम है, खासकर तमिलनाडु और केरल में, और पूरे भारत में लोकप्रिय भी है। ये भगवान राम के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

वैसे तो श्री राम एक पूरा युग अपने अंदर समेट के चलते हैं। त्रेता युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता माने गए हैं प्रभु श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक बनकर सीता के साथ 14 साल का वनवास किया और रावण का वध किया, जिससे वे आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में पूजे जाते हैं।

श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए।

इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे राघव, दशरथी और रामलला, जिनमें सबसे प्यार से अगर हम किसी नाम से बुलाते इन्हें तो वो है रामलला, क्योंकि आज भी हम उन्हें एक तन्हे से, सौम्य, प्यारे से, कोमल बालक के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर धन की स्थापना की और दुष्ट रावण का संहार किया। संक्षेप में कहें तो भगवान राम हिंदू धर्म के एक केंद्रीय चरित्र हैं, जो नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है।

राम यानी अयोध्या की पावन भूमि पर जन्मा एक बालक जिसके चेहरे पर करुणा, हृदय में धैर्य और आचरण में धर्म था। वनवास मिला पर राम ने प्रश्न नहीं किया, सिंहासन छूटा पर सत्य नहीं छोड़ा, राज्य गया पर मर्यादा नहीं गई। वन में रहकर भी राम राजा थे क्योंकि उनका राज मन पर था, किसी अन्य पर नहीं। श्रोताओं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज का राम। आज के युग में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रामू। पिता ने वादा किया था मेले ले जाएंगे पर अचानक काम आ गया। रामू उदास हुआ पर बोला, पापा आप काम कीजिए, देश और घर पहले है। माँ ने पूछा, बेटा गुस्सा नहीं आया? रामू बोला, राम जी ने भी तो वनवास स्वीकार किया था। यही है आधुनिक युग का राम, कर्तव्य पहले, भावना बाद में।

श्रोताओं, श्री राम के जीवन से जो सीख मिलती है वो कुछ यूं है, माता पिता का सम्मान करें। आज के बच्चे सवाल करते हैं, राम ने स्वीकार किया था, सत्य का साथ दें। आज लोग सुविधा देखते हैं, राम ने धर्म देखा था, त्याग की भावना। आज मेरा अधिकार चलता है, राम ने मेरा कर्तव्य सिखाया। नारी सम्मान, सीता के लिए समुद्र पार किया, आज समाज को वही सम्मान चाहिए। तो अगर अपने जीवन को किसी काबिल बनाना है तो थोड़े से आदर्श हमें श्री राम के जीवन से अपने जीवन में उतारने चाहिए।

दोस्तों, आज का युवा कहता है मेरे सपने पहले, राम कहते हैं मेरे कर्तव्य पहले। आज का समाज कहता है जो आसान हो वही सही, राम कहते हैं जो सही हो वही करो। अगर हर घर में एक राम हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि राम को मंदिर में नहीं मन में बसाना है। राम दीप नहीं जीवन की लौ है, राम कहानी नहीं संस्कार है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे एक प्रश्न करूं। प्रिय श्रोताओं, आज सोचिए, अगर राम आज होते तो क्या वे मोबाइल छोड़ देते? क्या वे गुस्सा छोड़ देते? क्या वे सत्य का साथ देते? उत्तर मन से दीजिए, क्योंकि राम आज भी आपके और हमारे भीतर ही जीवित।

चलते चलते यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा राम बन सके। मैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा फिर मिलूंगी एक नई पहली किरण के साथ, जहां जीवन को दिशा मिले और मन को शांति। जय श्री राम। राधे राधे। खुदा हाफिज। रब राखा तो सब राखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: A very good morning to all of you. आप सभी का वेलकम है आपके मॉर्निंग वाले शो में. आपने ट्यून किया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन. और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. ओबी लेकर हाजिर हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो. कौन सा संडे स्पेशल जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं लेकिन 6 दिन के इंतज़ार के बाद 7वां दिन ज़रूर आ जाता है. सो भाई इतना ख़ास दिन है और आज डेट भी जो है वो 21 तारीख हो गई है. तो कहीं ना कहीं इस ख़ास दिन को और भी ज़्यादा आप ख़ास बनाने वाले हैं. फ़िलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. सो चलिए अब देखते हैं कि भाई संडे को और भी ज़्यादा संडे जैसा कौन बना रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही में इतनी ज़्यादा पार है और वो है थॉट ऑफ द डे. क्यों? क्योंकि भाई थॉट ऑफ द डे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ दिन में कुछ मिला है, कुछ तो ऐसा मिला है जो मेरे हार्ट कोर में ही जाकर सीधे बस गया है, है ना. ऐसा बहुत बार लगता है या शायद हर बार भी लग सकता है. खैर वो तो आपकी कैपेसिटी पे है कि भाई कितना आप चीज़ों को इस तरह से रखते हैं अपने पास. सो चलिए अब चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है. एंड साथ ही साथ आज का डे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है. सो कैसे स्पेशल है आपने सोचा है? आपने ध्यान दिया या नहीं? सो अगर नहीं दिया है तो चलिए मुझे बताइए कि आज का डे क्यों स्पेशल है. आखिर ऐसा क्या है आज के दिन में जो इसको और भी ज़्यादा अलग और भी ज़्यादा स्पेशल बना रहा है. फ़िलहाल एक बार वापस से चलते हैं आपके थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो लेकर आए हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan.

सो जैसा आज का दिन स्पेशल है, जैसे आज का संडे खास होता है, उसी तरह आज का थॉट ऑफ द डे भी है। कैसे? आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि जिंदगी में अंधेरा भी है और रोशनी भी, और तुम उन रोशनी में से एक हो, सारी रोशनी के एक ऐसी रोशनी जो सभी को मिलकर बनती है। बिलीव मी, थॉट इतना ज्यादा प्यारा है कि सच बता रहे, मुस्कुराहट आ रही है। क्यों? क्योंकि यार ये सच है, जिंदगी में बहुत सारे अंधेरे आते रहते हैं, हमेशा से रहे हैं, और अब तो जब से हम लोग कहते ना कि सो कॉल्ड मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद से तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आने लग जाता है। सो जिंदगी में डार्कनेस है, अंधेरा है और रोशनी भी है, और उन तमाम रोशनी में से हम एक हैं, यानी सभी रोशनी के एक ऐसी रोशनी जो सभी को मिल करके बनती है। सो कितनी भी बात हो, कुछ भी हो, हमको ये पता होता है कि हाँ, हमारी लाइफ से और हमसे बड़ा तो कुछ भी नहीं हमारे लाइफ के अंदर, क्योंकि इंसान की लाइफ के अंदर चीज़ें होती है, लाइफ से बड़ी नहीं होती है। लाइफ तो सबसे बड़ी है ही है, जब लाइफ है तो अप्स भी है, डाउन्स भी है, सही भी, गलत भी, जैसा भी आपको लगता है। सब कुछ फील कब होता है? जब आप लाइफ में होते हैं। सो लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, लाइफ ऑलरेडी सबको कवर करती है। उसी तरह जिंदगी में जो आपकी रोशनी है और साथ ही साथ अंधेरा भी है, जब उस रोशनी की तरफ आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उन तमाम रोशनी में से आप एक हो, और सारी रोशनियों में के एक रोशन चेहरा, एक रोशन उम्मीद आप खुद के लिए हैं। और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, यानी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसका एक पूरा अगर पैकेज देखा जाए तो डेफिनेटली आप हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा थॉट कह रहा है, लेकिन ऐसा थॉट हमको हाँ कहने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। थॉट्स का मज़ा तब आता है जब उसको बहुत ही आराम से समझने की कोशिश की जाए, जब उसको रख करके देखने की कोशिश की जाए, तब जाके वो धीरे धीरे कहीं जा करके अपनी चीज़ों को डिफाइन कर पाता है, तब जा करके हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं कि हाँ, ये लाइफ में आखिर किन किन जगहों पे है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और आप खुद भी अपनी ज़िंदगी की तमाम रोशनियों में से एक रोशन खुद को पाते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ कि ये सच है। फिलहाल आइए इस गाने को मुकम्मल सुनते हैं और वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और आज है संडे स्पेशल शो।

0: 21 जून 2026 दिन रविवार, साथ ही साथ योगा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वाला। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सभी को उनकी अच्छाइयों का फल मिलता है, सभी को उनका रिवॉर्ड मिलता है। मेरे लिए आपके भेजे गए मैसेजेस, आपके दिल से निकली हुई दुआएं मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती है। सो आइए इसी कड़ी में चैट बॉक्स पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। सो सबसे पहले जो मैसेज आया है इस शो में वो आया है आशु मिश्र जी का फ्रॉम लखनऊ। आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह हो या शाम रोज़ कीजिए योग, निकट नहीं आएगा कोई भी रोग। योग दिवस की शुभकामनाएं आपको भी। एंड मुकेश लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड आपने लिखा, हैप्पी फादर्स डे, मेरे लिए तो पापा ही सब कुछ है। देखा, मैंने एक दिन कहा था ख़ास है, दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि योग दिवस के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको ध्यान है कि आज फादर्स डे भी है। सो सभी सुनने वाले, सभी ज्ञानस्थली फैमिली के मेम्बर्स को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिन बहुत ख़ास है, इसलिए नहीं कि आज ही फादर्स डे, इसलिए कि आज उनको हम समझने के लिए थोड़ा सा और वक्त देते हैं। सविता दुबे जी मौजूद हैं हरखापुर गोंडा से, लिखा है, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, आपका स्वागत करते हैं सविता जी, गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। प्रीति जी हैं बहराइच से, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अमित सिंह हैं फ्रॉम मुंबई, लिखा है, अंधेरे संसार में छोटी सी रोशनी भी एक अलग पहचान बना लेती है। बना तो लेती है, ये बात तो सच है। प्रीति जी लिखती हैं बहराइच से, लाजवाब थॉट, इसका कोई जवाब नहीं। जी हाँ, जहाँ है तो सारा जहाँ रोशन, और ज़िंदगी में रोशनी है तो रोशनी है ज़िंदगी। क्या बात है ना, बेशक सही फरमाया आपने। आशु जी ने लखनऊ से लिखा है कि किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जो हम जानते नहीं। क्या बात है, ये पहली बार सुना था मैंने, बट ये है सच्चाई। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड डेफिनेटली आज इस संडे को हमको ये तो जानने को मिला कि भाई लाइफ में जो कुछ भी हमारे रोशनी है, जो कुछ भी लाइट है, उसका अगर सारा हम मिला ले तो एक पैकेज बन जाते हैं हम खुद। यानी हम हमेशा बेहतर ही चाहते हैं, चाहे खुद का हो या दूसरे का। तो आपकी नीयत अगर है ऐसी, सो जाहिर सी बात है वो रोशनी है, और उस रोशनी का पूरा पैकेज आप खुद हैं। सो प्राउड कर लीजिए भाई खुद पे, आज खुद को देख के मुस्कुरा दीजिए। किसी को और कोई अप्रिशिएट करे, कोई और बोले, क्या मतलब है। खुद को भी प्रपोज किया जाए, खुद को भी निहारा जाए, और खुद की भी तारीफों में कसीदे पढ़े जाए। ऐसा है अपना दिल। सो रोकिए नहीं, क्योंकि आज तो संडे है, और आज तो आप बहाना भी नहीं बना सकते कि आज वक्त नहीं है। आशु जी लिखती हैं कि चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी हुई चांदनी का क्या करूं मैं। क्या बात है। एंड मुकेश लिखते हैं, वेरी स्पेशल डे, आई लव यू पापा। यस ऑफ कोर्स, और ये चीज़ अगर आज हम अपने फादर्स को सामने से बोल सके तो क्या बात है भाई साहब, आज तो इमोशन बह बह के बाहर आ जाएंगे। और आज घर का माहौल जो है, पिता और फैमिली में हो जाएगा बेशक। सो चलिए भाई, और कहते हैं कि हर चीज़ के मायने अगर अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, अपने हिसाब से आप देखते हैं, तो उसमें निकल ही आता है। तो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग ने भी शायद अपने मायने अपने में ही बता दिए हैं। सो हम सभी को, आप सभी को फादर्स डे की और इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये खूबसूरत सा गाना डेडिकेटेड है हर उस फीलिंग को जो आज फादर को लेकर है।

0: भाई रब ने सच में फादर को जो दिया है वो जोड़ी बना करके दिया, और कहते हैं कि भाई जो रब की बनाई हुई ये जोड़ी होती है कसम से शानदार होती है। सो आज हम सभी अपने फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ उनको सामने से हम बोल सके, क्योंकि हमेशा हम इस बात में रह जाते हैं कि भाई हम अपने फादर से आखिर कैसे बोले, इतनी सख्त मिजाजी है, या यूं कहे कि शायद कई बार तो शर्म भी आ जाती है, लेकिन शायद आज इन सब से परे हो करके जा करके बोलना ही होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो जज्बात हैं जो अपने फादर्स को लेकर के, शायद तभी हम उनको बयां कर पाएंगे और वो भी फिर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि फादर ऐसी भूमिका में आ जाते हैं कि फिर बहुत कम ही लोग उनसे अपनी बातों को कह पाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ऑफकोर्स ये बातें उनको सामने से कहा जाए तो सब कुछ बहुत और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, राइट? सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

वैसे तो जब कोई हमको ताकीद करता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है। ताकीद मतलब जब कोई समझाता है, ठीक। फादर ने भी बचपन में बहुत सारी बातें बताई होंगी, बेटा ऐसा बेटा वैसा। आज ऐसी कौन सी बात है जो बचपन में तो समझाई थी पापा ने, लेकिन आज बहुत ही रिलेवेंट लगती है? आज जब उस बात को आप सोचते हैं और अपने तरह से सोचते हैं तो आप सच में गहरी सोच में चले जाते हैं। साहिर ऐसा कुछ तो कहा ही होगा, सभी के फादर कहते हैं। शायद गौर करेंगे तो खेलते खेलते या सामान लाकर देते या हमारी ख्वाहिशों को पूरा करते करते या हमारे रोने पर कुछ ना कुछ वो बताते जरूर रहते थे। और उन्हीं बातों में शायद आया जैसा भी वक्त है कि हम कुछ ऐसी बातों को फील करते हैं जो पापा ने कही थी, है ना? जी हाँ, सवाल तो कई है और आज वैसे भी कॉल इन प्रोग्राम है 10 से 11 गाएगा गुंडा विद आरजे अदनान, लेकिन आज बोलेगा गुंडा और साथ ही साथ आज दो लाइन जरूर गाएगा गुंडा फादर के नाम। सो आज फादर के लिए दो लाइन गाने का मौका हम जरूर दें खुद को, क्योंकि आज पापा को जो प्यार करते हैं वो आज अपने रेडियो पे हम जरूर बोल सके और कोशिश करें कि पापा भी उस रेडियो को सुन रहे हों, ताकि उस रेडियो यानी इस फैमिली के जरिए आप अपनी ही फैमिली में अपने फादर तक ये बात आप जरूर पहुंचा सकें। फिलहाल एक सवाल है और सवाल बड़ा ही प्यारा सा है। सो आपके बचपन में आपके पापा के लिए आखिर कौन सुपर हीरो थे? क्या वो सुपरमैन थे या आपकी बाइक ठीक करने वाले मैकेनिक? जी हाँ, आपके बचपन में आपको याद होगा कि आपके फादर के लिए भी कोई सुपरमैन था। सो क्या वो कभी किसी सुपर हीरो की बात किया करते थे या उनकी बाइक को या उनके सामान को ठीक करने वाले मैकेनिक या मिस्त्री, ये हुआ करते थे? इसको भी आप बता सकते हैं। और फिलहाल फादर्स को डेडिकेटेड ये खूबसूरत सा सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं अपने गोंडा FM पर, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ, सो बड़ी ही खूबसूरत सी म्यूज़िक है ये, और ये म्यूज़िकल ट्रैक स्पेशली फादर्स को डेडिकेटेड, और जाहिर सी बात है इसको सुन करके काफ़ी सारे इमोशंस भी आ जाते हैं। मतलब ये आज दिन ही ऐसा है जब हम अपने इमोशंस खुल करके रख पाते हैं, और होना भी चाहिए यार। मतलब हर बार छिपाना, हर बार रोक देना, ये जायज़ नहीं है। बयां होना चाहिए, बयां करना भी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह और हर बार, लेकिन कहीं कहीं और कुछ बार करना ज़रूर होता है। फिलहाल चूंकि मैंने पूछा था कि भाई बचपन में आपके फादर के सुपर हीरो कौन थे, कोई सुपर हीरो था या सुपरमैन था या फिर उनकी बाइक या साइकिल को सही करने वाले मैकेनिक। देखिए, सभी के फादर्स की हो सकते हैं अलग अलग सुपरमैन, क्योंकि भाई सभी के अपने अपने बिलीव होते हैं। किसी के लिए सच में उनकी बाइक को सही करने वाले मैकेनिक, तो किसी के लिए उनके ज़माने के कोई हीरो या उनके खुद के फादर, क्योंकि हमने अक्सर दादाओं के किस्से सुने होते हैं कि भाई दादा ऐसे थे, दादा ने फिर ऐसे किया, और उस वक्त दादा ने चूंकि ऐसी ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस वक्त क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी या उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या वैल्यू एड्स की थी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं अपने फादर से, और आज का दिन ऐसा है जब बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम 10 से 11 कॉल इन प्रोग्राम करेंगे, हम कहीं ना कहीं वो बात जो नहीं बोल पाते हैं वो फादर्स को लेकर के आज हम बयां करेंगे अपने 89.6 FM के इस मॉर्निंग वाले शो में, कॉल इन में, क्योंकि ये भी फैमिली है। और ये फैमिली आज पूरा मौका देने वाली है कि आप अपने फादर को लेकर जो फील करते हैं वो आज रेडियो के ज़रिए भी उनको बता दीजिए, और अगर कह सकते हैं सो बोल दी आई लव यू पापा। ये तो सबसे खूबसूरत शब्द होगा आज का बेशक। सुबह ही बहुत सारी फीलिंग है, और फादर्स की अगर हम बात करें तो मेरे फादर के लिए भी उनके सुपर मैन जो थे वो थे साइकिल बनाने वाले, उसके मिस्त्री। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे याद है काफ़ी पहले पापा साइकिल से चलते थे। इवन मुझे ये भी याद है कि मैं आगे बैठा करता था, और छोटी वाली गद्दी जो कस्टमाइज करा के लगवाया जाता था वो लगवाई थी ताकि आराम से बैठ सके। मतलब उनका ऑफिस से आना और आने के बाद सीधे ज़िद करने पर मार्केट ले जाना, और यहाँ गोंडा में लोकल में एक मिठाई बनती है, और वो मिठाई जो होती है वो डार्क कत्थई कलर कह सकते हैं, जिसको हम खजुरिया भी बोलते हैं या छुआरा भी बोलते हैं, वो बड़ा पसंद था। इवन घर के कुछ ही दूर पर आज भी बनता है, और उसको लेकर के जब भी उनका आना साइकिल से और ज़िद करना, ऐसी ही धूप में मई जून जुलाई मंथ्स तो कोई भी हो, बस एक ही ज़िद रहती थी कि नहीं चलना है और खाना है। अच्छा, फादर भी आते ही घर में ना जा कर के बाहर ही बाहर बैठा करके ले जाते थे, और जो भी ख्वाहिश होती थी उस सुपरमैन की तरह वो पूरी कर दिया करते थे, और इसी तरह हम वो मिठाई खा लिया करते थे। आज भी इवन जब वो मिठाई खाते हैं तो वो दौर एक बार को भले ही एक मोमेंट के लिए याद आए, एक पल के लिए, लेकिन वो याद आता है। वो एक इतनी लाजवाब मेमोरी है कि वो हमेशा जुड़ी रहेगी उस मिठाई से, उस एरिया से। और जब पापा को देखो और बाकी सारी चीज़ें याद करो तो उसमें भी एक याद यही रहेगी। फिलहाल मुझे लगता है सभी के फादर्स के लिए उनके सुपरमैन अलग रहे हैं आपके बचपन में। अगर उन्होंने कभी जाहिर किया हो कि उनके सुपरमैन कौन है तो आप ज़रूर इस बात से वाबस्ता होंगे। फिलहाल आज बहुत सारी बातें हम करेंगे फादर्स को लेकर के, लेकिन नहीं भूलेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। हेल्थ को लेकर कुछ जुड़ी हुई बातें और फादर को लेकर जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं, ये आज हम साझा करने वाले हैं अपने कॉल इन प्रोग्राम में। कॉल इन प्रोग्राम में आपको मिलाना होगा 6393316429 पर, यानी 6393316429 पर 10 से 11 बजे के बीच में, यानी अभी से 19 मिनट बाद जो है वो हम आपसे कॉल इन प्रोग्राम में बातचीत करने वाले हैं 10 से 11 बजे के बीच आपके गायगा गोंडा विद आरजे अदनान वाले शो में। भाई ये सारी बातें होंगी, बेशक होंगी, और बहुत सारे इमोशंस भी हम जाहिर है कहीं ना कहीं जाहिर करने वाले हैं अपने इसी शो में। और उससे पहले आइए इस संडे को और भी ज़्यादा ख़ास बनाते हैं। कुछ ऐसी सिंगर की वॉइसेस हैं जो हमारे
गाने को और भी ज़्यादा फ्रेश कर देती है और मॉर्निंग को रिफ्रेश कर देती है। और अगर अपनी लाइफ की बात करें सो लाइफ में रीस्टार्ट ले आती है। ये सब कुछ होता है हमारे इन गानों में। तो आइए खूबसूरत सा नगमा एंजॉय करते हैं मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल शो गागा गुंडा विद आरजे अदनान।

सो भाई आज है 21 जून, लेकिन हमको ये क्या पता है कि आज ही के दिन क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 20 भी मना सकते थे, 20 तारीख सुनने में अच्छा लगता है, 20 जून, या फिर लगता है 22 जून, ये 21 जून को ही क्यों मनाया गया। खैर, दरअसल हम आपको बता दें कि नॉर्दर्न हेमस्फेयर में साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग का अर्थ होता है आपकी सोल और ईश्वर, जिसको आप कहते हैं कि निराकार है, उनका मिलन। और लंबा दिन ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए योग की ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए ये दिन चुना गया। तभी 21 जून का दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। और अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र ने इतने वक्त में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी मान्यता जल्दी नहीं दी है। सो 90 दिनों के अंदर 177 देशों का इसको समर्थन मिल गया और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई आसन करना है, लेकिन युज सब शब्द से योग का असली मतलब है जुड़ना, यानी इंसान की जो चेतना है और ब्रह्मांड की चेतना, इससे एक दूसरे का मिलना। ये सिर्फ बॉडी की कसरत नहीं है, बल्कि मन को साधने की कला है। योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बॉडी फ्लैक्सिबल हो जाती है, आप बीमारियों से बचते हैं, बल्कि सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करना, इस यूनिवर्स को समझना, ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, जो आपकी सांसें जा रही है, ये जो वक्त पल दर पल गुजर रहा है, जो मौसम चेंज हो रहे हैं, ये जो हवाएं चल रही है, ये जो नेचर अपना रंग बदल रही है, ये जो पल पल कुछ घटता जा रहा है, ये सब कुछ महसूस करना। और इसीलिए कहते हैं ना कि ये सिर्फ बॉडी तक ही नहीं है, बल्कि ये उस सोल तक भी है जिसके ज़रिए हम शायद सोचते समझते हैं। इसके अलावा 2015 का ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और एक साथ 35,985 लोगों ने योग किया था। इसमें 84 अलग अलग देशों के लोग शामिल हुए थे और सभी एक जगह सबसे बड़े योग सेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि आपने कभी सोचा हो या ना सोचा हो, योग किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि योग एक वे ऑफ लाइफ है, यानी लाइफस्टाइल को लेकर के जीवन की एक पद्धति है। पूरी तरह से ये साइंस बेस्ड है और इसको कोई भी अपना सकता है। इसलिए अंतरिक्ष में नासा के वैज्ञानिक भी तनाव कम करने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए योग की प्रैक्टिस करते हैं। ये शायद आपको जानकर हैरानी हुई हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। फिलहाल बातें तो बहुत सारी है योग के बारे में भी और बाबा के बारे में भी, जिसको अब हम इस म्यूजिकल ब्रेक के जस्ट उस पार करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जब जाएंगे इस ब्रेक पर तो सीधे लौटेंगे उस पार जहां पर वक्त हो चलेगा यस कॉल इन प्रोग्राम का। और आपको नंबर तो याद ही है, 6393-316-429। जी हाँ, 6393-316-429, ये नंबर आपको याद है और इसी नंबर पे वापस आना है और उसके बाद सीधे चलना है बात करने के लिए, बतियाने के लिए और अपने कई सारे इमोशंस हमसे साझा करने के लिए और पापा से जुड़ी हुई मेमोरी, ऑफ कोर्स मार भी होगी और उससे कहीं ज़्यादा प्यार भी होगा, जब बहुत कुछ दिया होगा और बहुत कुछ ला करके हमको उनसे ही मिला होगा। सो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आपसे आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए सीधे चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस आते ही शुरू हो जाने वाले हैं आपके साथ आपके अपने मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। एंड यस, बहुत कुछ बात होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत सारे इमोशंस आज हमारे सामने आने वाले हैं,
यानी काफ़ी कुछ होने वाला है हमारे आज की इन बातों में। सो चलिए क्या है देखते हैं और जानते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं। सो फिलहाल अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस से आने के जस्ट बाद बातचीत शुरू करते हैं।

0: सो संगमरमर की मीरारे क्या सुनेंगी भाई, उससे पहले मुझे सुनना है कि आपके दिल में आज अपने फादर को लेकर के क्या है, यानी आज आप पापा से क्या कहने वाले हैं जो आप यूजुअली सामने से तो नहीं कह पाते लेकिन आज रेडियो पर ज़रूर बयां करने वाले हैं। और साथ ही साथ योगा से जुड़ी कुछ बातें क्या अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा भी गहरी सांसें लेते हैं, अगर हाँ तो कोई बात नहीं, ये शुरुआत हो सकती है आपके योग की। सो फिलहाल आपको नंबर जो है वो बता दिया गया है 6393 3164 29, यानी 6393 3164 29 ये नंबर है और इसी पर आपको कॉल करना है। और आज हम कोशिश करने वाले हैं कि भाई जल्द से जल्द आपकी बात सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को हम अटेंड करें, क्योंकि जाहिर है सभी के मन में और सभी के दिल में अपने फादर को लेकर के इमोशंस होते हैं और हम साझा करना चाहेंगे अपनी ज्ञानस्थली फैमिली पर, यानी कि रेडियो 89.6 एफएम पर, और ये बातें कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाएंगी। सो चलिए अब शुरू हो चुका है आपका कॉल इन प्रोग्राम और अब आप कॉल कर सकते हैं 6393 3164 29 पर। जी हाँ, और ये नंबर आपके अपने 89.6 एफएम का। और फिलहाल मुझे लगता है कि भाई कॉल की शुरुआत हो गई है और कॉल आना भी शुरू हो चुकी है, तो चलिए आप सीधे चलते हैं सीधे आप तक और देखते हैं कि भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं अपने मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

0: हाँ जी, तो चलिए भाई कॉलर की तरफ सीधे चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट कॉल आज किसकी है इतने स्पेशल डे यानी फादर्स डे प्लस योगा डे के आज के इस खास दिन पर। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: मेरा नाम मोहसिना अंसारी है।
0: हाय मोहसिना, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और आज चूंकि फादर्स डे भी है और योगा डे भी है, क्या कहना है
1: सर? पहले तो जितने भी लिसनर्स इस समय हम लोगों को सुन रहे हैं, उन लोगों को दोनों दिवस जो है फादर्स डे और योगा डे, इन दोनों की बहुत बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर मेरा मानना है कि दुनिया में माँ का रिश्ता माँ का तो होता ही है, लेकिन जो एक अपने फादर से जो बॉन्डिंग होती है किसी भी बेटे की या बेटी की, वैसे भी लोग तो कहते हैं कि पापा की परी है, तो बेटों का तो काम वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाते, लेकिन बेटियां जो हैं वो अपने सारे जिद को अपने पापा से मनवा लेती हैं, क्योंकि मम्मा तो उनके साइड तो होती नहीं है, पापा ही हमेशा आते हैं नहीं मेरी बिटिया ये करेगी मैं इसको करके दूंगा। तो ये जो एक फीलिंग होती है बेटियों के मन में अपने अबू को लेकर के, वो बहुत ही स्पेशल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्पेशल बेटियों में से एक हूँ, अपने आप को मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि सर मेरे अबू जो हैं वो हम लोगों के साथ ज्यादा वक्त तो नहीं बिता पाए, क्योंकि हम 5 बहने हैं और मेरे घर में वाहिद मेरे पापा ही हैं इनकम का जरिया, तो वो तो हमेशा बाहर रहते थे काम के सिलसिले में। लेकिन हाँ, कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसा मतलब लम्हा नहीं है जब हम लोगों को वो हमारी ख्वाहिशों के जरिए पूरा नहीं करते थे, मतलब कुछ भी हो अबू ये चाहिए, हाँ बेटा हो जाएगा। अब मतलब हम लोग को ये तो नहीं पता होता था कि अबू किस परेशानी में है, किस मुश्किल में है, लेकिन वो जो उनका एक लफ्ज होता था, हाँ बेटा हो जाएगा आप टेंशन मत लो, सर ये आज भी हमें याद आता है। अपने हम घर के हो गए, ससुराल वाले हो गए, लेकिन अबू की ये बातें अभी भी याद आती है, और कभी कभी जब उन बातों को गौर से याद करते हैं सोचते हैं तो कभी कभी रोना भी आ जाता है कि हमारे फादर

0: ऐसी कौन सी चीज मतलब अपनी हर जीत को मनवाने के लिए?
1: अच्छा,
0: जो हमें मना कर दें, जैसे कि हमें कोचिंग क्लास करना था, उस समय कुछ पैसे की दिक्कत चल रही थी, हमने कहा अम्मी हम जाएंगे, वहाँ मेरी छोटी बहन जो है मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में ही कॉलेज जाते थे, तो हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास जो है वो सर कम आया करते थे कॉलेज में, तो हम लोगों ने सोचा कोचिंग कर लेते हैं, और बगल में जो दूसरा कॉलेज था वहीं पे होती थी कोचिंग, तो हमने कहा हम जाएंगे, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया, कहा नहीं बेटा अभी मतलब फाइनेंशियली हम इतने डिपेंडेंट नहीं है कि आपके कोचिंग का भी खर्चा उठाएं, लेकिन हमने अब्बू से कहा और एक ही लफ्ज कहा कि अब्बू हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, कोई बात नहीं बेटा आप जाओ, अम्मी को हम समझा लेंगे, बस सर ये बातें होती थी जो हम लोग अपनी जिद को अब्बू के जरिए मनवा लिया करते थे।
1: क्या बात है, बड़ी प्यारी बात है अपने की।
0: क्या दिन थे, अभी कभी कभी दिल करता है कि हम उस पुराने दौर में चले जाएं जहां हमारी सारी जिदों को पूरा किया जाता था बगैर ये कहे कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, आपसे आपको ऐसा करने का मतलब परमिशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बातें आजकल रुकावट हो जाती हैं, लेकिन कभी हमारे बचपन का दिन था, कभी कॉलेज का दिन था, ये लफ्ज कहने पर ही अब्बू कह देते थे हाँ बेटा आप टेंशन न लो ये हो जाएगा, तो सर वो बातें बहुत याद आती हैं।
1: So, वो बातें तो जाहिर सी बात है याद आएंगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपने कहा कि आप अपने घर की हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो बातें आपको काफ़ी इमोशनल याद आ जाती है, वो कर देती है। अच्छा, कुछ दो लाइन ऐसी जो पापा को डेडिकेट करना चाहें, उनके लिए कहना चाहें, या कोई गाने की दो लाइन सुनाना चाहें?
0: गाने, गाना हो सकता है।
1: अरे वाह,
0: सबसे प्यारा कौन है?
1: क्या बात है भाई, बड़ी प्यारी बात आपने कही, एंड वो बात जो दुनिया कहती है कि भाई इसको बोल दो ये ढाई आखर प्रेम के, अगर आज वो ढाई आखर प्रेम के, यस
0: माय गॉड, पापा मेरी जान है।
1: क्या बात है, क्या
0: और मैं ये चाहूंगी कि हम लोग उनका साया हम लोग के सरों पे हमेशा कायम रहे, लेकिन सर ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग कहते तो है ना कि मेरी उम्र भी लग जाए आपको, तो मैं अगर किसी को कहूँ तो वो मेरे अब्बू होंगे कि अब्बू आपको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले और मेरी उम्र भी आपको लग जाए अब्बू।
1: माय गॉड, बहुत इमोशन है इन बातों में, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी कोर बातों को यहाँ हमारी इस फैमिली के साथ में साझा किया, एंड बिल्कुल अबू सलामत रहें, बहुत सारी ढेरों दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद उनको है, और वो हमेशा खुश रहें, और आप यूं ही उनके बारे में बहुत सारी बातें हमसे हमेशा जुड़ जुड़ करके साझा करते रहें।
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। सो भाई, ये तो थी हमसे बात करने वाली मोहसिना, जो कि मोरबी गुजरात से सुनती हैं, रहने वाली गोंडा की हैं, और आज अपने फादर को लेकर बोला कि भाई हमेशा से कहते रहे थे कि हम बेटा तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर वो कोचिंग वाली बात भी साझा की, जब वो बात सामने भी आई, यानी जो कहा था वो करके भी दिखाया। इसी कड़ी में आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले लिसनर की तरफ, और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, एंड प्लीज पास में रखे रेडियो या स्पीकर से थोड़ा सा दूर हट जाएं, आपकी बात जो है वो रेडियो पर हो रही है अगर आपने चेक कर ली।
2: हेलो,
1: हमारे लिसनर्स को शौक बहुत होता है कि पता नहीं ये रेडियो पे चला रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं।
2: नहीं सर, उसका वॉल्यूम बढ़ा, मैं दूसरे कमरे में बैठी तब भी उसकी वॉइस आ रही है।
1: अरे मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड होती हुई नजर आती दोबारा। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो। खैर, आज फादर्स डे भी है सृष्टि, और साथ ही साथ आज योगा दिवस भी है, क्या कहना है?
2: कहना क्या, आप पूछिए
1: फिर हम बताएं। ओके, सो अगला सवाल आपके लिए है, और वो है पापा की खास कुकिंग। तो क्या आपके पापा ने कभी भी कोई भी ऐसी स्पेशल चीज बना के आपको खिलाई हो, जो आपको लगी हो कि मम्मी से कहीं ज्यादा अच्छी ये पापा बना लेते हैं?
2: मम्मी से बहुत ज्यादा अच्छी मेरे पापा सब्जी बनाते थे, पर रोटी जब बनाते थे तो बात करते हुए मुझसे बनाते पूरी रोटी चल जाती थी।
1: अच्छा, तो रोटी आपसे बात करते हुए बनाते थे और रोटियां जल जाती थी। माय गॉड।

0: गॉड,
1: मतलब खाने की लायक भी नहीं बचती थी।
0: वाव, क्योंकि ये सुनने में भले ही लग रहा हो कि रोटियां जल जाती थी, लेकिन उसके पीछे का प्रेम जो आपसे बात करने के दौरान आपके फादर दिखाते थे, उसकी वजह से ही ऐसा होता था, इसलिए मैंने बोला वाह क्या बात है। और सब्जी वैसे कौन सी बनाते थे सबसे ज्यादा बेहतरीन?
1: सबसे ज्यादा
0: मिक्स वेज, ओके, जिसमें कई सब्जियां मिली हुई होती हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मिक्स वेज आप खा रहे हो तो उसमें से कोई सब्जी एक दूसरे को ढकेल रही हो, अरे रुको रुको हम हैं, इतनी सारी सब्जियां तो भाई लड़ाई झगड़ा तो होना ही है।
1: लड़ाई झगड़ा था कि पहले इसको खाना है, नहीं फिर उसको खाना है, बस यूं ही ऐसे होता रहता था।
0: मिक्स वेज में आप क्या ढूंढ के सबसे पहले खा देते?
1: आलू
0: तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना कि मौसा जी आ जाते हैं और पैसा देके ही जाते हैं। तो आलू का बड़ा ही चार्म है। अच्छा, हम योगा की अगर हम बात करें तो चूंकि आपने बताया कि आप भी थोड़ा बहुत निकलने की शौकीन हैं, सो ये बताइए आप योगा से जुड़ा हुआ क्या जानते हैं अभी तक? आपको क्या लगता है योगा है क्या?
1: योगा एक एक्सरसाइज भी है हमारे लिए और हमें डिप्रेशन से दूर रखता है अगर हम कर ले
0: तो कहा क्यों नहीं करते हैं आप पे?
1: मैं नहीं करती हूँ, मुझे मम्मी को कराना पड़ता है।
0: तो सारी डिप्रेशन इसका मतलब आप मम्मी को देते हैं और उनसे करा के फिर खत्म करते हैं? तो देते ही क्यों?
1: नहीं,
0: अच्छा,
1: तो मम्मी को डॉक्टर ने बोला है कि इनको कराना है तो मैं उनको मॉर्निंग में कराती हूँ, फिर या तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो दोपहर में हो गया या फिर शाम को हो गया।
0: तो योगा में क्या कराती हैं आप, कौन कौन से आसन होते हैं
1: उनके? 10 योगे हैं और योगे? सर पे हाथ रख के एक्सरसाइज करना।
0: अच्छा,
1: उनके योगे अजीब गरीब ही है, समझ लीजिए।
0: अजीब है और गरीब है योगा?
1: हाँ, गरीब है।
0: अच्छा, तो उससे होता क्या है, मतलब फायदे क्या होते हैं उससे?
1: उससे फायदे ये होते हैं कि मतलब माइंड में अगर दर्द हो रहा है तो वो हट जाता है और बहुत कुछ होता है, नस टाइट होती तो वो भी सही होता है।
0: अच्छा, पहली बात तो देखिए माइंड में दर्द होता नहीं है, ये अगर दर्द होता भी होगा तो ये आपका दिया हुआ दर्द होता होगा।
1: नहीं, मेरा दिया दर्द नहीं होता है, कभी भी हमने मतलब कुछ बातें सोच ली पुरानी तो उससे मतलब हो गया।
0: ओके,
1: ये सब है।
0: तो ठीक है भाई, अब हम चाहेंगे कि कुछ दो लाइन आप भी डेडिकेट करिए फादर के नाम।
1: पहले तो मेरी मम्मी, मेरे पापा हैं, सब कुछ मैंने उस दिन लिखा, आज भी बोल रहे हैं। और दो लाइन की बात तो मैं बोली हूँ, जब खाली होने पर भी मैंने कभी पापा को ना कहते नहीं देखा, इस दुनिया में मैंने पिता से बड़ा कोई अमीर नहीं देखा।
0: वाओ, क्या बात है, बट ये बात बिल्कुल आपने सच कही है कि ना तो कभी हमने भी सुना ही नहीं है और कहीं से भी कैसे भी करके वो चीज आती जरूर थी, चाहे जहाँ से आए।
1: तो मैं सच बताऊँ कि बचपन में मैं छोटी थी तो मैंने सिर्फ एक ही बार मार खाई है, मैं उससे मार खाई बस पूरे सुबह से लेके रात में सोते तक मैं किसी से रो रही थी। तो पापा लेके आए, बहुत सारे सामान लेके आए, खाओ खाओ खाओ, मतलब वो मेरी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था जिसमें मैंने मार खाया था।
0: बिल्कुल, ओके, वाह, बहुत प्यारी बात कही आपने और मैं जरूर ये दुआ करूंगा कि मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें, आपके साथ रहें और जो पापा को भी आप मम्मी में देखते हैं आपको वो दोनों प्यार हमेशा मिलता रहे।
1: अपनी मम्मी में मैं फ्रेंड भी देखती हूँ, जगह सिस्टर भी देखती हूँ, पापा को भी देखती हूँ, क्योंकि वो पापा की तरह काम भी करती हैं, घर वालों की तरह घर का टाइम भी मुझे देती हैं, फ्रेंड की तरह भी रहती हूँ, फिर मैं उनसे कोई बात कर सकती हूँ फ्रेंड की तरह।
0: सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सृष्टि की, आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को बयां किया, थैंक यू। सो भाई, ये तो थी सृष्टि जिन्होंने बातचीत किया और अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है, क्योंकि आज फादर्स डे भी है और साथ ही साथ आज योग दिवस भी है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ और सभी को पापा दिवस को ढेर सारा शुभकामनाएं।
0: पापा दिवस
3: आपको भी।
0: अच्छा अरे कोई बात नहीं, चलता है। पापा बोलते तो पापा दिवस हो जाएगा।
3: और क्या, पापा दिवस ही तो है ना। और मैं थोड़ा खुश नसीब हूँ, ज्यादा ही खुश नसीब हूँ, ताकि मैं आपका पापा का तीन तीन बार मेरे को आशीर्वाद मिला है आपका पापा का।
0: बेशक पापा तो पापा होते हैं, सही बात है। तो भाई
3: और मैं अपना
0: प्लीज बताइए। हाँ नहीं भाई, मैं पूछने ही वाला था अपना वाला पापा।
3: मैं अपना पापा के बारे में बता रही हूँ। 11 साल हो जाएगा उनका गुजरे हुए, तो भी पापा का जो पापा से जो मैं जिद करती थी, क्यों करती थी, क्योंकि मेरा पापा भी थोड़ा पापा से उतना डरती थी पर उतना नहीं डरती थी। पापा भी तो बचपन ही जैसा था ना। मैं पापा का एक शरारती वाली बात बताऊं?
0: आप प्लीज प्लीज, हाँ अभी तक किसी ने नहीं बताया।
3: बचपन में जो 8-9 साल के होते थे, तो तब पापा अपना जो चूल्हा होता था ना, मिट्टी का चूल्हा
0: जी,
3: लीपा पोता रहता था, दादी चली जाती थी कुछ लकड़ी वगैरह लाने के लिए, चूल्हा का मिट्टी फोड़ फोड़ के खाते थे। उसके बाद जो मार पड़ता था मेरे दादाजी से, वो सब कहानी हम लोगों को सुनाते थे। और भी बात है, खेतों में जाता था, दूसरे को खेतों में जाके भुट्टा ले आके वो भूसे खाते थे। शैतानी वाली बात है।
0: क्या बात है, ये अभी तक किसी और ने साझा नहीं किया था। बट हाँ ये बात है कि पापा लोग अपने किस्सा बहुत बताते थे कि हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, और दादा दादी हमारे कैसा उनको सबक सिखाते थे, ये भी बताया था।
3: So, बड़े हो गए थे हम लोग भी, 12-13 साल के थे, तब मैं दादी का आंचल से चाबी खोल के ले आके, दादी का एक अपना एक बक्सा रहता था लकड़ी का, वो बक्सा निकाल के देखता था कि उसमें क्या है। वो बक्सा लेके एक तरफ दादी अपनी तरफ खींचती थी, एक तरफ पापा अपनी तरफ खींचते थे, और हम लोग हंसते थे वो सब देख के। मतलब माँ बेटा का प्यार इतना अच्छा था, पापा मेरा अच्छा ही था, बहुत ही अच्छे थे। पर आज ज्यादा याद आ रहा कि आज अगर पापा होते तो बहुत ही अच्छे होते, पर अब मम्मी है, चलो ठीक है, अब मम्मी में ही पापा को ही ढूंढती हूँ।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा,
3: और योग दिवस के बारे में बता रही हूँ। हाँ बोलिए।
0: हाँ, यही पूछना था मुझे।
3: योग दिवस के बारे में बता रही हूँ कि अगर घर का ही काम कर लिया जाए, पहले का खाना बनाने की जगह पहले था बैठ के खाना बनाया जाता था, बैठ के सब्जी काटा जाता था, बैठ के ही मतलब आटा गूंधा जाता था। आजकल तो कुकरों के बैठना बिल्कुल सबको ही भूल गया,
0: बैठना हर कोई भूल गया। नहीं, अब तो आप ज्यादा लोग बैठे रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप।
3: ओ नहीं, कुकरू होके बैठना, कुकरू होके बैठ के जो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, चूल्हे पे खाना बनाना, मसाला पीसना, ये सब भी योग में आता। हम तो बोलेंगे अभी का मिक्सर छोड़ दिया जाए, वॉशिंग मशीन छोड़ दिया जाए, सब पहले वाला नियम अगर चालू कर देना औरतें, तो उनका कमर दर्द हो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा।
0: वाह वाह वाह, मतलब हमको कोई और आसन नहीं बल्कि कुकड़ू आसन करने की जरूरत है।
3: कुकड़ू आसन नहीं, हम घर का ही काम बोल रहे, घर का काम खड़े खड़े होके खाना ना बनाए, बैठ के ही खाना बना लिया जाए, बैठ के ही सिलपट्टे पे मसाला पीस लिया जाए, बैठ के ही रोटी बेल लिया जाए।
0: हाँ, ये देखिए रोटियां तो बेल सकते हैं, लेकिन जिसके यहाँ रेक पे ऊपर किचन में रेक है और खाना थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर ही बनता है, तो मान लीजिए अगर नीचे बैठ के बनाना हो तो आलू उछाल के ऊपर डालना पड़ेगा फिर। अच्छा, खड़े होकर डालेंगे फिर नीचे बैठ के तब चलाएंगे, लेकिन हाथ नहीं पहुंच पाएगा इतनी ऊपर।
3: नहीं, गैस को नीचे रख लिया जाए।
0: अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं हमने, हमें तो लगा ऊपर ही ऊपर से हाथ ऐसे डाल करके ऐसे ही मतलब अंदाजे से चलाना है। कहाँ चला रहे हैं अभी नहीं पता, बस चल रहा है।
3: और आप भी आसन करिए। हेलो सर।
0: जी जी जी, कौन सा आसन बताइए।
3: मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा आसन है। आपका जो नल है, छोटा वाला नल, हैंडपंप, वो चला करके नहाया करिए, उसमें भी आसन होता है। नहीं तो मैं आपका जो छोटा वाला हैंडल है ना, कहाँ रखा है मुझे पता है, मैं चोरी करके ले आऊंगी।
0: ना भैया, हैंडल ना लीजिएगा, ना पानी, खाना सब रुक जाएगा, क्योंकि जो कुछ बनता है वो सब पानी की ही मदद से बनता है। तो हैंडल,
3: हाँ तो आप हैंडपंप भी चलाया करिए, साइकिल भी चलाया करिए, देखिए आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं आजकल तो वैसे ही सब कुछ करती हूँ, और अभी जीवन में थोड़ा मुश्किल चल रही है जमीन जथा को लेके, तो भी आपके साथ आज घर पर ही हूँ, छुट्टी लिया हूँ, तो आपके साथ बात करके मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ है।
0: अरे बिल्कुल, इसको भी एक प्रकार का योगा बोलते, पता है कौन सा? कौन सा योगा बोलते
3: है? मन का शांति का योगा। नहीं, आज काम से नहीं, नहीं, लिया हूं।
0: इस योगा को नाम दिया गया है
3: अदनान सर योगा।
0: नहीं नहीं, खीखी खीखी योगा।
3: अच्छा योगा है।
0: बहुत बढ़िया, लेकिन बड़े ही प्यार से आपने अपने फादर की शरारतों को बताया, प्लस उनकी अच्छाइयों को बताया। आज भले ही वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी यादों में पूरी तरह बसे हुए हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि माता जी को हमेशा सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें, और दोनों का प्यार आपको उनसे मिलता रहे।
3: आपका भी पापा अच्छे रहे, ताकि मुझे आगे भी आशीर्वाद मिलता रहे उनका।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छे रहेंगे और बिल्कुल आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन दो लाइन अब हम चाहेंगे फादर को डेडिकेट कीजिए।
3: ओहो, दो लाइन?
0: ओहो, ये तो पहले ही बता दिया था हमने।
3: नहीं, मुझे याद है नहीं उतना, तो भी गा रही हूँ, मुझे लगता भूल भाल हो सकता है।
0: तो आप भूलासन में जी,
3: जो आलिया भट्ट पे जो गाना फिल्माया गया ना, पापा मैं तेरी मन का टुकड़ा हूँ, दहलीज पार करा दे, बस इतना ही। गाना का मुखड़ा ही याद नहीं है, कुछ याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं, दहलीज पार करा दे, उसके बाद फिर क्या, कहाँ पहुँच जाएंगी आप?
3: कहाँ पहुँची थी ससुराल, वहाँ पर भी बार बार फोन आता था पापा का। अच्छा। शादी के बाद ही तो पापा के साथ जो रिश्ता है ना, और भी गहरा हो जाता है।
0: सही बात है, बिल्कुल।
3: सप्ताह में 2-3 दिन फोन आता था पापा का। पापा का फोन पे क्या, पापा क्या बोलता था फोन पे? मेरी मम्मी का सवाल से।
0: अच्छा,
3: तेरी मम्मी ने किया, तेरी मम्मी ने किया, तेरी मम्मी को समझा रही है, नहीं समझ रही, हर तरफ कहा चल लेके मम्मी से शिकायत मेरे को करते थे, मम्मी पापा को करते थे, यही शिकायत मिलता था मेरे को।
0: सही बात है।
3: अच्छा था, मेरे पापा बहुत अच्छा था, जो रिश्ता हमने पापा के साथ, मेरा ससुर भी अच्छा था, बहुत ही मजाकी अंदाज का था।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब आपको कहीं ना कहीं उनमें भी एक फादर की झलक जरूर मिली।
3: जी,
0: बहुत प्यारी बात।
3: मेरा पिछले वाला भी ससुराल अच्छा था, ये ससुराल भी अच्छा है।
0: चलिए,
3: अच्छा है, मतलब इन सब बच्चों में ना बचपना हुआ कुट कुट के भरा हुआ है। पहले भी अपना मायके में भी वैसा ही था, ससुराल में भी वैसा ही था, यहाँ पर भी वैसा ही है,
0: यही चीज चाहिए।
3: आप भी वैसा ही मिल गए।
0: अच्छा। खीखी खीखी आसन वाले?
3: नहीं, शरारती वाले। बचपना,
0: क्या बात है, आपके बातों में ही बचपना और बड़ी ही बेबाकी नजर आती है, बड़े ही बेफिक्री नजर आती है। आप हमेशा यूं ही खुश रहें, और ये अंदाज आपका हम लोगों को ऐसे ही महसूस हमेशा होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।
3: बस ऐसे ही जीवन बीत जाए तो क्या बात,
0: बस ऐसे ही बीत जाए, ऐसे ही बीत जाएगा।
3: आधा से ज्यादा बीतेगा लगता है अब।
0: नहीं नहीं, जितना बचा है सब ऐसे ही बीतेगा, डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया।
3: शुक्रिया सभी को शुक्रिया,
0: थैंक यू। सो भाई, ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी। अब हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर होते हैं और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन आ रहा है पापा के किस्सों को बताने।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, गिरते हुए को गले लगाया, सपनों को मेरे सच करने के लिए पापा ने हर दुख हंस के उठाया। वो कभी ना बोले मैं थक गया हूँ, वो कभी ना बोले मैं हार गया हूँ, उनकी आंखों के सपनों में मैं खुद को बार बार देख रहा हूँ। एक बार वापस से हम सभी को, आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: ब्रेक के बाद भी जारी है पापा के किस्सों की ये सवारी। सो कोई बता रहा है पापा की कौन सी रही है शैतानिया, तो कोई उनकी मिठाई वाली बातें भी बता रहा है, यानी मीठी मीठी बातें। सो सबके पापा अलग हैं पर प्यार सबका एक सा है, क्योंकि उनके कंधे पर बैठकर हमने पूरा ज़माना देखा है। और कॉल की लाइंस चूँकि खुली हुई है और आप भी फटाफट से मिलाइए 6393 3169 पर, यानी 6393316429, क्योंकि आज फादर्स डे है और आज योगा डे है और लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इसी कड़ी में चलते अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
1: सूरज ने लगाई, हेलो सूरज ने लगाई गालों पे लाली, सूरज ने लगाई गालों पे लाली, पंछियों ने बजाई सुबह वाली ताली, एतवार आया नया रौनक लाया। गुड मॉर्निंग सर।
0: वाह वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग टू यू। अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: अनु पांडे।
0: हाय अनु, कैसी हैं आप?
1: हाय सर, मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। सो आज डबल डबल स्पेशल डे, वैसे तो एक ही होता है लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं डबल डबल ट्रिपल हो जाता है, तो आज डबल डबल अच्छा वाला दिन है। सो क्या कहना चाहेंगे आप फादर्स डे को लेकर के?
1: सर योगा देश की और फादर्स डे की सभी को पहले तो बहुत बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी।
0: थैंक यू सो मच। सो फादर से जुड़ी हुई कुछ बातें जरूर बताइए फिर।
1: सर मेरे पापा ना बहुत अच्छे है, मेरे पापा क्या सबके पापा बहुत अच्छे है, पर मेरे पापा बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छे है। मम्मिया तो मतलब प्यार करती है पर जितना पापा प्यार करते है उतना मम्मिया नहीं करती है। ये गलत नहीं कहा गया कि पापा की परी हूँ, मम्मियों की तो परे होते हैं, परियां नहीं होती है।
0: सही पकड़े हैं।
1: हाँ, एकदम सही। मम्मी से अगर पैसे लेने हैं, अभी जल्दी की बात है, मुझको कुछ पैसे चाहिए थे। वैसे तो पापा की कैशियर मैं ही हूँ, लेकिन अभी अगर इजाजत की कैसे ले लूँ? तो मम्मी से बोली, मम्मी मुझको पैसे चाहिए, तो मम्मी बोली अभी ये वो बहुत खर्चे हैं, अभी नहीं लेना, एक काम करना बाद में ले लेना। मैंने कहा मम्मी मैं पैसे ले रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ, पापा से बता देना। मम्मी पापा से बताई, पापा कह रहे कोई बात नहीं, अच्छा क्या ले लिया बेटा। हमके देखो मम्मी मना कर रही थी, पापा ने कहा ले लिया तो अच्छा किया।
0: इस बात की बात
1: नहीं लेती तो नुकसान हो जाता।
0: नहीं तो इस बात से मम्मी को कितना गुस्सा भर गया होगा, ये आपने सोचा?
1: मम्मी को गुस्सा नहीं आता, ये तो है, मम्मी भी अच्छी है।
0: नहीं मम्मी जाहिर सी बात है अच्छी है, लेकिन मम्मी कुछ बचत सोच करके कर रही होंगी और आपने उस प्लान को कैंसिल करा दिया पापा से कह करके, तो मम्मी के अंदर वो गुस्सा जो भर गया होगा।
1: मम्मी तो फिर यही कहेंगे कि ना अपने मन की ही करती है और पापा का फुल सपोर्ट है, फिर जाओ
0: पापा है भाई सब चलता है, बिल्कुल।
1: और एक बात सर, मेरे पापा ना उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है।
0: अरे वाह,
1: सबसे अच्छा वो बाटी चोखा बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चाय।
0: क्या बात है, बाटी चोखा बनाते हैं।
1: हाँ
0: चलिए, अब की पापा आए और बाटी चोखा बनाए तो हमको 2 घंटा पहले बताएं।
1: और पापा मिठाई भी बहुत अच्छी बना लेते हैं।
0: मिठाई में क्या?
1: बर्फी। पर अभी वो नहीं बनाते, पहले बनाते थे।
0: अभी आप लोग इतना ज्यादा खा जाते हो, बेचारे कितना बनाएंगे।
1: नहीं सर ये नहीं है, अब पापा की परिया सभी लोग बड़ी हो गई है ना, तो फिर पापा नहीं बनाते, अब हम लोग कर लेते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो पापा बना देते थे, और मेरे जो बड़े पापा है उनको भी कुकिंग बहुत अच्छी आती है। फिलहाल अभी वो नहीं, मैं बहुत मिस कर रही हूँ, उन बड़े पापा से मेरी बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तो पापा से जब भी कुछ भी बोलो तो पापा तुरंत ही कर देते थे। किसी को घर पे बुलाना है, कोई भी हो, अगर डर लग रहा है, मन में थोड़ा सा डर है कैसे बुलाएंगे क्या है, तो बड़े पापा से साझा कर लो, कहे हाँ बुला लो, इस हफ्ते में बुला लेना, इस महीने में बुला लेना, बुला लो। और खाना खा मतलब कुछ भी खाना है अलग से तो पापा बना देते थे, किचन में भी हेल्प कर देते थे। और पैसे जब वो पैसे निकालते थे और पैसे गिनने के लिए बैठते थे तो हम लोग घेर कर बैठ जाते थे, पापा मुझको चाहिए तो सबको पैसे देते थे, भाइयों को भी देते थे और हमको, और सबसे बड़ी बात सबको बराबर ही देते थे, किसी को कम ज्यादा नहीं देते थे।
0: बिल्कुल सही बात है, पापा एक ऐसा बैंक है जहाँ पे सबको बराबरी से भी मिलता था और जितना चाहो उतना मिलता।
1: और जी सर, और एक बात, मेरे एक अंकल है, वो अंकल तो नहीं है, बड़े पापा है, बड़े पापा क्या के भैया दीदी सब लोग अंकल बोलते थे, तो हम लोग बचपन से अंकल बोलने लगे, तो जब थोड़ा बड़े हुए तो सब लोग कहे तुम्हारे अंकल नहीं, तब भी हमको एक ही नहीं आ रहा था कि हमारे अंकल नहीं है, थोड़ा और समझदार हुए तो पता चला कि अंकल नहीं है, मैं अंकल ही बोलती हूँ। मेरे अंकल ने मुझको खाना बनाया सिखाना है।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपको
1: अंकल ने मुझको खाना बनाने के लिए सिखाया है। मम्मी ने कुछ भी नहीं सिखा दी, मम्मी बोलती थी मेरी बेटिया खाना बहुत अच्छा बना लेती, तो मैं बोल रही थी मम्मी आपने सिखाया है, और तो अंकल ने सिखाया है।
0: तो एक हाथ नहीं पड़ता है।
1: कभी कभी पड़ जाता है,
0: पढ़ना चाहिए।
1: सर बचपन में ना, अभी इतनी बड़ी हो गई, पापा कभी नहीं मारे, कभी नहीं मारे, पर मम्मी के हाथ की पिटाई तो खूब हुई है, खूब खाने को मौका मिला है।
0: नहीं नहीं, वो तो आशीर्वाद मिलता रहता, मिलना चाहिए, अभी भी मिलना चाहिए ताकि सुधरे रहे।
1: सही बात है, अभी भी मिल जाता है,
0: वो चलता रहेगा। वैसे दो लाइन हम चाहेंगे पापा को डेडिकेट करते हुए जरूर कुछ सुनाइए आप।
1: जी सर, आपके कदमों में मेरा जहान है, आपके कदमों में मेरा जहान है, आप ही के वजह से तो मेरे लबों पे मुस्कान है, मेरे पापा ही तो मेरी दुनिया और मेरा जहान है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी लाइंस पापा को डेडिकेट किया। और हम बहुत सारी दुआएं करते हैं कि फादर आपके हमेशा स्वस्थ रहें और यूं ही आप लोगों को ऊपर प्यार लुटाते रहें।
1: जी सर, और मैं पापा को लव यू बोलना चाहूंगी। और एक बात, मैं कहीं भी जाती हूँ कभी पापा ये नहीं कहते कि बेटा अकेले मत जाओ, ये बोलते हैं अच्छे से जाना, संभल के जाना, सेफ्टी के साथ जाना, और सुबह जाओ शाम तक वापस चले आओ, पर कभी कहीं भी अकेले जाने के लिए तो मना ही नहीं करते हैं।
0: सृष्टि के साथ जाना ये क्यों बोलते हैं?
1: मतलब अच्छे से जाओ, ऐसे सुराते करते हुए मत जाना, संभल के जाना।
0: नहीं नहीं, सृष्टि के साथ, सृष्टि यहाँ रहती है, आप वहाँ रहते हो, कैसे मतलब?
1: नहीं सर, सेफ्टी।
0: अच्छा, ओहो, वही मैंने कहा सृष्टि के साथ ना जाना, ऐसा क्यों बोले? सृष्टि भी अच्छी खासी बच्ची है।
1: नहीं सर, सेफ्टी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो आप डांट खिला। नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ अच्छा,
1: अच्छा मैं कहीं भी अकेले जैसे जा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पापा की इजाजत है, अगर कोई आसपास का मतलब कुछ कहे भी तो भी पापा नहीं मानते।
0: नहीं सही बात है, बहुत प्यारी बात है आपने बताई है पापा को लेकर, और यूं ही वो खुश रहें और यूं ही आप लोगों को उनका प्यार मिलता रहे, ये हम बहुत सारी दुआएं करते हैं। एंड थैंक यू सो मच।
1: ओके सर, बाय
0: बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये तो थी हमारे साथ में अनु, जिन्होंने हमको बात करके बताया फादर के बारे में। सो फादर के ऐसे कई सारे किस्से होते हैं जो बचपन से ही हम लोग सुनते चले आते हैं, जानते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इन बातों के बीच में हम बहुत सारी ऐसी बातों को एक मोमेंट के लिए भी रिकॉल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। वो गोल्डन मेमोरीज जिनको हम कहते हैं कि हाँ, वो हमारे लाइफ की सुनहरी यादें हैं। और भाई किसको उनके लाइफ की सुनहरी यादें नहीं याद होती है, चाहे फादर की चीज़ें हो या मदर की। बचपन में जो बिहेवियर होता है, जिस तरह से हमें प्यार मिलता है और जिस तरह से हमारी पिटैया भी होती है, वो भी एक बड़ा ही यूनिक होता है, उसमें भी बड़ा मज़ा होता है। सो कुछ भी हो, बचपन तो बचपन होता है, बड़ा प्यारा होता है। और स्पेशली माँ बाप के ये जो चाहने वाले जो किस्से होते हैं, ये हमारे बचपन को हमेशा ताज़ा रखते हैं। जब भी हम इन यादों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसी बचपन में एक बार वापस से गोते लगा लिए। और कहीं ना कहीं पापा मम्मी जो भी उनका बिहेवियर होता है वो याद आ जाता है। इवन आज भी जब हम सारी फैमिली बैठते हैं, हम बहन भाई सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो आज भी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो बचपन के किस्से होते हैं, जिस पर हम लोग खूब हंसते हैं कि बचपन में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तुम्हें ये किया गया था, तुम्हें वो किया गया था। और वो आज भी इतना ज़्यादा हसीन मौका देता है कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। फिलहाल इसी कड़ी में आइए चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो हेलो। ओके, सो मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का इशू है, एंड चूंकि आज योगा दिवस भी है तो मुझे लगता है योगा, अच्छा उसमें माना जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हो और कोई दो लकीर देखे और उसके बाद आप फांद जाएं, तो कूदने फांदने को भी योगा कहते हैं क्या? नहीं, एक सवाल था मतलब, बस ऐसे ही। और ये सवाल कितना वाजिब है और ये सवाल कितना ज़्यादा आगे जा रहा है, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। फिलहाल हम ज़रूर आपको ले चलने वाले हैं कुछ और बातों की तरफ, एंड अभी देखते हैं कि कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो।
2: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना नाम बता दिए हमारे श्रोताओं को। तो ये जो योगा दिवस की आपने शुभकामनाएं दी है, हम काली कूदते फांदते हैं जहाँ कोई बड़ा गड्ढा आता है, इतने में चल जाएगा? पक्का ऐसे लोगों को भी आप योगा दिवस की मुबारकबाद दें। क्या बात है, बात तो खैर सही है। वैसे जब से हम क्लासेस ले रहे हैं मास कम्युनिकेशन की, उसमें योगा का एक पार्ट हम लोगों ने जोड़ा है और गहरी सांसों से ही शुरुआत कराते हैं। अच्छी बात तो ये है। एंड यकीन मानिए, आपसे हम बता दें, देखिए आप तो कुछ शेयर करिए तो ज़रूर करेंगी, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जब भी स्टूडेंट्स करते हैं तो वो कहते हैं कि उनको नींद आने लगी। तो मैंने उनको बताया, दरअसल नींद जो है वो इसलिए आती है क्योंकि आपको अपने रात में भी नींद नहीं आ पाती। ज़रा सोचिए कि ये कितना आराम देता है कि आप इतने बेफिक्र हो गए कि आपको नींद जैसी हसीन चीज़ आने लगी, है ना, और रिलैक्स हो जाते हैं। खैर ये सब तो बात क्लासेस की हैं। आप बताइए कि आप कैसी हैं, और साथ ही साथ आज फादर्स डे है, सो क्या कहना चाहेंगी आप?
2: बहुत अच्छा है सर जी, और फादर डे मजा से तो रोज ही होना चाहिए सर जी, ऐसा नहीं चाहिए कि खाली उनका फादर डे मना लिया बस हो गया था, ऐसा नहीं सर।
0: बिल्कुल
2: जी सर, हम तो उनके बच्चे हैं, वो तो रोज ही हमको याद करते हैं, हम लोग भी बहुत याद करते हैं। आज भी हमारे पापा रोज शाम को 7:30 बजे कॉल करते हैं।
0: अरे वाह।
2: बस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे कैसे हो बेटा, ठीक हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पापा कुछ दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बच्चे ठीक हैं, बस इतनी बात होती है रोज।
0: वाह क्या बात है।
2: आज भी
0: अच्छा, आपने जैसे कहा कि हम उनके बच्चे हैं, ये तो सही बात है, मतलब ये तो जग जाहिर है, लेकिन कई बार हम उनके माँ बाप बन जाते हैं। कोई ऐसा टाइम आता है जब पापा को लगे कि लो भाई आप उनकी भी मम्मी बने जा रहे हो, उनको आप समझा रहे हो उनकी अच्छाई के लिए, सो कई बार कमेंट कर भी देते हैं। तो कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा है आपके साथ, अगर है तो बताइए।
2: बिल्कुल सर, आज भी हम अभी जाते हैं मायके, तो हमारे पापा जी पूछते हैं, छोटे भाई हैं, पूछते हैं, अगर कोई भी उनसे कुछ भी नहीं शेयर करता, उनसे पूछते हैं बेटा तुम पूछ के बताओ क्या परेशानी है, उनको क्या दिक्कत है, पूछ के
0: बताऊं। अच्छा तो आप फिर पूछ के बताएं। है ना। अच्छा बेटियां होती भी है, जैसे कहते हैं ना कि बेटियां वालिद की पिता की बेटियां तो होती ही हैं, लेकिन उनकी माँ भी बन जाती हैं। यानी जब कभी दवा खिलाना हो, कोई उनकी इज्जत को हटा करके उनके भलाई के लिए कुछ बताना हो, तो बेटियां माँ की रोल में आ जाती हैं।
2: बिल्कुल सर, क्योंकि पापा हमारे इतने शौकी थे सर खाने पीने की चीजों में, क्योंकि वो इतने प्यादा थे रेलवे में, तो बहुत शौकी थे। आज भी हम जाते सोचते क्या बना के क्या खिला देते पापा भाई बहनों को, जो भी है क्या खिला दे आज,
0: सही।
2: और आज भी जाते हैं तो हम ही लोग से कहते हैं।
0: अच्छा
2: बिल्कुल सर,
0: वाओ सच में पापा
2: पापा यही चीज कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब फैमिली मेंबर्स एक साथ होते हैं तो कुछ अच्छा सा बनाने का मूड होता है, सही बात है।
2: बिल्कुल सर, ये नहीं होता है कि हाँ वो करो करे, बस अपनी खुशी है, लग जाओ बनाओ, दिल खोल के सब लोग आओ एंजॉय करो, आज ये मायके में।
0: वाह क्या बात है। अच्छा उम्र के इस पड़ाव पे आप है जहाँ पे आपके बच्चे अब पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए जल्दी रेडी होने वाले हैं, आज भी क्या जब आप भाई बहन एक साथ बैठते हैं तो हंसी मजाक में वो बातें होती हैं, जब एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए बताते हैं बचपन में पापा ने तुमको ऐसे किया था, मम्मी ने ऐसे किया था?
2: आज भी होती है और बहुत मजा आता है जब एक दूसरे की पिटाई होती है, लगता है
0: ना, नहाने को पकड़ करके जबरदस्ती नहलाने से लेकर के पड़ोसी को तंग करने के बाद पापा की चप्पल पढ़ने तक बहुत सारी बातें होती हो।
2: हमारे पापा तो जब सर हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग के साथ गेम भी खेलते थे, अगर टाइम मिल जाता था तो, बैडमिंटन का में बहुत अच्छे थे।
0: क्या बात है भाई, सच में बहुत सारी यादें हैं जो फादर को लेकर के जुड़ी हुई हैं। योगा के बारे में अगर हम कहें तो क्या आप हेल्थ को लेकर के योगा का कोई भी ऐसा आसन है जो आप कर रहे हैं?
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज भी मैं जमीन पर बैठ के खाना खाती हूँ, भले डाइनिंग टेबल है, अरे जबर तो नहीं पाते, बैठ के पढ़ के मार सिखाना ही चाहते
0: बहुत बढ़िया।
2: और अपने हेल्थ को अपने बच्चों को हेल्थ के लिए बहुत मैं वो रहती हूँ सर। आज मैं गेहूँ खाता छोड़ी, राजी जो बाजरा का रोटी खाती हूँ।
0: मिलेट्स का इस्तेमाल, मोटे अनाज का आप कर रही हैं इस्तेमाल, वाओ क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। क्या बात है, अगर एक भी कोई आप गोलियां नहीं खाती हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं चल रही है, तो ये सच में आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
2: मेरे पापा भी उम्र के होंगे, लेकिन आज
0: लिटरली ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात आपने बताई है। एंड अच्छा, ये जो आपने बताया नीचे बैठ के खाते हैं, ये जो अभी सविता जी बता रही थी कुकड़ू आसन, वही है क्या?
2: नहीं सर, हम तो कल से माथे बैठ के खाते हैं, वो आसन तो मुर्गा बन के जो बैठते हैं।
0: अच्छा, मुर्गा बन के कौन बैठता होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है।
2: इसे आसने से बैठ पकड़ते कान, लेकिन कुकड़ू बैठ के सही पीछे पैर करके बैठना, घुटनों को मोड़
0: बैठना तो ठीक है, लेकिन फिर कान क्यों पकड़ना उसमें?
2: कान जो सर, कान नहीं पकड़े
0: तो आप तो कह रहे हैं कान पकड़ते हैं।
2: नहीं नहीं सर, वो नहीं है, कुकड़ू आसन वो है, मुर्गा तो वो होता है बैठी हो कान पकड़िए पीछे से मुर्गा।
0: वो तो बचपन में टीचर बनवाते थे ना। आप नहीं बने हैं। हमको ये जादू बहुत बार करने को मिला है, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमको कई बार बनाया गया है। सो बहुत प्यारी बात, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी प्यारी सी आवाज में फादर को एक छोटा सा गाने की कोई हिस्सा डेडिकेट करिए प्लीज। जी क्या बात है भाई। दोस्तों आपने सुना योगा का असर, देखिए कितनी प्यारी आवाज है, वाओ। कौन सा योगा करती हैं, स्वरासर? नहीं, बट लिटरली जैसे आपके अंदर ये गाने का टैलेंट है, एक तो है कि आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप इसे खुले मंच पे गा लेती हैं तो ये आपकी जिंदा दिली है। और ये मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, प्लस आपसे ये इल्तिजा, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये जिंदा दिली हमेशा अपने अंदर रखिएगा। बिल्कुल, और हमारी सभी लोगों की, उस पूरे परिवार की, जितने हजारों लोग जुड़े हैं इस FM से, उन सभी की दुआएं आपके साथ में। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया और इतने प्यार से इतनी सारी चीजों को बताया आपने। थैंक यू सो मच। सो भाई, ये थी हमारी सभी की प्यारी लखनऊ से सुनने और बात करने वाली आशु मिश्र जी। आई होप कि उनकी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक सवाल है जो आपके लिए है, सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है और सवाल बहुत ज्यादा अहम है, और सवाल को सुनकर के आपको चौंकना नहीं है बल्कि इसका जवाब देने की कोशिश करना है। अब आप सोचेंगे ऐसा सवाल क्या है, है ना? तो सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, और सवाल सुनने के बाद आप कहेंगे क्या बात है, ये सवाल था कहाँ, अभी आया है क्या? ऑलराइट, सो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आजकल लोग जो है वो योग कम करते हैं और उसकी फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट ज़्यादा करते हैं, तो इसे आखिर कौन सा आसन कहा जाएगा? अगर कोई योगा की फोटो खींच कर करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है तो उसे कौन सा आसन कहा जाएगा, ये सवाल है आपसे। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं आप?
3: मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के काशी यानी बनारस से, और नाम मेरा शैलेंद्र कुमार आरुष है।
0: जी शैलेंद्र जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया हूँ सर, आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी मेरी।
0: जी जी जी जी।
3: और उस दिन भी संडे था और आज भी संडे है, और आज बहुत सारे स्पेशल ओकेजंस हैं, जैसे योगा डे हुआ, ठीक है,
0: बिल्कुल,
3: और फादर्स डे हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड म्यूजिक डे भी आज ही है, संगीत दिवस।
0: क्या बात है, अच्छा ये मैं चूक गया इसको लेकर के।
3: जी सर, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे और बाकी योगा दिवस और सभी को पितृत्व दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सभी को, और आपको भी स्पेशली सर।
0: थैंक यू सो मच स्पेशली विश करने के लिए और ये बताने के लिए। हालांकि अनजाने में ही मैंने सबसे गाने सुन लिए, संगीत दिवस मैंने मनाया लेकिन कहा नहीं। ये अफसोस
3: रहे। म्यूजिक डे तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड म्यूजिक डे आज है। लेकिन अगर म्यूजिक डे की बात की जाए तो हमारा तो हमेशा से ही ये है कि सुबह में शाम में 24 घंटे सातों दिन म्यूजिक के साथ ही रहता है।
0: अरे
3: सभी का मतलब ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो संगीत से किसी ना किसी तरीके से ना जुड़ा हो।
0: बेशक, बात तो सही की। तो मतलब आप क्या सिंगर भी हैं क्या?
3: नहीं नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे BHU में।
0: हाँ ये तो बताया था आपने।
3: जी जी जी।
0: तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जब आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाना पड़ेगा।
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसा आप कहेंगे।
0: नहीं प्लीज, हम ये इंतजार करते हैं आपसे। जी
3: आप कैसे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: एकदम मस्त, बढ़िया, पिताजी वाली फील आ रहा है आज।
3: तो जी सर, एक दो टॉपिक जो थे मेरे मन में।
0: जी जी।
3: जब सब ये डिस्कशन चल रहा है, आप भी इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं और अभी सविता जी ने भी इतनी प्यारी बातें बताई।
0: जी जी।
3: तो एक टॉपिक मेरे मन में ये है कि बहुत सारे पापा लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप अपने मन की बात कभी कह ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, जो बच्चे कह नहीं पाते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पापा को प्यार करते हैं, मेरा मानना ये है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल।
3: और माँ को हम गले लगा लेते हैं, किसी दुख में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो सबसे पहले माँ ही याद आती है, ठीक है, लेकिन पापा को जितनी तकलीफ होती है ना, उतनी जितनी हमें तकलीफ होती है उतनी पापा को भी होती है, हमें दुख में देख के, हमें परेशानी में देख के पापा को भी उतनी तकलीफ होती है, जिनको हम कभी गले लगा नहीं पाते हैं, कभी ये नहीं कह पाते कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
3: तो बहुत ऐसा मतलब सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ऐसा अब नहीं है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल जितना भी है अपना, उसमें ये चीजें हैं, क्योंकि वहां पे मतलब इज्जत, बेइज्जती, सम्मान, ये सब बहुत ज्यादा ऊंच नीच, मतलब ये सब बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जब यहाँ जहाँ पे इन चीजों का ज्यादा बोलबाला होता है, वहाँ के लोग फ्रैंक नहीं हो पाते हैं,
0: नहीं हो पाते सही
3: ना, वहाँ के बच्चे फ्रैंक हो पाते हैं, ना वहाँ के गार्जियन फ्रैंक हो पाते हैं, और इसी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। और सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात ये है सर कि ह्यूमन नेचर है ये कि जब चीज कोई हमारे पास नहीं होती है, हमें उस समय उसकी सबसे ज्यादा कदर होती है।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात कही आपने।
3: तो पापा जब नहीं होते हैं ना, तब जिस इंसान के पापा नहीं होते हैं उसके ऊपर ऐसा लगता है कि उसके सर से जैसे छत छीन ली हो किसी ने, वो दुनिया में कहीं भी रहता है अपने आप को हमेशा ऐसा महसूस करता है।
0: सही बात है।
3: सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चाहे जैसे भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कभी पापा से बात करने का मौका मिले तो प्लीज उनको गले लगाइए, पापा को बहुत सारा प्यार कीजिए, पापा को बोलिए।
0: माय गॉड, सही बात है। ऐसी बातें हैं जो अपने फादर से हम कह नहीं पाते, और ये इमोशंस बताते हैं कि कितने साल तक हम उनको इतना ज्यादा चाहते हैं लेकिन बयां नहीं कर पाते हैं। अब इसे बदनसीबी कहे या एक जनरेशन का गैप कहे या हमारे आस पास का माहौल कहे, परवरिश कहे, सोसाइटी कहे, जो भी कहे, लेकिन आज वो दिन होता है जब आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने पापा को गले लगाकर हम उनको ये ज़रूर बता पाएं कि हम सच में उनसे कितना प्यार करते हैं। हालांकि प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, गले लगा देना ही अपने आप में बयां कर देता है। बहुत प्यारी बात आपने कही, और मैं दुआ करता हूँ कि जो आपने कहा है ये कहीं ना कहीं हम अपने फादर्स के साथ ये कर पाए आज घर जा करके मिल करके, और घर पर हैं तो इस बात
3: से माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं।
0: नहीं, ये तो इंसानों की निशानी है, ये सच है, ये सच्चाई है।
3: तो जैसा कि सर आपने बोला, मुझे आपकी तरफ से आदेश हुआ कि एक दो लाइन मुझे सुनानी है।
0: जी,
3: आज फादर्स डे है
0: बिल्कुल,
3: और वर्ल्ड म्यूजिक डे हम दोनों ही एक ही गाने में सेलिब्रेट करेंगे,
0: करने वाले। लेकिन ये देखिए आदेश नहीं है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये इल्तिजा है।
3: थैंक यू सो मच सर।
0: जी प्लीज प्लीज सुनाइए हमको।
3: ओके सर, स्टार्ट करता हूँ मैं।
0: जी
3: Thank you.

शरारत से दिल जिगर है तू सबका,

गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

कौन है तेरे मंजिल का हम सफर, आज लगे कितना हसीन

तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम शैतान, तू मेरा दिल,

0: माय गॉड, ऐसा ऐसा कह सकते हैं जैसे कि दिल निकाल कर रख देना। मतलब क्या म्यूजिक, क्या अंदाज और क्या फील डाला था आपने। मतलब जो अभी बातें
1: ये
0: आपने
1: गाना मैंने सोच लिया था कि अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं यही गाना
0: मतलब
1: सुनाऊंगा।
0: लिटरली फर्स्ट टाइम हम आपको ऐसा सुन रहे हैं। सिंगर और सिंगिंग तो छोड़िए, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। जब किसी ने गाते गाते दिल निकाल के रख दिया, उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। मतलब लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अमेजिंग, सुपर, बहुत अलग, बहुत
1: थैंक यू सो
0: अलग।
1: मच सर। और मेरे मेरी लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनमें से एक हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा गाइड करने के लिए, इन जैसे लोगों के लिए जिनके लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आपकी तरफ से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। थैंक यू सर।
0: थैंक यू सो मच टू यू इतनी इज्जत बख्शने के लिए। और जहाँ तक बात रही सीखने की, तो मुझे लगता है कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा आपने कहा कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, और ये फील करते हैं तो मैं शायद, हाँ, मानता हूँ कि कहीं मैं भी करा पाता हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा कि आप इतना भरोसा करके अपनी चीज़ों को बयां कर पाते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा आपका ये भरोसा यूं ही कायम रहे और यूं ही आप अपने दिल की बातों को कहते रहे हमसे।
1: जी सर, थैंक यू सो मच। और वापस से सभी को फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड योगा, वर्ल्ड योगा डे, ये सभी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, जीवन का सफर ऐसे ही चलता रहे। और हम हमारे रेस्पेक्टेड अदनान जी से ऐसे ही बात करते रहे।
0: बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो भाई, बहुत ही प्यारे, कहते ना कि सोल बता देती है कि आप कितने प्यारे हैं। वैसे हमारे साथ गीता दीदी भी मौजूद हैं। दीदी कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बातें कर रहा था ये बच्चा।
0: बिल्कुल। और ये म्यूजिक सीख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से, और इतनी प्यारी आवाज, इतना प्यारा अलहदा अंदाज इनको बहुत अलग बना रहा है।
2: प्रेजेंटेशन जो है इनका बहुत ही प्यारा
0: है ना
2: जी।
0: आपने मेरा नहीं कहा।
2: वो होता है ना, घर की मुर्गी जो है दाल बराबर।
0: वो ही जाता है। चलिए, फिलहाल लवली सिंह मौजूद हैं। अदनान सर, गुड मॉर्निंग, योगा दिवस, फादर्स डे की मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी लवली। प्रीति जी ने कहा है कि मेरे पापा के लिए दारा सिंह सुपर हीरो थे। क्या बात है, वाओ, दारा सिंह। हाँ, मोहम्मद यासीन जी हैं, झारखंड से सुनते हैं। बहुत सारा प्यार आपको भी, और आपने भी गुड मॉर्निंग लिखा है, साथ ही आपने भी योग दिवस और फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। यासीन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी हैं, LBS से, और लिखते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी तो खैर चलिए मान लेते हैं आपने कहा। गर्मी इतनी ज़्यादा सवार है कि गुड आफ्टरनून सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक चलता ही रहता है, गुड आफ्टरनून। सो बहुत अच्छा लगा। आशु जी ने लिखा है, रवि तक्षक, अल्पज्ञ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ज्ञानस्थली रेडियो के समस्त स्टाफ और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार कहा है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको भी रवि जी। एंड मैंने जो सवाल किया था वो ये था, दीदी आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग योगा नहीं करते हैं, बस अपनी फोटो यानी पोज डाल देते हैं इंस्टाग्राम पर, उसकी पोस्ट,
2: वेरी बैड,
0: तो ऐसे आसन को क्या बोलेंगे, मैंने ये पूछा था। तो फिलहाल हमारी प्रीति जी ने बहराइच से दिखाया है, बताया कि दिखावा आसन।
2: सच में।
0: और आपका अगर जवाब होगा तो क्या होगा? ये
2: हम तो सहमत हैं प्रीति जी के साथ हैं।
0: अच्छा, प्रीति जी के साथ है। वैसे मेरी तरफ से जो एक और नया नाम होगा वो होगा पोज आसन। पोज देने वाला, बस पोज दिया, फोटो खिंचाया और चल दिया, हो गया योगा। लेकिन लिटरली बहुत मजा आया आज, इतनी प्यारी

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हाँ जी, तो जैसा वादा किया था कि भाई जस्ट लौटते हैं गीता दीदी और उनकी स्टोरी के साथ, तो चलिए भाई हम आ गए हैं। और स्टोरी का इंतज़ार तो सच कहें भाई हर हफ्ते मुझे इस अपने शो के बाद जस्ट इस शो में आने से पहले ये रहता है कि आज गीता दीदी आखिर कौन सी स्टोरी लाने वाली हैं, और कहीं अचानक से गीता दीदी फिर से ना हमला करते कि बताओ क्या समझे, और हम अगर ना समझे होंगे तो क्या बोलेंगे। मारे डर के भी हमको सुनना पड़ता है स्टोरी। वैसे आप डर से सुनते हो या सच में इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए सुनते हो, आप जरूर बताइए। सो गीता दीदी एक बार वापस से आपका हम वेलकम करते हैं।
4: वेरी गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले तो योगा दिवस की और फादर डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे लिसनर्स बाहर बैठे हुए हमें सुन रहे हैं उन सभी को भी हम कहना चाहेंगे कि योग करते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारी फादर डे की शुभकामनाएं आप लोगों को, और प्यार करते रहिए अपने पेरेंट्स से।
3: बहुत अच्छे से विश किया दीदी आपने, फादर्स डे की, म्यूज़िक डे की, और साथ ही साथ आज योग डे की, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
4: मैं तो भाई देखिए थक के आई हूँ, और मैं तो योगा करके आई हूँ। आज गांधी पार्क में सारा आयोजन किया गया था, और फिट रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है। सो भले ही एक दिन, मैं आज योगा करके आई हूँ।
3: बस एक दिन।
4: सबको मैं कहती हूँ कि रोज व्यायाम करो, पर मैं नहीं करती।
3: बट नहीं, आपने तो कहा था घर पे आप कुछ कुछ टाइम जब कभी मिलता है।
4: बस ये घर वाला तो करती हूँ, लेकिन बाहर जाकर के थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन आज मैं करके आई हूँ और प्रॉपर करवा के आई हूँ सबको।
3: क्या बात है। तो दीदी ये बताइए, जैसे बचपन में सब पीटी टीचर से भागते थे कि अरे यार अभी ये कराना शुरू कर देंगे और एकदम थका देंगे, आज कोई आपसे डर के भागा तो नहीं था?
4: बहुत भाग रहे थे।
3: अरे
4: कह रहे थे मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कह रहा था मेरे कंधों में दर्द है, मैं दूर से देखूंगी, मैं बैठी रहूंगी। मैंने कहा ना आज तो ये नहीं चलने वाला।
3: चल बे।
4: तो मैंने सबको घसीट घसीट के और योगा मैट पे बिठा दिया।
3: अच्छा मुझे बताइए, कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो योगा मैट देख करके योगा करने की बाद में सोचते हैं पहले उस पे लेट के आराम करने लग जाते हैं।
4: और कुछ तो उसको फोल्ड करके घर ले जाने की भी सोच लेते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। तो आज भी ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला।
4: बिल्कुल, वो हमेशा होता है। कुछ लोग कहते हैं मैट बड़े खूबसूरत आए हैं, कहाँ से आए हैं? इसमें से एक मेरा भी है। तो बाद में उनका मन तो करता है कि योगा मैट ले जाए, लेकिन मैं सारे समेट करके और यथास्थान पहुंचा देती हूँ।
3: तो ये कहाँ टेंट वाले के यहाँ से मंगवाया था क्या आपने?
4: नहीं नहीं, वो सब आता है गवर्नमेंट की तरफ से, इतनी व्यवस्था रहती है।
3: तो गवर्नमेंट आपको क्यों देती है डायरेक्ट?
4: अरे भाई हम पार्ट है ना।
3: अच्छा आप पार्ट हैं। हमें लगा आप वहाँ पे भी टीचिंग करती हैं कि चलो उठो शुरू हो जाओ।
4: करना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ये हमारी इंडिया है। जहाँ पे डांट डांट के और ऐसे काम कराया जाता है।
3: वाओ। तो लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि सुबह का नजारा क्या था आज गांधी पार्क गोंडा?
4: बहुत मतलब बहुत सारे लोग जो है काफी दिनों से इस पे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो सब एकदम सुबह आ गए हैं योगा दिवस पे तैयार हो करके। बड़ा अच्छा माहौल था। इसके बाद में सरस्वती शिशु मंदिर भी गई, वहाँ पर भी इसका प्रोग्राम था।
3: अरे वाह।
4: तो दो जगह मैंने योगा ज्वाइन किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठना और ये योगा करना, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए कि हमें पर डे करना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, योगा दिन तो हर दिन होना चाहिए।
3: करेक्ट। इसीलिए आज का दिन रखा भी जाता है कि लोगों को बार बार बताया जा सके, जगाया जा सके कि देखो कितना इम्पोर्टेंट है योगा, इसके लिए पूरा दिन डेडिकेटेड है।
4: वैसे मैं मजाक कर रही थी, मैं तो हमेशा योगा करके ही फिट रहती हूँ।
3: बहुत खराब मजाक था आपका। देखा लोग, हमारे लोग समझ रहे थे कि भाई आप गीता दीदी नहीं करती तो हम क्यों करें।
4: मुझे देखिए ऐसा लगता है कि मैं योगा नहीं करती।
3: वही तो मैंने कहा कि आप तो करते हो, मतलब आप तो ऐसे लगते हो कि भाई योगा करके ही चले आ रहे,
4: योगा के लिए ही बने।
3: हाँ, मतलब योगा रोज सुबह उठाता मैडम, टाइम हो गया चले?
4: बिल्कुल योगा ही उठाता है, क्योंकि मालूम है ना कि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए,
3: सही
4: तो उठ
3: है।
4: जाते हैं और योगा हमें उठा देता है कि नहीं आपको कीप एंड फिट रहना है तो उठ जाइए टाइम से।
3: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने। तो दीदी आपकी स्टोरी की तरफ चले, लेकिन उससे पहले चूंकि फादर्स डे पर रवि तक्षक अल्पज्ञ जी ने हमको कुछ भेजा है, क्या हम पढ़ लें?
4: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी सुनना चाहेंगे।
3: क्या बात है। तो रवि जी लिखते हैं कि पिता वो दीप हैं जो जलते हैं पर अपने बारे में कम कहते हैं
4: जी,
3: धूप स्वयं सह लेते हैं बच्चों को छाया देते हैं, माँ ममता की गंगा होती है पिता हिमालय सा विश्वास, उनके कंधों पर टिका हुआ है सपनों का सारा आकाश, जब जब राहें कठिन हुई उन्होंने हिम्मत बनकर थामा, अपने हिस्से के दुख पीकर हमको हर सुख से नवाजा, फटी कमीज छिपा लेते हैं पर बच्चों की चाह पूरी करते,
4: वाह,
3: अपने अरमानों को रोककर हमारे सपनों में रंग भरते, नहीं जताते प्रेम शब्दों में, नहीं रोज गले लग पाते हैं, लेकिन उनकी हर चिंता में हम ही हम नजर आते हैं।
4: वाह वाह,
3: कितनी मतलब
4: बहुत मतलब हार्ट टचिंग लाइंस हैं, वेरी नाइस लाइंस।
3: और मुझे लगता है कि ये सच्चाई है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। और हम बताएं अदनान तुम्हें कि अगर हमारी जो मतलब अचीवमेंट है, जो भी हमारी सक्सेस है, पिता के अलावा कोई नहीं देखता है।
3: बिल्कुल,
4: आप कितना भी सक्सेस पा लीजिए लाइफ में, आपसे जलने वाले बहुत हैं और एक पिता ही ऐसा है जो आपकी सक्सेस से इतना खुश होता, फूला नहीं समाता है।
3: सही बात है।
4: तो चारों तरफ वही उसको कहता है, मेरा बेटा ये बन गया, मेरा बेटा ऐसा हुआ, मेरा बेटा।
3: बिल्कुल तो सही कहा।
4: हाँ, तो उनकी इज्जत हमें करना चाहिए, जब तक पिता है माता है जिनका साया है हमारे ऊपर, तब तक हमें उनकी इज्जत करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ देते रहना चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत प्यारी और बहुत सच्ची बात आपने कही। सो दीदी, अब मुझे लगता है सविता जी भी आ गई हैं और आपने कहा है नमस्ते गीता दीदी।
4: नमस्ते सविता जी, नमस्ते। आपके बिना तो हमारा ये रेडियो प्रोग्राम अधूरा सा लगता है, जब तक आप नहीं आती हैं चैट बॉक्स में तब तक मज़ा नहीं आता है।
3: साथ ही साथ कह रही हैं कि मैं सब कुछ देख रही हूँ आप दोनों में। तो जो हमारी नोक झोंक, जो शरारत, जो उल्टे पुल्टे सवाल हैं, सब वो सुन रही हैं और काफ़ी मज़ा उनको आ रहा है। सो अब हम भी चाहेंगे कि आप स्टोरी बताइए कि आज कौन सी स्टोरी लेकर आई हैं, आज तो इतने खास खास दिन है।
4: स्टोरी तो हमारी बस सुन के ही पता लगता है कि क्या स्टोरी है आज हम बताने वाले हैं, कि किस तरीके से बिजनेस टैक्ट।
3: अच्छा, आज बिजनेस करना बताएंगे?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: वाह, गीता दीदी हमारी एडवाइजर भी निकली।
4: तो मैं हूँ ही। चलिए कहानी सुनते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, कहानी सुनाते हैं, हो सकता है एक नहीं मैं आज दो कहानी सुना दूं, मैं बहुत खुश हूँ आज।
3: क्या बात है, जो कॉम्बो पैक मिलने वाला है आज सबको। चलिए शुरू करते हैं।
4: तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कहानी, वरना क्वेश्चन मैं बीच में ही कर दूंगी।
3: हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ।
4: बहुत समय पहले एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी चतुराई और अपनी राजनीति के लिए बड़ी दूर दूर तक फेमस और प्रसिद्ध था। उसके राज्य में एक गरीब बनिया रहता था जो बाजार में स्वादिष्ट रोटियां बेचा करता था, और उसकी रोटियां इतनी मशहूर थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। वह वर्षों से एक रोटी की कीमत 5 रुपये ही रखता था और 5 रुपये में बेच करके उसे लाभ मिल जाता था और उसका परिवार अच्छे से चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ आटा, लकड़ी और अन्य सामानों की कीमतें बढ़ने लगी, तो बनिए का खर्च भी बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि 5 रुपये में रोटी बेचना घाटे का सौदा हो गया है, तो उसने सोचा कि रोटी का दाम जो है बढ़ाना जरूरी है। लेकिन राज्य का एक नियम था कि कोई भी व्यापारी राजा की अनुमति के बिना अपने सामान की कीमत नहीं बढ़ा सकता। एक दिन बनिया दरबार में पहुंचा, उसने राजा को नमस्कार किया और विनम्रता से कहा, महाराज मेरे खर्च बहुत बढ़ गए हैं, मैं रोटी का दाम 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। राजा कुछ देर सोचता रहा फिर मुस्करा के बोला, 10 रुपये नहीं, तुम रोटी का दाम सीधे 30 रुपये कर दो। यह सुनकर बनिया चौंक गया। उसने घबराते हुए कहा, अरे महाराज, यदि मैं रोटी 30 रुपये में बेचूंगा तो जनता बहुत नाराज हो जाएगी, पूरे शहर में हंगामा मच जाएगा, लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। राजा ने बड़े शांत भाव से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बनिया मजबूर था। अगले दिन उसने अपनी दुकान पर रोटी का नया दाम लिख दिया, 30 रुपये प्रति रोटी। जैसे ही लोगों ने यह देखा तो बाजार में कोहराम मच गया, लोग गुस्से में पागल हो गए थे, गुस्से से भरे बैठे थे। कोई कह रहा था कि बनिया बड़ा लालची हो गया है, तो कोई कह रहा था कि वह जनता को लूट रहा है। अब देखते ही देखते पूरे शहर में यही चर्चा फैल गई कि बनिया बहुत ही बेईमान है, 30 रुपये में रोटी बेच रहा है। अंततः नाराज जनता राजा के दरबार में जा पहुंची और सभी ने एक स्वर में शिकायत की, महाराज, बनिए ने रोटी का दाम 5 रुपये से बढ़ाकर अचानक 30 रुपये कर दिया है, यह अन्याय है, घोर अन्याय, अब आप ही हमें न्याय दिलवाइए। राजा ने गंभीर चेहरा बनाया और फिर क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, उसने मेरी अनुमति के बिना इतना ज़्यादा दाम बढ़ा दिया, यह तो राजकीय नियमों का उल्लंघन है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए को दरबार में पेश किया जाए। अब क्या था, कुछ ही देर में बनिया दरबार में लाया गया। राजा बेहद गुस्से में गरजा, दुष्ट व्यापारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जनता को लूटो, किसके आदेश से तुमने रोटी का दाम 30 रुपये किया? बनिया समझ गया कि राजा अपनी योजना पर काम कर रहा है, वह चुपचाप सर झुकाकर वही खड़ा रहा और राजा की खरी खोटी सुनता रहा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है, कल से तुम रोटी आधे दाम पे बेचोगे, यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। दरबार में बैठे लोग राजा की जय जयकार करने लगे, उन्हें लगा कि राजा ने उनकी रक्षा की है और लालची व्यापारी को सबक सिखाया है। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम 30 से हटाकर 15 रुपये कर दिया। अब देखो, आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग कल 30 रुपये सुनकर क्रोधित थे, वही आज 15 रुपये देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि राजा ने बहुत बड़ा उपकार किया है। अब बनिए को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह मूल रूप से 10 रुपये में रोटी बेचना चाहता था और अब वह 15 रुपये में बेच रहा था। राजा भी खुश, क्योंकि जनता उनकी प्रशंसक बन चुकी थी, प्रशंसा किए जा रही थी। इस प्रकार राजा ने एक ऐसी चाल चली कि जनता को लगा उसे राहत मिली है, व्यापारी को लाभ मिला है और इससे राजा की लोकप्रियता भी बढ़ गई। अब बताओ,
3: ये तो
4: क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से?
3: शिक्षा ये मिलती है कि आज के जमाने का इंसान इतने पुराने जमाने में कैसे चला गया। ये सब तो आज देखते हैं। तो मतलब ये है कि भाई, कई बार क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है
4: जी,
3: और जो दिखाया जा रहा होता है उसके पीछे कुछ और होता है।
4: हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यही कि कई बार लोग जो होते हैं कि किसी चीज़ की वास्तविक कीमत नहीं बल्कि तुलना के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। तो जो चतुर लोग, इसको मनोविज्ञान भी कहते हैं, मनोविज्ञान का उपयोग करके आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: तो जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर था और इस तरीके से देखिए व्यापारी का लाभ हुआ।
3: बिल्कुल, व्यापारी का लाभ हुआ और फिलहाल ये सच में बिजनेस माइंडेड वाली स्टोरी थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा बिजनेस इस बहुत पुरानी स्टोरी में जानने को मिलने वाला है।
4: पहले बस मतलब बेस तो वही है ना, आज भी यही हो रहा है।
3: करेक्ट,
4: बस समझ नहीं सकता है आदमी।
3: सही बात है, समझ लगाने की जरूरत है, बस
4: जरूरत है
3: बस, आप बाकी अब आपके पास में
4: तो समझदार को इशारा काफी,
3: काफी है,
4: है
3: सही बात है
4: यही हो रहा वास्तविक जीवन में।
3: सही बात है। सो दीदी आपने स्टोरी सुनाई, क्या आप दूसरी स्टोरी के लिए चल रही हैं?
4: तो अगर कहो तो मैं सुना दूं।
3: बिल्कुल,
4: तो चलो आज फिर मजेदार एक कहानी सुनाते हैं।
3: प्लीज।
4: तो बहुत समय मतलब एक पहाड़ में से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक महतो नाम का युवक रहता था। उसका घर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था। वह बहुत ही गरीब और था और जंगल में जो फल फूल कंद मूल सब यही चीज़ें खा करके इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। महतो बहुत मेहनती था लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हर काम जल्दबाजी में करता था, बिना सोचे समझे काम करना उसकी आदत सी बन गई थी और कई बार उसे अपनी गलतियों का नुकसान भी उठाना पड़ता था। फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था, यानी बदलता नहीं था। एक दिन रात के समय महतो जंगल में एक झरने के पास बैठा बांसुरी बजा रहा था। चारों ओर खूब चांदनी फैली हुई थी और वातावरण बहुत ही मनोहर लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक अद्भुत हाथी पर पड़ी। वह हाथी साधारण हाथी नहीं था, उसके शरीर पर सोने और रत्नों से जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण चमक रहे थे। महतो को आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्य से उसे देखने लगा। थोड़ी ही देर में वह हाथी आकाश में उड़ने लगा। महतो ने अपने बुजुर्गों से स्वर्ग के राजा इंद्र और उनके दिव्य हाथी एरावत के बारे में सुन रखा था। उसने तुरंत पहचान लिया, यह अवश्य ही इंद्र का हाथी एरावत है। उस दिन तो वह केवल उसे उड़ते हुए देखता रह गया लेकिन उसके मन में स्वर्ग देखने की इच्छा जाग उठी। अब क्या हुआ, अगली रात महतो ने फिर उसी जगह पर अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वहीं पहुंच गया, वह एरावत के आने की प्रतीक्षा करने लगा और कुछ ही देर बाद हाथी फिर दिखाई दिया। इस बार महतो ने निश्चय कर लिया वह स्वर्ग जाकर ही रहेगा। जैसे ही एरावत उड़ने लगा महतो दौड़ा और दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर लटक गया। दिव्य हाथी उसे लेकर स्वर्ग लोक में पहुंच गया। अब स्वर्ग की शोभा देखकर महतो की आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ चारों ओर हरियाली थी, वृक्ष मीठे फलों से लदे हुए थे, दूध की नदियाँ बह रही थीं और हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। सुंदर सुंदर महलों की चमक से पूरा वातावरण आनंदित हो रहा था। स्वादिष्ट पकवान से भरे हुए थाल सजे हुए थे। महतो ने जी भर के घूम फिर कर स्वर्ग का आनंद लिया और स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लिया। कुछ देर उसने वहीं पर विश्राम भी किया लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, इसीलिए रात होते हुए फिर एरावत की पूंछ पकड़कर धरती पर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन जब महतो ने कसम खाई तब उसकी माँ को विश्वास हुआ। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा यह बात अब किसी को मत बताना, लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। लेकिन महतो ने बात कुछ छिपाया नहीं। अगले ही दिन वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और गर्व से बोला, मैं स्वर्ग देखकर आया हूं मुखिया जी। मुखिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब महतो ने उससे भी कहा कि मुझे भी स्वर्ग ले चलो, तो महतो ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं ले चलूंगा। तो मुखिया तैयार हो गया और यह बात घर में फैली तो मुखिया की पत्नी माता पिता बच्चे रिश्तेदार साथी चलने की जिद करने लगे। महतो की माँ ने उसे बहुत समझाया था कि किसी को साथ मत ले जाना लेकिन उसने माँ की एक ना सुनी। अगली रात सभी लोग इरावत के आने की प्रतीक्षा करने लगे और जैसे ही हाथी उड़ने लगा महतो ने दौड़ करके उसकी पूंछ पकड़ी। मुखिया ने महतो के पांव पकड़ लिए, पीछे बाकी लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और इस तरह सब आकाश में लटकते हुए ऊपर जाने लगे। रास्ते में घबराकर मुखिया ने पूछा, क्या स्वर्ग हमारी पृथ्वी से बड़ा है? मैं तो बोला, हाँ बहुत बड़ा है। तो मुखिया ने पूछा, कितना बड़ा है? बस फिर क्या था, महतो ने समझाने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतना बड़ा। और जैसे ही उसने हाथ छोड़े वह नीचे गिरने लगा। उसके साथ ही साथ सारे जितने भी लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे, सब धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और सबकी मृत्यु हो गई। एरावत तो स्वर्ग पहुंच गया, लेकिन उनकी मूर्खता ने उनका अंत वहीं कर दिया। अब क्या शिक्षा मिलती है इस बात से
3: कि हाथ नहीं छोड़ना चाहिए
4: मूर्ख और जल्दबाज व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए
3: बिल्कुल
4: क्योंकि उनकी एक गलती से दूसरे को संकट उत्पन्न हो सकता है, संकट में डाला जा सकता है।
3: सही बात है तो ये दो स्टोरीज आज आपने सुनाई, दोनों लाजवाब। अब हमारे श्रोताओं को कैसे लगी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज बच्चे बहुत कुछ लेकर आने वाले, क्योंकि आज है फादर्स डे, योग डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे। सो यानी आज तो बहुत धमा चौकड़ी मचने वाली दीदी।
4: बिल्कुल, आज तो बहुत सारे सॉन्ग्स होने वाले हैं और मजा आने वाला है आज के शो में।
3: तो चलिए भाई, गीता दीदी लेकर आती नन्हे मुन्ने बच्चों को, और जब तक आप सुनते रहिए राइमिंग्स, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम और आपका संडे स्पेशल शो चल रहा है हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: गाते चले तो जी हाँ, गाते गाते हम सब आ गए हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे। तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब?
1: ठीक है दीदी।
0: अरे भाई, आज बड़ा स्पेशल डे है। सारे बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। और ये सानवी तो उस ट्रैक वाले ड्रेस में आई है सीधे। मेरे ख्याल से ये बच्चे योगा करके यहाँ पर आए हैं। क्यों सानवी, योगा किया आज?
1: जी दीदी।
0: वाओ, तो आज तो योगा दिवस है और इस योगा दिवस पे सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत सी बधाई। और आप लोग योग करते रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दी। तो आज हमारे साथ बहुत सारे हम्प्टी डम्प्टी हैं और हम परिचय करा देते हैं। समय तो हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़े से बच्चों का परिचय करा देंगे और ऐसे ही हम परिचय कराते रहेंगे। तो हमारे साथ आज है शानवी और हमारे साथ सानिध्या हैं प्यारी सी, और त्रिशा हैं हमारे साथ, प्रशा हैं, और भी ढेर सारे बच्चे हैं। समर हैं हमारे साथ और शेषकर हैं। कितनों के नाम ले, बस अभी तो प्रोग्राम करना, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और हम यूं ही उनका परिचय कराते रहेंगे। चलिए चलते हैं, आपको सफ़र की ओर ले चलते हैं। और हमारे साथ सानिध्या है, छोटी सी सानिध्या, आज क्या सुनाने वाली हो बेटा? ओ, कविता सुनाने वाली है हमारी सानिध्या छोटी सी। तो चलो सुन लेते हैं हमारी सानिध्या की प्यारी सी पोएम। वाओ, तो भाई बहुत प्यारी सी पोएम थी। तो बच्चों तालियां हो जाए। तो देखो सानिध्या कितनी प्यारी सी पोएम अपनी तोतली भाषा में सुना रही है। और ऐसे ही हमारे साथ और बच्चे हैं जो त्रिशा और प्रशा और सानवी एक प्यारा सा गीत सुनाने, गीत क्या कहें, क्योंकि ये एक क्या सुनाने वाली हो सानवी?
1: भजन।
0: भजन है, तो भजन तो पहले होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ईश वंदना बहुत जरूरी है। पर कोई बात नहीं, ईश वंदना तो जब चाहो तब कर लो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आगे करना है या पीछा करना है। अगर ईश्वर को याद करना है तो कोई भी समय हो सकता है ईश्वर को याद करने के लिए। तो चलिए सानवी की और त्रिशा प्रशा की ओर चलते हैं, ये सब सुनाने वाली प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो कोई भी आपके सामने हो, आप उसका आदर सत्कार करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कब ईश्वर प्रकट हो जाए। बच्चे तो वैसे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, इसलिए बच्चों के सानिध्य में रहिए, वे आपको दर्शन कराते रहेंगे प्रभु का। और हमारे साथ और भी बच्चे हैं, सत्यम है हमारे साथ। और देखो सत्यम आज क्या सुनाने वाले हो, सत्यम और प्रतीक, प्रतीक भी है आज। ये लोग कुछ अच्छा सा लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, इंटरटेन करने के लिए। और देखते हैं, अभी इन्होंने बताया नहीं कि ये क्या सुनाने वाले हैं, तो बता दीजिए प्लीज़, बता दीजिए क्या सुनाने वाले हैं आज।
1: दीदी आज हम लोग श्री राम कथा सुनाने वाले
0: हैं। राम कथा रस वाहिनी यहाँ पर बहने वाली है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको राम कथा भी हमने कहा है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। तो देखिए दो दो नारायण हमारे सामने जो है कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए बिना देर किए हुए,

की मृदुस्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे।

0: की जय श्री राम,
1: जय श्री राम।
0: तो ये थे हमारे होनहार बच्चे, इतनी सुंदर कथा। इन्हें पूरी कथा याद है, लेकिन समय अभाव के कारण हम ये कथा अभी यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आगे भी तो आपको बहुत कुछ सुनना है। अगले संडे हम आपको वादा करते हैं कि ये कथा पूरी ही आप लोगों को सुनाएंगे। तो चलिए भाई, समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। और थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी आज ही रोते हैं हम अपने बच्चों के साथ। आप

0: तो जी हाँ, हम फिर वापस आ गए हैं अपने शैतान नम्टी नम्टी की टोली के साथ। और आज फादर डे है, हमारे बच्चे बहुत सारी भावनाएं लेकर के आते हैं, बहुत सारे उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनके छोटे छोटे सपने होते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ कौन है, कौन है, अकड़ बकड़ कर ले क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ हैं छोटे से शेषकर, और वो अपनी एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि वो दीदी की तरह कथाकार भी बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, अपनी कहानी सुना दीजिए अपने दोस्तों को।
1: दीदी, जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है जिसके हम मामा हैं।
0: ओ, जिसके हम मामा हैं।
1: एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुँचे गंगा घाट, सोचा नहा लें। मुन्ना नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का गायब, मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े रहे। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यह स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार होने वाला MP। मुझे नहीं पहचाना? आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब वह कहीं आपकी नज़र में आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते।
0: तो भाई सावधान हो जाइए, कहीं आपको ऐसा फिर से कोई भांजा ना मिल जाए जो आपको मामा बना करके आपको चूना लगा करके चंपत हो जाए। तो ये कहानी सीख देती है कि भाई पहचाने में गलती मत करिएगा और बचे रहिएगा। तो चलो आज हमारे साथ फिर से त्रिशा प्रिशा, और ये सुनाने वाली हैं, क्या सुनाने वाली हो बेटा?
2: चंदा चमके।
0: चंदा चमके,
2: पापा, पापा के ऊपर सॉन्ग।
0: अच्छा अच्छा, पापा के ऊपर सॉन्ग सुनाने वाली हो, तो चलो भाई सुन लेते हैं। आज फादर डे भी है और बच्चों के, देखिए हमने कहा था ना कि छोटे छोटे बच्चे ढेर सारी भावनाओं लेके आते हैं, और अपने पापा, अपने पेरेंट्स के प्रति, पापा यानी कि जिन्होंने अपने सपने छोड़ दिए इन बच्चों के लिए, इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो देखिए बच्चे के अंदर क्या क्या भावनाएं हैं।

पापा। मीठी मीठी बातों से वो सबको हंसाता है, प्यारी दाऊ

0: वास्तव में देखिए भाई सबसे प्यारे दुनिया में बच्चों को उनके पापा ही होते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार देने वाले उनके पापा ही होते हैं, सबसे हार जाते हैं पर एक, सबसे जीत जाते हैं पर एक बेटी के आगे वो हार जाते हैं, और बेटी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को जीवन भर तैयार रहते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी कड़ी में, हमारे साथ सत्यम जी हैं। और सत्यम जी आप क्या सुनाने वाले हैं आप?
1: दीदी आज मैं एक बहुत बड़ी चीज़ सुनाने वाला हूँ, हर बहुत सारे लोग करते हैं जाति धर्म, जैसे मेरे पास कविता है मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी तो राह शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। साथ उठे सब तो पहरा दो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी अब ही हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। ये कविता जो है ये विनय महाजन जी की द्वारा रचना की गई है।
0: हाँ तो देखिए बच्चे हैं बताना चाहते हैं कि भाई इस समय तो सब कुछ बटा हुआ है। हाँ हमारे मंदिर अलग हैं, मस्जिद अलग हैं, गुरुद्वारे अलग हैं, चलिए सब अलग है, लेकिन इंसान तो एक होना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। ये बच्चे सीख दे रहे हैं, इतने छोटे मासूम बच्चे, उन्हें भी मालूम है कि हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, तभी एक सुंदर प्रकृति की रचना होती है। तो इसी कड़ी में चलिए अब हमारे साथ है सानिध्या। और सानिध्या आप क्या सुनाने वाली हो, जल्दी से बताओ बेटा। पोयम सुनाने वाली हो? हाँ सानिध्या के पास तो पोयम का एकदम खजाना है, तो सानिध्या जल्दी से सुना दो। ओहो भाई देखिए चींटी भी कितनी मेहनत करती है दाना इकट्ठा करने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए कितना परिश्रम करती है। तो चलिए भाई ये बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं, आज बच्चे तो उमड़ पड़े हैं और दीदी का साथ निभाने के लिए, और कितनी सारी वो पोयम लेके आए, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो एक और कविता है अभी, अच्छा तो सुना दो जल्दी से भाई, हम सानिध्या को तो नाराज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सानिध्या यहाँ पे सबसे छोटी सबसे प्यारी सबसे दुलारी है और वो उनकी बात मुझे माननी ही पड़ती है। तो चलो सानिध्या की ओर चलते हैं, और क्या है वो लेकर के आई है आज फादर्स डे पे। आहा

बस ये हाल हुआ तब से, घर वीराना लगता है। कब जी छूटेगा गम से,

0: घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ, और कभी फिर ना जाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी।
1: भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, बहुत सुंदर सानिध्या। आइए, तो हमारे बचपन का गीत था कि पप्पा जल्दी आ जाना। आज सानिध्या ने गा के मुझे उस बचपन की याद दिला दी, और हम लोग बहुत प्यार से ये गीत गुनगुनाया करते थे। बहुत ही पुरानी फिल्म का गीत है ये। तो चलिए भाई, अब बारी आ जाती है। हमारे बड़े बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और उनको भी मंच चाहिए। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, और जल्दी से आ जाते हैं हमारे समर जी। और देखिए आज वो क्या लेकर के आए हैं। समर जी, आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: तो आज साल का बहुत खास दिन है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खास दिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज पूरे साल की सबसे बड़ी दिन और सबसे
1: छोटी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, रात यानी 21 जून।
2: हाँ हाँ, 21 जून। और इसको हम कहते हैं समर सोलस्टिस। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये, और एक बहुत खास बात, इसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो होता है विंटर सोलस्टिस। तो विंटर सोलस्टिस में क्या होता है कि सबसे
1: बड़ी रात और सबसे छोटा दिन
2: होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो है, आपको पता है कि धरती दो पार्ट्स में इक्वेटर में बटी है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन धरती दो चक्कर करती है, एक तो अपने एक्सिस पे जिसको कहते हैं हम रोटेशन, और एक सन का साथ में एलिप्स शेप में जिसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिन और रात रोटेशन की वजह से होते हैं, और चेंज ऑफ सीजन और जितने सारे चेंज ऑफ सीजन होते हैं वो सारे रिवॉल्यूशन की वजह से होते
1: जी
2: हैं
1: जी।
2: लेकिन अब आज 21 जून के बाद से टेक्निकली हम कहें तो गर्मी कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आज समर सोलस्टिस है। आज के बाद धूप कम देर तक पड़ेगी तो गर्मी
1: कम हो जाएगी,
2: कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं इस बात का पुख्ता प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम ये मान सकते हैं।
1: अरे अमूमन ये देखा गया है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है, लेकिन जो एक रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग।
2: और समर सोलस्टिस जो होता है वो रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों संबंधित है। ऐसा इसलिए है कि रोटेशन जो होता है वो धरती की जो एक्सिस है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो कुछ टिल्टेड है, और वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री की तरफ, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, थोड़ा सा टिल्टेड है हमारे। तो ईस्ट की तरफ टिल्टेड होने की वजह से आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे तो आपको या थोड़ा सा एक इमेज जैसा दिखाई देगा कि सन के सामने हमेशा एक धरती टिल्टेड है, क्योंकि तो एक पार्ट उसका हमेशा, धरती का एक पार्ट सन से हमेशा दूर रहता है,
1: दूर रहता है,
2: और एक हमेशा पास में रहता है। तो आज चूंकि हमारे यहाँ समर सोलस्टिस है, आज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऑस्ट्रेलिया जहाँ जैसे देशों के लिए आज के दिन विंटर सोलस्टिस है। आज के दिन वहाँ के लिए सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन है, और ऐसे ही जब वहाँ के लिए समर सोलस्टिस होगा तो हमारे लिए विंटर सोलस्टिस होगा
1: जी।
2: हाँ, और इसका सबसे जो फायदेमंद प्रभाव देखा जाता है वो देखा जाता है हमारे मौसम पे। जैसा कि मैंने बताया कि आज से टेक्निकली गर्मी कम पड़ना शुरू होगी, और आज के बाद दिन में सूरज देर में उगेगा और शाम को जल्दी ढल जाएगा
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि भाई जो रोटेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम होना है। आपके कहने से गर्मी कम नहीं होगी या आपके कहने से ज़्यादा नहीं होगी, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगी, जैसा प्रकृति का नियम है उसी के हिसाब से। तो हमारे इसी कड़ी में बैठ गए हैं हमारे सत्यम जी, और सत्यम जी आज क्या बताने वाले हैं?
3: दीदी आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे के बारे में।
1: ओ आज तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस है
3: जी, दीदी।
1: तो आज तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है, खूब सारे गाने गाए हैं। वो हमारे यहाँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस आज के दिन मतलब पूरे विश्व में मनाया जा रहा, पर हमारे बच्चे हर दिन मनाते, हर दिन गाते रहते, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते,
4: गाना भी चाहिए
1: इससे तनाव कम होता है बच्चों,
4: ब्रेन में डोपामिन नाम का रसायन रिलीज होता है
1: जी
4: तनाव कम रहता है।
1: हाँ, तो गाने से डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है जिसकी वजह से और हमारा तनाव कम होता है, इसलिए खूब गाइए, खूब गुनगुनाइए आप।
4: तो नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हमटी डमटी में गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसी कला की जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत की। हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजिक डे मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री जैक लॉन्ग और संगीतकार म्यूराइस फ्लोरेंट ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि संगीत केवल बड़े मंचों और कलाकारों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम लोग भी संगीत का आनंद लें और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। श्रोताओं, संगीत की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया की लगभग हर संस्कृति का हिस्सा है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन संगीत की धुन हर किसी के दिल को छू सकती है। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। पहला तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत सुनने से मस्तिष्क में डोपामिन नाम का रसायन निकलता है
1: जी जी जी,
4: जो सुखी और संतोष की भावना पैदा करता है। दूसरा तथ्य है कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य लगभग 40 हजार वर्ष पुराना है, जो कि हड्डी की बांसुरी मानी जाती है। तीसरा तथ्य है कि पौधों पर किए गए कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि मधुर संगीत पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। चौथा तथ्य है कि भारत का राष्ट्रगान जनगणमन लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है
1: जी।
4: और यह विश्व के सबसे सम्मानित राष्ट्रगानों में से एक है।
1: बिल्कुल भाई, इस पे तो गर्व करना चाहिए
4: जी दीदी, उस पर हमें गर्व है। पांचवा तथ्य यह है कि संगीत को तनाव कम करने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। कई अस्पतालों में पेशेंटों को आराम देने के लिए म्यूजिक थेरेपी का उपयोग किया जाता है। भारत की संगीत परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे देश में तानसेन, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे महान कलाकार भी हैं, जिन्होंने भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाया। विश्व संगीत दिवस हमें यह सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है।
1: बिल्कुल,
4: जब अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग एक ही धुन पर झूमते हैं तो संगीत मानवता की एकता का प्रतीक बन जाता है।
1: बिल्कुल, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और जब कभी भी हम ड्राइव करते हैं तो एक हल्का सा संगीत बजता रहता है, इससे जो एग्जर्शन होता है वो नहीं होता है और हम तनाव मुक्त होकर के ड्राइव करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हमको कुकिंग से बोरिंग फील होता है तो हम क्या करते हैं कि संगीत लगा लेते हैं और उसकी धुन के साथ मस्ती से खाना बना रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है।
2: आपको संगीत के अंदाजे का पता तब, आपको संगीत के महत्व का अंदाजा तब होगा जब मुझे याद नहीं है, एक बहुत बड़े रशियन रेवोल्यूशनरी थे, तो उनको पिछले 23 सालों से अनिद्रा की समस्या थी, उनको नींद नहीं आती थी। तब एक भारत के बहुत बड़े कलाकार उनको गए और वहाँ पे भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसको हम लोरी कहते हैं
1: जी,
2: वो सुना करके उनको 23 साल बाद सुलाया ठीक से।
1: समझिए कि कितनी पावर है संगीत में, है ना। माएँ जो गुनगुनाती हैं, बच्चे सोते नहीं, हल्की सी थपकी देती है और उसके साथ कुछ गुनगुनाती रहती हैं तो बच्चे तुरंत ही एक गहरी नींद में सो जाते हैं। ये तो
4: पहले जी दीदी, तानसेन जब गाता था तब बारिश होने लगता था
1: भाई, तब तो मैं नहीं थी लेकिन ऐसा सुना जाता है कि तानसेन की
5: ये अतिशयोक्ति अलंकार का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे बीच में।
1: कहते दीप चंदी राग होता था जिससे दीपक जल उठते थे तो चलिए भाई, बहुत कुछ संगीत में तो पावर है ही, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता है। तो बस आप गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत का आनंद लेते रहिए। चलिए हम चलते हैं यश की ओर, और यश आज क्या बताने वाले हैं?
5: आज हम हल्दीघाटी के उस युद्ध को याद करने वाले हैं।
1: भाई भाई, संगीत के बीच बीच में अब युद्ध की भी बात है
5: आज हमारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, ऐसे ऐसे युद्ध चल रहे हैं जो कि उस हल्दीघाटी के युद्ध से भी घातक है। आज मुझे भारत के इतिहास के एक सबसे लीजेंडरी और अनफॉरगेटेबल अध्याय के बारे में बोलने का अवसर मिला है, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी यानी हल्दीघाटी का वह युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह स्वाभिमान, अदम्य साहस और देश प्रेम की अनपैरेलल्ड एक मिसाल थी। ये ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 या कुछ लोग कहते हैं 21 जून, इसीलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पर ये जो डेट्स कन्फर्म्ड होती थी ये उतनी कन्फर्म्ड आज के हिसाब से नहीं हुआ करती थी। कुछ ने लिखा कि 21 जून को हुआ, कुछ 18 जून। उस समय तक हमारे भारत में ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम
1: नहीं, ऐसा होता था कि युद्ध चल रहा है तो उसकी एक मतलब पर्टिकुलर डेट नहीं होती थी क्योंकि चल रहा है तो 17 को भी चल रहा है, 18 को भी चल रहा है, 19 को भी चल रहा है, 20 को चल रहा है, 21 को चल रहा है, वो एक कंटिन्यू बना हुआ है।
5: और अगर आप सोचिए कि बीच रात में कोई युद्ध अगर मान लीजिए स्टार्ट हुआ तो वो कौन से दिन माना जाएगा 16 जून 17 जून इसलिए हाँ कुछ भी हो सकता है। तो उस समय पर
1: इतिहासकारों ने लिख दिया वो हमने मान लिया
5: जो। और देखिए उस समय भारत पे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी नहीं माना जाता
1: हाँ,
5: था
1: बिल्कुल।
5: उस समय ये जो विक्रम संवत है वही माना जाता था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। देखिए उसमें कोई धर्म वाली बात नहीं थी, ये मान सिंह ही थे जो कि अकबर की सेना की मतलब एक नेतृत्व कर रहे थे। हल्दीघाटी जो अरावली पहाड़ियों के बीच एक तंग पहाड़ी दर्रा है, अपनी पीली मिट्टी के कारण इस फेयर्स टकराव की गवाह बनी थी। इसका जो दरवाज़ा था युद्ध का वो बहुत पतला था। अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो दोनों पक्षों में भारी अंतर था। मुगल सेना बहुत मैसर थी और वेल इक्विप्ड थी और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी थी क्योंकि उसके नेतृत्व तो मान सिंह कर रहे थे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नेतृत्व करता थे जिसमें लगभग 80,000 सैनिक शामिल थे। इसके विपरीत महाराणा प्रताप की सेना संख्या में काफ़ी कम, लगभग 20,000 थी, लेकिन उनका हौसला अनसेकेबल था। महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे बल्कि हकीम खान सूरी के नेतृत्व में अफगान सैनिक और राणा पूंजा के नेतृत्व में लॉयल भील योद्धा भी शामिल थे।
1: अच्छा,
5: और उसमें देखिए इस युद्ध में मैंने कहा ना, एक तरफ से अकबर की तरफ से थे मान सिंह और दूसरी तरफ से ये महाराणा प्रताप की तरफ से, मैंने अभी बोला कि ये उस समय के अफगान सैनिक भी उसमें लड़ रहे थे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था। उनको बस अपनी टेरिटरी जो थी मेवाड़ की वो चाहिए थी। जब महाराणा प्रताप मुगलों से घिर गए तब झाला मान सिंह ने हीरोइक कदम उठाया। उन्होंने प्रताप का राजकीय मुकुट खुद पहन लिया ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए और महाराणा को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। झाला मान ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और वो जो आपको मैंने बताया महाराणा प्रताप, वो ऐसे थे ना कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, 70 किलो का उनका कवच था, 80 किलो का भाला, 104 किलो की दो दो तलवारें रखते थे।
1: बताइए किस तरीके इतना वजन लाद करके भी वो चेतक पर सवार
5: थे। चेतक इतना वजन लेकर चलता था,
1: चेतक
5: वो भी इतना वजन के साथ वो 26 फीट का नाला पार करके गया था। सोचिए बहुत 26 फीट बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात
5: घोड़े के लिए। और 104 किलो की दो तलवारें इसलिए वो रखा करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर मेरा सामने वाला शत्रु निहत्था है तो मैं उसे निहत्ते उस पर वार नहीं करूंगा, उसको भी एक तलवार पकड़ाऊंगा और खुद उससे कमजोर तलवार लूंगा और फिर उससे युद्ध करूंगा। ये उनकी सोच थी उस युद्ध में। धन्यवाद।
1: तो चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारा समय भी समाप्त हो गया है और हमको भी अपने घरों की ओर लौटना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बस जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, हम जाए और मम्मा को परेशान करें। और आज चूँकि फादर डे है तो फादर के लिए भी उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है, कोई केक काटेगा, कोई गिफ्ट देगा, तो ढेरी और तैयारी है। अभी हम बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्या तैयारी उन्होंने अपने फादर्स के लिए की हुई है, फादर्स को खुश करने के लिए, उनको एक सैल्यूट देने के लिए। तो चलिए भाई समय हो गया है, बस चलते चलते आपसे इतना ही कहना है कि आप योगा करते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, आप संगीत सुनते रहिए और आप हंसते रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और सुनते रहिए 89.6 FM।
6: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हेलो
3: भाई, यार मनु टाड़े खबर सुनी?
2: ओ हाँ यार, खबर तो सुनी।
3: चल चल भाई, फिर शाम का प्रोग्राम कैंसिल
2: यार। वो तो मैं पिंडों में नाल गया भी तो रहा है।
3: हाँ यार, मुझे फिर की बनूं?
2: ये तो हल तो हम बड़ा भाई ही कर सकता
3: है।
2: मतलब तुसी
4: पहुंचो, मैं आ गया।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, आज है रविवार और बहुत ही खास दिन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। सुबह सुबह उठ करके हमको लगता है यार सबने तो योग किया ही होगा। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं हमसे। फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपका दोस्त बनू और हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट वाले आरजे यानी आरजे
1: अदनान। जी हाँ, सो हम दो आरजे जागे हैं। संडे का वक्त होता है कुछ खास बनाने का। फिलहाल आज एक खास दिन नहीं बल्कि दो और है जो कि आप भूल गए।
0: हाँ,
1: कौन सा है?
0: नहीं, हमने एक बता दिया, हमने कहा बाकी आप बताइए।
1: कहा नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये तो हम भी करते हैं ना।
0: नहीं, हमने कहा एक हम बता दें।
1: नहीं है, बताइए फिर।
0: नहीं तो मतलब कुछ
1: अड़ जाएंगे तो बता नहीं पाएंगे।
0: नहीं नहीं।
1: सो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है ही है, प्लस आज हमारे नन्हे में बच्चे बता देंगे कि और क्या क्या है। हाँ। क्या है बच्चे? आज
2: है इंटरनेशनल म्यूजिक डे और है फादर्स डे।
1: यस,
0: क्या बात है।
1: सो आज फादर्स डे भी है और इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी है। आप को फादर्स डे कैसे आपका बच्चा विश करेगा? आप सो के उठते हैं 11 बजे, तब तक वो काम पे निकल जाता है और अब्बा उसको सोया करते हैं। उल्टा हो जाता है।
0: नहीं, उल्टा नहीं हो जाता है। मेरी एक छोटी सी बिटिया है, अभी वो सो ही रही है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मतलब मैं यहाँ आया हूँ तो वो सो रही थी। तो मुझको पता होता कि फादर्स डे है तो उससे कुछ कहते कि बेटा कुछ अपने पापा के लिए करो, लेकिन अभी बेचारी छोटी है तो उससे क्या कहें, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।
1: जो पापा करने लगे पापा ही नहीं करते हैं। ऑलराइट। सो आज तीन तीन खास दिन है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, दूसरा फादर्स डे और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजिक डे। और ये तीनों ही दिवस अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। हमारे साथ में ऐसे भी दो पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं होनहार, जो अच्छी जिनकी लेखनी है, जो अच्छी अच्छी बातें लेकर के आते हैं एवरी संडे। साथ में तीन ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चे भी बैठे हुए हैं, जिनको आप सुन लेंगे तो आप हैरान होंगे कि भाई इतनी बेहतरीन म्यूजिक, मतलब वाह क्या बात है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टाइम ऑलरेडी काफ़ी इशारा कर चुका है कि चलिए अब इन बच्चों की तरफ चले। सो शुरुआत म्यूजिकल ही होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि अपने म्यूजिकल पार्टिसिपेंट को हम इनवाइट करते हैं, पहले तो उन्हीं से उनका नाम जान लेते हैं और एक बार वापस से पूछते हैं क्योंकि ये नाम आपने सुना हुआ होगा। बच्चे क्या नाम है आपका?
2: शानवी तिवारी।
1: शानवी है हमारे साथ में मौजूद। शानवी के साथ एक और प्यारा सा बच्चा है, तुषा है। शानवी, तुषा, नाम याद रखिएगा श्रोताओं, आपसे मैं पूछ सकता हूँ अचानक। तीसरा बच्चे आपका नाम क्या है?
3: प्रशा तिवारी।
1: प्रशा क्या है? शानवी, तुषा, प्रशा, नाम बहुत ही प्यारे हैं, छोटे छोटे से हैं। अचानक से आरजे मनु, मैं आपसे पूछ लूंगा बाद में। याद रखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, ये नाम बड़े ही प्यारे नाम है बच्चों के। तो बच्चों कौन सा गाना आप गाकर इस प्रोग्राम की ऑफिशियली स्टार्टिंग करने वाले हैं?
2: मेरे सामने वाली खिड़की में।
1: आपके सामने वाली खिड़की में? तो बच्चे वो एडिटर बैठता है हमारा जहाँ से एडिट करता है। अच्छा, आप घर के? ओ हो हो, मैं स्टूडियो के सामने वाली खिड़की समझ रहा था। खैर कोई बात नहीं।
0: अच्छा, तो आपके घर के सामने तो वो कूड़ेदान वाला ट्रक रहता है, उसकी बात कर रहे हैं आप?
1: अरे नहीं, वो तो आप कई बार लाके खड़ा कर देते हैं।
0: तो खिड़की के सामने क्या रहता है शानवी जी?
1: प्यारा सा पेड़ है।
0: पेड़ है,
1: हरा भरा।
2: आंसर सही है।
0: आदनान से सही है, पेड़ है और उस पेड़ पर कभी कोई बंदर आकर बैठ जाता है?
1: कभी कभी आते हैं आम खाने। कुछ उधर आवास विकास में रहने वाले बंदर आते हैं।
0: आवास विकास में रहने वाले बंदर आते हैं। देखो ये तुमको बंदर कह रहे हैं,
1: बंदर समझ गए।
0: बंदर समझ गया।
1: शानवी भी समझ गई है।
0: शानवी भी समझ गई बेचारी है। सही है कि बताइए कैसे उसकी सहेली को आपने बंदर बता दिया?
1: नहीं नहीं, हमने सहेला को कहा है। तो चलिए फिलहाल अब शुरुआत करते हैं। और अब ये जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं यानी शानवी हो, तुषा हो या प्रशा हो, आप तीनों लोग मिल करके एक गाना सुनाने वाले हैं अपनी अच्छी सी, अपनी तोतली सी, अपनी मासूम सी आवाज़ में।

0: क्या बात है
1: भाई, क्या बात है। लगता है कि वास्तव में आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस है।
0: हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्यारे प्यारे बच्चों ने एक साथ इस गाने को सुनाया है। वैसे मुझे याद आ गया, बचपन में जब हमको भी पापा माए बोलते थे चीज चीज नहीं देंगे, और चीज में क्या होता था, काजू बादाम होता था।
1: अच्छा।
0: बहुत पसंद था। देखो बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो इन बच्चों को, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है, या वो जो बिस्किट्स आते हैं चॉकलेट वाले, तो अगर इसको ऐसा नहीं पसंद है। अच्छा तुषा को नहीं पसंद है, तुषा ने ना में कर दिया, ना ये सब मुझे ना पसंद है। पसंद क्या, पहले आप बताओ फिर हम आगे की बात बताते हैं।
2: यही
0: ड्राई फ्रूट्स पसंद है। तो आप तो हमारे जमाने की हो गई। ठीक है, सो अगर अभी गाया जाए तो मेरे सामने वाली अलमारी में एक चॉकलेट सा बिस्किट रखा है, अफसोस ये है कि आज मम्मी हमसे खफा खफा है। मतलब जब मम्मी गुस्सा होती है तो आप चाह के भी उस बिस्किट उस अलमारी को हाथ नहीं लगा पाते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
2: होता है,
0: है ना। और आपको खाना होता है, चाहिए होता है। इस तरह से गाने की लाइंस देखिए अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ कस्टमाइज गाने बनाए जाते हैं अपने अपने सिचुएशंस पे।
1: नियम एवं शर्तें लागू।
0: हाँ बिल्कुल, और बहुत प्यारा है। चलिए फिलहाल हमारे साथ दो और पार्टिसिपेंट हैं, रिया एंड सृष्टि, इन लोगों की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं आज इस खास तीन जो दिवस है उनमें से क्या किसी एक पर आप कुछ लिख कर लाए हैं, क्या आप कुछ बताने वाले, अगर है तो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं रिया को, और रिया बताएंगी कि आज के स्पेशल डे में आप क्या लाई हैं और हमारे श्रोताओं तक आखिर क्या पहुंचाने वाली हैं, क्या है आज आपकी पोटली में।
3: सर पापा के ऊपर शायरी।
0: पापा के ऊपर शायरी है? पापा के ऊपर आसमान होगा। अच्छा अच्छा, पापा के ऊपर शायरी है। शानवी आपके पापा के ऊपर क्या है? छत है। चलिए ठीक है, पापा के ऊपर शायरी बताइए।
3: पापा के घर के वाईफाई जैसे होते हैं।
0: पापा घर के वाईफाई जैसे होते हैं?
1: अरे क्या बात,
3: कम है
0: दिखते,
3: काम
0: कम है?
3: बहुत आते हैं,
0: काम बहुत आते हैं। अच्छा,
3: और जब नाराज हो जाएं तो सारे कनेक्शन हिल जाते हैं।
0: वाह
1: क्या बात, क्या बात है, क्या मतलब, क्या
0: कितना
1: मतलब
0: बढ़िया एग्जांपल है। देखिए
1: फादर को एकदम मॉडर्नाइज कर दिया,
0: मॉडर्नाइज कर दिया, वाईफाई बता दिया।
1: हाँ वाईफाई बता दिया। आज तक किसी कवि ने फादर को वाईफाई नहीं बताया,
0: नहीं बताया था।
1: ये पहली कवियत्री हैं, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए।
0: बेशक बेशक।
1: हाँ साहित्य अकादमी अवार्ड से हम बातचीत करते हैं कि पिता को वाईफाई के समान बताने वाली ये खोज, ये काबिल तारीफ है।
0: बेशक। सो बहुत प्यारी बात बताई आपने, वाईफाई के जैसे होते हैं और कनेक्शन अगर हिल जाए तो, यानी
3: जैसे अगर नाराज हो जाए, पापा नाराज हो जाते हैं।
0: हाँ
3: तो मतलब
0: ऐसी तैसी।
1: फिर वो घर घर नहीं रहता।
0: अच्छा कभी कोई ऐसा मूवी देखते देखते आया हो कि कोई ये विलेन जो है हमारे पापा जैसे है, ऐसे ही डांटते हैं हमारे पापा, ऐसे ही गुर्राते हैं देख करके? कौन सी मूवी देखी, कौन सा कैरेक्टर था और पापा के जैसा लगा? मूवी का नाम नहीं पता, क्या डायलॉग था, कुछ कोई डायलॉग याद है?
3: जैसे मतलब मेरे पापा डांटते हैं चिल्लाते हैं।
0: हाँ जी
3: वैसे ही होता है।
1: वो कहते नहीं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी,
3: नहीं मेरे पापा तो बोलते जाके पहाड़े तला में चले जाओ।
0: जाके पांडे तालाब में चली जाओ क्योंकि पिछले 17 दिन से तुमने नहाया नहीं है। ये तो गलत बात है ना, हम कोई भी फादर होंगे मारे कचाए के यही बोलेंगे, उसके बाद कचाए जाएंगे।
3: ओ, उस दिन शाम को बिना बताए मैं फ्रेंड के साथ चली गई थी वहाँ।
0: बिना बताए चली गई?
3: बिना बताए चली गई।
0: पांडे तालाब में?
3: नहीं।
0: हमें लगा पांडे
3: सीबीएस रेस्टोरेंट,
1: सीबीएस चाय सुट्टा बार।
3: हाँ
1: CSB
3: जी, सॉरी
0: CBSE। तो हम उधर चले गए थे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
3: वहाँ से बिना बताए पापा को चले गए थे। जब 6 बजे गए, रात के 8:30 बजे आए।
0: रात में होता है क्या 8:30? अच्छा खैर होता ही होगा। तो फिर 8:30 बजे आए तो फिर क्या हुआ?
3: बुआ भी आई थी।
0: हाँ कटैया करने आपकी?
3: हाँ मतलब रुकी थी,
0: मतलब भाई बहन ने मिलकर सोचा आज बहुत दिन से कोई कस्टमर मिला नहीं, हाथ साफ
3: करने मारा नहीं था।
0: अच्छा,
3: लेकिन बुआ के चक्कर में मारा। बुआ इतनी मतलब
0: प्यारी है,
4: आग में घी छोड़,
3: बुआ मतलब आग में घी छोड़।
1: जनरली होता ही है कि बुआ
0: घी खाई नहीं जा पा रहा, 700-800 रुपए मार्केट में पता कर
3: मतलब वो रहता है।
0: क्या रहता है?
3: मतलब
0: आदमी ही रहता है।
3: हाँ, वो हर बात पे चिल्लाती है,
0: हर बात पे चिल्लाती है, जैसे कहेंगे गुड मॉर्निंग
3: नहीं
0: ऐसे बोलेंगी,
3: हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि ये करती है, सारा दिन बैठ के फोन चलाती है, ये है वो है।
0: अब देखिए जो देखा जाएगा अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं,
3: चाहे जितना काम करके बैठो और फ्री भी रहो।
0: आज तक आपने काम ही नहीं किया, आपने हमेशा ही बोला हम टहलते हैं खाली, हम काम नहीं करते हैं। जो इन्होंने खुद बोला है, देखिए मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके स्टेटमेंट है।
3: जी सर, मैं नहीं बोला।
0: तब फिर तो आप काम क्या करते हो? नहीं, पहली बात तो अभी आ गई आज की, ये काम कौन सा करते हो आप जो आप कर रहे हो इतना काम?
3: जब से बुआ आई थी दो चार दिन रुकी है, तब से काम मिल गया।
0: ये भगवान ऐसी बुआ सबको दो ताकि बच्चे सुधर जाए।
3: किसी को ना
0: ये सुन रही होंगी अभी अभी घर जाते ही फिर स्वागत होगा।
3: कल सुबह ही भेज दिया,
0: कल गोइल आज फिर आज ऑयल वापस।
1: नहीं, आपकी बुआ फिर से वापस आए ऐसी हम कामना करते
0: कामना करते
3: अब नहीं आएंगे वो, रक्षाबंधन दिवाली बाद ही आएंगे।
1: रक्षाबंधन में तो आएंगे
3: नहीं, आएंगे पापा जाएंगे।
0: दिवाली में वैसे किसी को फूका जाता है।
1: हाँ
0: चलिए, आगे समझदार के लिए इशारा काफी है। खैर बहुत अच्छा आपने बोला, फादर्स डे पे जो आपने बोला वो बहुत उम्दा था, बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। अब इन्हीं की मित्राणी बैठी हुई हैं, सृष्टाणी मतलब सृष्टि बैठी हुई है। तो चलिए देखते हुए सृष्टि क्या लेकर आई हैं आप बताइए।
2: फादर्स डे पे है।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: पिता वो साया है जो धूप में भी ठंडक दे जाता है, अपने हर दर्द को छुपा कर हमें मुस्कुराना सिखाता है, उनके बिना अधूरी लगती है जिंदगी की हर राहें, पिता ही वह शख्स है जो बिना कहे सब समझ जाता है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत प्यारा। पिता ही वो साया है, क्या है पिता?
2: पिता साया है।
0: अच्छा, जो बिन कहे समझ जाते हैं,
2: बिन कहे समझ जाता है हर चीज़।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: सही बात है। जब ये बात आई तो मुझको राहत इंदौरी याद आ गए।
0: कब नहीं याद आते हैं आप?
1: हमेशा
0: अपनी पत्नी से ज्यादा तो राहत इंदौरी याद आ जाते हैं।
1: नहीं, हमको रसीम बरेलवी ज्यादा याद आते हैं, लेकिन आज राहत इंदौरी याद आ गए पिता पर।
0: अच्छा,
1: उन्होंने कहा कि मतलब जो पिता होता है वास्तव में, जोक्स अपार्ट अगर हम मजाक से परे हटकर बात करें, तो जो मुझे लगता है कि जो माँ होती है उसका योगदान तो ज़्यादातर जिक्र उसका होता ही होता है, और पिता का जिक्र भी होना चाहिए, मतलब वो उनके बारे में भी बातचीत करनी चाहिए। तो राहत इंदौरी ने कभी कहा कि सबकी नींदों में चलें ख्वाबों में शामिल हो जाएं।
0: क्या बात है,
1: सबकी नींदों में चलें ख्वाबों में शामिल हो जाएं, लोग सोए हैं चलो शहर में दाखिल हो जाएं।
0: वाह,
1: कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं। कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद जो दो पंक्तियां उन्होंने कही वो शायद दुनिया के हर पिता का दर्द होगा, और उस दर्द को मैंने महसूस किया। उन्होंने बोला कि ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाएं।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो जो पिता जीता है वो शायद अपने बच्चों के लिए जीता है और उनको कुछ बनते हुए देखना चाहता है अपनी आंखों के सामने। तो वास्तव में समर्पण तो है ही है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है।
0: वाह क्या बात है, बहुत सही ये शेर कहा गया है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने उसको कोट किया। इसी के साथ में रिया भी कुछ कहना चाह रही हैं और सृष्टि भी, तो चलिए पहले सृष्टि की तरफ चलते हैं और कुछ और भी लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: पापा और मम्मी की डांट भी बड़ी प्यारी लगती है, उनकी हर बात भी न्यारी लगती है, जब जेब खर्चे की बारी आती है तब उनकी मुस्कान सबसे प्यारी लगती है।
0: मतलब जब जेब खर्चा मिल रहा होता है। वाह क्या बात,
1: जब मिलता है आपको।
2: हाँ मिलता है।
1: तो फिर आप मंगलवार को क्यों बैठी थी?
2: हम कहाँ बैठे थे?
1: हनुमानगढ़ी पर।
0: आप ही
2: आज तक हनुमानगढ़ी आई नहीं है।
0: अरे आपने किसी और को देखा होगा जब आप बैठे होंगे।
1: नहीं, आप तो कंबल ओढ़े सफेद वाली तौलिया ओढ़े बैठे थे हमारे साथ। हमने इशारा भी करते कि अदनान से देखिए वो सृष्टि याद कीजिए।
2: पैर मेरा चलने के काबिल है नहीं, मैं मंदिर कहाँ पहुँच जाऊंगी।
0: नहीं नहीं, असल में ये अपना पैर तोड़ के जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो इनको लगा कि हर आदमी यही करता है।
1: हर आदमी
2: यही करता है। ये हुआ कि मैं उस दिन तवे पे तेल गरम कर रही थी।
0: हमें लगा तवे पे खड़ी थी।
2: पूरा तेल मेरे पैर पे गिर गया अरे फफोला निकल आया।
1: मतलब इस समय आपका पैर अत्यंत दयनीय स्थिति में है।
2: बहुत ज्यादा। चलिए,
0: मतलब ये चल के आई, ये मुझे लगता है यही बहुत बड़ी बात है। मतलब लिटरली
3: ऑटो से आई है।
0: ओके, अरे मतलब
2: घर से पैदल आया, उसके बाद ये ले गई मुझे चौक, फिर चौक से लेके आई है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, बहुत करेजियस है आप, एंड आपको और भी ज्यादा हौसला मिले। एंड थैंक यू सो मच कि आप स्पेशल डे सेलिब्रेट करने गोंडा एफएम तक आई, डायरेक्ट स्टूडियो। थैंक यू सो मच। रिया की तरफ चलते हैं, और रिया भी हमारे साथ कुछ लेके आई हैं यार, और ऑफ कोर्स पहुंचाते हैं अपने श्रोताओं तक। सो क्या बताने वाली हैं आप?
3: सर, महादेव के लिए।
0: ओके।
3: वो दिन कभी ना आए जब हद से ज्यादा गुरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे महादेव, हर दिल दुआ देने के काम आए।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी इल्तिजा है, बहुत प्यारा ये मानना है आपका, एंड महादेव को आपने समर्पित किया ये बात। थैंक यू सो मच। और बड़ी अच्छी बातें आप लोग बताते हैं जब भी आते हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और आप लोगों के लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, जाने से पहले आप दोनों लोगों से एक, चूँकि आप लोग यंगस्टर हैं, यंग हैं, तो एक सवाल जो मैंने मॉर्निंग में भी किया था, मैं मुझे लगता है रिया से करना चाहिए, सृष्टि सुन रही थी, इसको जवाब पता होगा। आजकल के यूथ जो है वो योग डे मनाते हैं, पोस्ट देंगे, फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, तो इस क्रिया को कौन सा आसन कहेंगे? योगा में आसन होते हैं, जो ये काम कर रहा है उसको कौन सा आसन कहेंगे?
1: इंस्टाग्राम आसन।
0: लो, इन्होंने बता दिया इंस्टाग्राम आसन। आप बताइए,
2: कुकड़ू का आसन बताया था।
0: कुकड़ू आसन तो हमारी सविता दुबे जी ने बताया था। मतलब मुर्गे जैसा बैठना।
2: वो तो पनिश मिलती है तब बैठ,
0: पनिशमेंट मिलता है, वही तो कह रहा। अभी रिया को बैठा के दिखाएंगे कैसे होता है। तो ये बताइए रिया, क्या लगता है, जो लोग योग डे को मनाते हैं, फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उस आसन को क्या कहेंगे? आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछ ले। नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों ने देखा है ना कि लोग इंस्टाग्राम पे कोई स्नैप लेते हैं, स्पेशली अगर योग डे है, आज कई लोगों ने लिया है, स्टेटस पे लगा दिया है, बट योगा करते नहीं है। करेक्ट। तो उस आसन को क्या कहा जाएगा?
2: शो ऑफ आसन।
0: बढ़िया जवाब है, शो ऑफ आसन, दिखाने वाला। और तुषा का क्या कहना है, कौन सा आसन है?
4: इंस्टाग्राम आसन।
0: इंस्टाग्राम आसन, वाह क्या बात है। प्रशा क्या कहने वाली है, प्रशा को क्या लगता है कौन सा आसन है ये?
5: ये मॉडर्न आसन।
0: मॉडर्न आसन है, बट एक्चुअल में क्या है ये बताएंगे सृष्टि?
2: इंटरनेट आसन है, इंटरनेट।
0: अच्छा, नहीं ये भी नहीं बता पाई। आरजे मनु, मुझे लगता है यही तो एक ऐसे अर्जुन है जो हर लक्ष्य को भेद जाते हैं, और ना भेद पाए तो लक्ष्य ही उखाड़ फेंकते हैं। चलिए बताइए।
1: नहीं, अब क्या बाबा, आपने तय कर लिया है, मतलब अपने हिसाब से अपने उत्तर...
0: आप ये जानते हैं ना कि जैसे आजकल यूथ यही कर रहा है कि हर चीज की स्नैप लेके डाल देना, उस डे को सेलिब्रेट कर लेना। तो योग डे पे योग कर नहीं रहे रेगुलर, लेकिन उसकी एक स्नैप लिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, तो उस आसन को क्या कहेंगे?
1: सब कुछ मतलब पर्टिकुलर वर्ड,
0: हाँ मतलब आपको जो लगता है, ये नहीं कह रहे वही कहेंगे, वो मुझे जो लगता है वो बताऊंगा, बट आपको क्या लगता है?
1: हमको लगता है स्नैपासन।
0: लो, स्नैपासन। ऑलराइट, सो मैं तो उसको पोज आसन कहूंगा।
1: पोज आसन,
0: पोज आसन, पोज देना।
1: अच्छा,
0: अरे योगा है तो योगा का पोज देना, मदर्स डे है तो मम्मी के साथ की स्नैप डालना, पापा है आज फादर्स डे तो फादर के साथ में, जो भी होता है तो पोज आसन में कहलाते हैं। खैर, पोज आसन लेते हुए हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं, बट एक आज एक सरप्राइज है छोटे बच्चों की तरफ से हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को मिलने वाला है। वो क्या सरप्राइज है वो तो ये बताने वाले हैं खुद ही इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल लेते हैं छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए अपना ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना एफएम, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत इस्तकबाल खैर मकदम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 9.6 FM यह गोंडा शहर की धड़कन कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। तीन तीन खास दिन हमारे साथ, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, पितृ दिवस भी है और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। और इस मौके पर हम सभी आए हैं लेकर एक बहुत बड़ी सरप्राइज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिसमें हम सब रहेंगे।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: वो सरप्राइज क्या होने वाला है अदनान सर?
1: मतलब इवन मैं खुद भी खुश हूँ क्योंकि ये सरप्राइज मेरी तरफ से नहीं था, ना रेडियो टीम की तरफ से था, बल्कि ये खुद हमारे प्यारे से बच्चे खुद लेकर आए थे।
0: जी
1: तो ये सरप्राइज अब चूंकि खुद लेकर आए हैं तो ये खुद ही बताने वाले हैं क्या होगा और कैसे होगा, ये भी बताने वाले हैं।
2: ये सरप्राइज है अंताक्षरी।
1: क्या बात है। सो आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे भी है, यानी संगीत दिवस है, और उस पर आपने कहा है कि अंताक्षरी होगा, बट होगा किसका किससे ये तो पता ही नहीं है।
2: हाँ, हम तीन और आप तीन।
1: हम तीन आप तीन। आप तीन कैसे हो सकते हैं और मैं तीन कैसे हो सकता हूँ?
2: देखिए,
1: दिखाइए।
2: और मेरी दोनों बहने, हम तीन हो गए।
1: अच्छा, तो नाम बताइए टीम में। टीम ए में कौन कौन है?
2: टीम ए में है शानवी, तुषा, प्रशा। टीम ए में है शानवी, तुषा, प्रशा। टीम बी में रहेंगे अदनान सर, मनु सर,
3: अंजनी
1: कुमार, अंजनी सर,
2: अंजनी सर।
1: क्या बात है। तो बेटा आपकी एज तो 13 इयर्स ओल्ड है आप, ठीक है, और अंजनी सर आपकी एज क्या है? 67। सो 13 वर्सेस 67, मतलब ये पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी कोई अंताक्षरी होने वाली, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला लिटरली। क्या बात है, मतलब ये आपके इनिशिएटिव से आप तीनों लोगों ने जो सोचा था वो हो रहा है। ये पहली बार दुनिया में होने वाला है कि 13 इयर्स का बच्चा जो है और उससे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो है,
3: जीतेंगे इन्हीं लोग, ये भी बता दें,
1: ये जीते हुए हैं। ये म्यूजिक के मास्टर हैं,
3: सही तो कह रहे हैं।
1: इनको थोड़ा सा और ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करा दिया जाए तभी हार जाएंगे।
0: हम लोग हारने के लिए तैयार बैठे। तो शानवी शुरू करो बेटा।
1: शानवी को बुरा लगे, कहेगी आपने ऐसे कैसे पहले ही हार मान ली ना, कहेगी भाई लड़ो तब तो फिर आप माना जाएगा। सही बात भी है।
2: तो शुरू पहले,
1: ये पहले से ही हारे इसलिए अपनी हार को स्वीकार कर रहा है।
3: ऑप्शंस दे देना बाद में, जब अगर नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो कहीं ऑप्शन दे देना। अच्छा चलिए कोई और भी गा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
3: ठीक है।
1: तो
0: चलो शुरू करो भाई।
1: चलिए हाँ, फिर शुरू करो।
0: कैसे कहती हुआ? नहीं नहीं, आप गाओ।
2: अच्छा ठीक है, शुरू करो। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
1: आप पे ही आया माँ,
0: आप पे ही आया माँ।
1: चलिए अब होगा कड़ा मुकाबला, महा मुकाबला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली पर।
0: जी
1: ऐसा लग रहा जैसे हम कोई न्यूज चैनल लगा दिए। सो सुर का संग्राम होने वाला है आज अंताक्षरी अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर।
2: मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पलघट पे मेरी पकड़े है।

0: से आया है और टीम में है अंजनी सर, आरजे मनु और मैं।
1: सबसे पहले आंसर कहेंगे
0: ये लो। ये पिछले हफ्ते की जो हमने एक वर्ड बोला था उसकी दुश्मनी निकाली जा रही है। हमारे कुछ लिसनर्स को पता भी होगा कि हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं। शादी को दोबारा नहीं बोलेंगे, चिढ़ जाती है। सास से करना है
2: जी।
0: ओके, सात क्या है, मतलब सास से क्या हो सकता है। ओके,

0: वाह वाह वाह, क्या गाना है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह से सोच रहे थे जब तक हम वाह कर रहे
1: हैं।
0: हाँ हाँ शुरू किया जाए।
1: वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ,
0: क्या बात है,
1: जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, अरे छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जब तुम हो जब मैं भी हूँ।
0: हाँ
2: हम

0: जमाने।
1: अंजनी सर इस बार ना से आपको गाना है। ना से
2: वो है लेकिन पूरा नहीं याद है।
1: एक लाइन, कोई बात नहीं, एक ही लाइन, बाकी के हम अपना जोड़ देंगे। अलग
2: करके प्यार तुम्ही से कर बैठे,
1: क्या बात है।
2: नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे,
1: वाह।
2: करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे,
1: नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ठा से गई है, ठा से ठठेरा।
0: ठमक ठमक जांदी आ माये दे नाल, ठमक ठमक जांदी आ माये दे नाल, ओ सोना मेरा जाना टुड़ माया ओ दे नाल, जुत्ती मेरी जांदी टुड़ माया ओ दे नाल, ठमक ठमक जांदी आ माये दे नाल, ठमक ठमक जांदी आ माये दे नाल।
1: ला ला से
2: बहुत खतरनाक कंपटीटर
1: ले।

0: जा से
1: जहाज नहीं
2: जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, धीरे धीरे से मेरे दिल में समाते हो।
1: क्या बात है।
2: जहाँ मैं जाती तुम वहीं चले आते हो, धीरे धीरे से मेरे दिल में समाते हो।
1: हो हाँ से
3: हमें तुमसे प्यार।
1: क्या बात है। हमारे कुमार सानू साहब आ गए।
3: ये हम

0: तुमसे प्यार। क्या बात है, रा रा से गाइए जी। रा रा रा रा
1: आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।
0: क्या बात है बच्चे,
1: दीप

0: गासे
1: तुम भुला ना दोगे
2: घर, तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे।
0: क्या बात है,
2: हम तुम नजुदा होंगे, हम तुम नजुदा होंगे।
3: वाह क्या बात है भाई।

0: राम करे ऐसा हो जाए, तेरी निंदिया मुझे मिल जाए रे, मैं जागूं तू सो जाए रे, मैं जागूं तू सो जाए।
1: या जाए
2: या
3: ये तो सच है कि भगवान है।
1: क्या बात है।

0: ये जमीन आसमान ना
1: ना से
0: जी
2: ना ना ना ना ना रे ना रे ना ना ना रे ना रे ना सड़े नाले जियोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे ऐश करोगे सड़े नाले सड़े नाले
0: अच्छा हे से गाना है या ना ला से ला से गाना है ला से गाना है
3: ला से गाना है
0: लाल दुपट्टा कब का
3: आगे गाइए किसका उन्हीं का
0: लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मना के तुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो वैसे वक नहीं होगा यह कुछ और होगा
3: टिक वन
0: टिक टिक टू
1: ये गलत है
0: टिक टिक फोर
1: आपने भी टाइम लिया था
0: तो 10 सेकंड के अंदर ही गाया जितने भी गाने गाए ये बच्चा टीम जो है थोड़ा सा चीटिंग कर रहा है ये बच्चा टीम सोच नहीं पा रहा है वाह से क्या होगा कोई बात नहीं वाह से नहीं होगा तो कोई बात नहीं कुछ तो होगा दुनिया में इतने गाने हैं कुछ तो वाह से होगा क्या होगा क्या होगा
1: वादा है वादा मैं हूँ तेरे लिए होगे कभी ना
0: हाँ बीच में से गाया जा रहा है तेरे लिए हाँ। देखा देखा देखा मुझसे चीटिंग नहीं चलेगा बताइए वाह से क्या हो सकता है वादा करो तो भी गाना हो गया है वादा करो ना अब क्या होगा अब तो करे टिक टिक अब बहुत हो गई झिक झिक
1: वाह से
0: क्या हो सकता है तो कोई लिसनर कोई जवाब ना दे दे भाई हो सकता है इनको कोई वाह से याद आ जाए वाह से अगर नहीं कर पाए तो मेरी टीम तैयार रहे वाह के लिए अच्छा तैयार है हमारे पास हमारे गाने के गूगल तैयार हैं आप अपने पत्ते फेंकिए फिर हम बताते हैं टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री टिक टिक फोर टिक टिक फाइव टिक टिक सिक्स टिक टिक सेवन टिक टिक एट टिक टिक नाइन
3: टिक टिक सवा नाइन
0: टिक टिक साढ़े नाइन टिक टिक पौने दस एंड टिक टिक 10 चलो भाई आरजे मनु सुनाते हैं वासे
3: वो तेरे प्यार का गम
0: आहा
3: एक बहाना था सनम
0: वाह वाह
3: अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी
0: आहा
3: कि दिल टूट गया
0: हाय
3: वो तेरे प्यार का गम
0: तो बहुत टूटा है इस तरह से आपका खैर क्या माँ पे आए गम गम माँ से चली हाँ माँ से गई है
1: मुझको नौ लखा दिला
0: दे सैया क्या बात है
1: मुझको नौ लखा दिला दे रे ओ सैया दीवाने
0: वाने ना ना से ना से
3: नसीब में जिसके झोली
0: क्या बात है।

0: 他
1: 他
2: 他他他他थर्मस वाला था और राजस्थान वाला था और एक राजा रानी थी वाला था। क्या था जब कुछ नहीं था तो क्या था? था था और क्या था? था
1: धमके बरस, ओ धमके बरस।
2: क्या बात है?
1: धमके बरस, ओ धमके बरस।
2: धमके बरस साफ इन्होंने बरसा दिया है। अब सासे देखना है क्या हो सकता है।
3: साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है।
2: क्या बात है,

0: क्या बात है।
1: मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
0: हाँ वाह।
2: अच्छा इसी बीच कोई हमारे श्रोता है जो भाई बात करना चाहते हैं।
0: अरे है? क्या बात है, प्लीज कराइए बात।
2: हेलो
3: मनुजन नमस्ते।
2: जी नमस्कार,
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ। कोई आंसर आप हमको भी दे दीजिए तो हम भी थोड़ा गुनगुना देंगे।
2: क्या बात है, बिल्कुल आप चले आइए रेडियो।
0: नहीं कोई बात है, अभी आपने क्या छोड़ा शानवी के इस गाने पे? हाँ पे मुमताज जी, हाँ से गाना सुना दी हमारी टीम की तरफ से आप।
3: जी सर
2: जी,
0: हाँ से कोई गाना या अपना कोई फेवरेट गाना सुना दीजिए आप, जो भी आपको पसंद हो।
3: कोई आंसर दे दीजिए सर, हम यहीं से सुना देते हैं।
2: नहीं नहीं, आप अपना गाना गाइए, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि हम लोगों ने चीटिंग की।
0: हाँ।
2: इसलिए आप हाँ से मत सुनाइए, किसी और से सुनाइए।
0: हाँ।
3: क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। बाहों में भर के हम उनको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। जी सर।
2: क्या बहुत शुक्रिया मुमताज भाई,
4: अब ये हाल है तो फिर
2: हौसला अफजाई के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखकर अच्छा लगा कि हम लोगों को गाते देखकर इनके अंदर का गायक जागा,
0: है ना। क्या बात है,
3: अदनान सर भी गा रहे थे और आप भी गा रहे थे तो थोड़ा हमने भी मेरा हौसला बढ़ा तो हमने कहा थोड़ा हम भी गुनगुना
0: दे। अरे आपने थोड़ा क्या, आपने चटाई की जगह दिल बिछा दिया,
2: दिल बिछा कर रखिए, हम और अदनान सर एकदम अभी पहुंच रहे हैं।
3: जी, आपका बिल्कुल स्वागत है।
0: क्या बात है,
2: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया आपका।
3: आ रहे हैं अभी गुड्डू में चौराहे?
2: जी आ रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर आ रहे हैं, आप दिल बिछा के रखिए।
3: आइए फिर कॉल करिए, फिर कुछ अपना जो कुछ हो सकेगा अपना हम।
2: जी बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे, फिलहाल खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज सर।
0: जी जी बिल्कुल।
2: जी हाँ, तो हाँ से गाना है भाई हमारी टीम को। अंजनी सर आप गाने वाले हैं हाँ से? चलिए कुछ वो आते हैं।
0: मुझे लगता है कि अब विजेता का नाम घोषित करना चाहिए क्योंकि वक्त हो गया है।
2: हाँ।
0: और वैसे क्या लगता है अंजनी सर, आपको कौन है विजेता आज का?
4: अरे ये बच्चे ये बहुत अच्छा गाते हैं, आज तो पहली बार हमने सुना और इनमें जो एक खुशी है इस बात की कि ये आज के स्पेशल डे में अपने को यहाँ पर अब खुद आए हैं ये लोग, और इतने प्यारे बच्चे हैं, बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट टाइम फिर देखो कब मिलना होता है।
0: सही बात है। तो मैं मेरे तरफ से रीज़न ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने धड़ाधड़ गाने शुरू किए थे, मतलब लिटरली अगर आप या अंजनी सर नहीं होते तो हम तो बहुत पहले ढेर हो गए थे। तो ये माना जाएगा कि ये बच्चे ही रियल में विनर हैं। सो जोरदार तालियां, बहुत अच्छा, वेल प्लेड, बहुत प्यारा आप लोगों ने गाया और बहुत शार्प हैं आप लोग। अच्छी बात ये कि आपको पुराने गाने याद है, वो भी इतने छोटे बच्चों को, ये सबसे रेयरेस्ट चीज़ है जो हमने आप लोगों में देखा। सो ऑफ कोर्स आप विनर्स हैं, कांग्रेचुलेशंस टू आप सभी लोगों को,
2: शुभकामनाएं। और अगली बार से आइएगा तो तैयारी करके आइएगा, बहुत बढ़िया।
0: चलिए अब जाने से पहले तीनों लोग मिल करके हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते गा के ये दो लाइन, और फिर इस प्रोग्राम को हम आगाज तो हो गया था अब इसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं।
4: सुना, सुना।

0: देते हैं। क्या बात है। तो भाई फिर से मिलेंगे चलते चलते। और आज तीन दिन हम लोगों ने तीन बहुत महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किया, चाहे योग दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक का दिन हो या फिर हो फादर्स डे। एंड कैसा लगा आज का प्रोग्राम ये हमको ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल अब चलने वाले हैं तो हमको अब इजाज़त दे दीजिए क्योंकि भाई वक्त ने इशारा कर दिया। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी चैट बॉक्स पर आए हैं और जो फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग रेडियो गार्डन पर इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब चाहेंगे आपसे विदा। और ऑफ कोर्स ऊपर वाले ने चाहा तो आरजे मनु बताने वाले हैं क्या होने वाला है।
1: जी हाँ, अगर आसमान वाले ने चाहा तो फिर अगले रविवार को पुनः मिलेंगे इसी समय ठीक 1 बजे आप सभी के साथ। तब तक सुनते रहिए और रेडियो का नस्ली 89.6 FM,
2: ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाला स्टूडियो में लेकर के आपके आफ्टरनून का स्पेशल वाला प्रोग्राम जो आता है हफ्ते में सिर्फ एक दिन, लेकिन जिस दिन भी आता है अपनी कड़क बीट के साथ आता है, अपने गानों के साथ आता है, महफिल सजाने आता है और आप उसमें इंजॉय करते हैं आपकी अपनी फेवरेट आरजीती के साथ। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और भाई इस धड़कन पे ना आज मुझे किसी का दिल धड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं उस दौर के सबसे चहीते सुपरस्टार। उस दौर के नहीं, आज भी है भैया, हम आज ही बता दें, बहुत ज्यादा चहीते हैं लोग, आज भी उनको इतना ही प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि लोग उन्हें प्यार से बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह ये कहा करते हैं। अब आपने समझ लिया होगा आई थिंक कि बॉलीवुड का बादशाह बोले तो किंग, किंग इज क्लिंग कौन है। और अगर आप समझ गए हैं तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि एज ऑफ 20 में आज उसी किंग के कुछ सुपर दुपर हिट सॉन्ग आपकी लिए लेकर आए हैं मैं, यानी कि उन्नति, आपके अपने वाले शो इन द टॉप 20 में। और बॉलीवुड की बहुत सारी न्यूज, उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो आपके दिल को धड़का देंगी, आपके पैरों को रुकने का मौका नहीं मिलने वाला है। एक से बढ़कर एक गाने जो भाई हमारे सिंगर्स की आवाज में है और फिल्माए गए हैं उनके ऊपर। तो आप बताइए कि आपने गैस कर लिया किसकी प्लेलिस्ट है। अगर गैस कर लिया है तो मुबारक हो, और अगर नहीं गैस किया है तो आज पहले गाने से ही आप गैस कर लोगे। आपको पता चल जाएगा जो हमारा पहला गाना है वो काफी गुस्से में लिखा गया सॉन्ग है। जी हाँ, इस गाने को, वैसे तो कई गाने होते हैं जो मोहब्बत में लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी चाहत के साथ लिखा जाता है, बड़े इत्मीनान से लिखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा गाना है जिसे बड़े गुस्से में लिखा गया था। लिखने वाले ने भी कहा था, नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, उल्टा सीधा लिखूंगा, और गाना हिट हो गया। कौन सा गाना है बताते हैं, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 20। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो गैरासली 9.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: तुझे देखा तो ये जाना सनम, इतना खूबसूरत गाना, हमारा सॉन्ग नंबर 20 कुमार सानू लता जी की आवाज में। और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे सीधे वही याद आता है, सरसों के खेत, उसमें खड़ी सिमरन और गालों पे डिम्पल लेकर शाहरुख खान, और मजा आ जाता भाई। मतलब इतने रोमांटिक फिल्में दिए जाते थे उस वक्त, ना एप्स का जमाना, ना बॉडी शॉडी, ना बाइसेप, ना ट्राइसेप, कुछ नहीं, सिर्फ रोमांस, फुल ऑन रोमांस, सॉफ्ट एरा बॉय, वो बिखरे हुए बाल, वो राज का अंदाज, और ऑफ कोर्स हमारे शाहरुख खान। फिलहाल इस गाने को हमारे एक लिसनर ने गैस भी कर लिया था, उनका नाम है मुमताज अंसारी जी, कॉल करके बता रहे थे ये गाना है तुझे देखा तो यूं जाना सनम दिलवाले दुल्हनिया का फिल्म, और उन्होंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी। क्या बात है भाई, आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है बॉस। और हम आपको बता दें भाई, अगले गाने की तरफ चलने से पहले आइए बाबा कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं। और वो बात ये है कि अगला गाना है उस फिल्म का जिस फिल्म में शाहरुख खान लगे तो बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा, उनके बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लुक, उनकी आंखों पर वो चश्मा, उनके बिखरे हुए बाल और उनका वाइट कलर का सूट सबको अपना दीवाना बना चुका था, लेकिन उनकी वॉक उसमें बहुत कम थी, यानी कि चलना फिरना उनका बहुत कम था। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई उस फिल्म के दौरान उनके हुआ था घुटने का ऑपरेशन, जिसकी वजह से चलने फिरने में वो ज़्यादा ठीक नहीं थे। यही कारण था कि फिल्म में लगातार वो एक ही जगह पर खड़े होकर उस पूरे फिल्म के डायलॉग्स को डिलीवर कर रहे थे। नहीं, हमारे शाहरुख खान कहाँ रेलवे ट्रैक को भागते भागते भागते भागते पकड़ने वाले, मतलब रेलवे ट्रैक पे भागते भागते ट्रेन को पकड़ने वाले, एक फिल्म के अंदर सिर्फ खड़े होकर बात कर रहे थे, डायलॉग्स पे डायलॉग्स दे रहे थे, और उनके एक्सप्रेशन इतने वाओ थे, इतने वाओ थे कि ये फिल्म आज भी लोगों को पसंद है और इसके गाने तो आज भी सुने जाते हैं, स्पेशली हमारे पड़ोसी देश में जबको ज़्यादा ही चलते हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शाहरुख खान के फ़ैन हैं। एक ऐसा एक्टर जिसके फैन सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जिसके पोजेस को हर कोई कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा है, इवन कोरिया का सबसे बड़ा बैंड जिसको BTS बैंड भी कहते हैं, वो भी शाहरुख खान के वो दोनों हाथ फैलाकर, दोनों बाहें खोलकर जो पोज मारा जाता है वो उन्होंने भी मार चुके हैं, और हर कोई उनके पोज को कॉपी कर रहा है। भाई जहां दुबई में इज्जत है, वहीं कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो उनके लिए चांद पर ज़मीन ले रहे हैं। तो आप उनकी फैंस की गिनती समझ रहे हैं और उनके फैंस से उनकी मोहब्बत को समझ जाइए, और इसीलिए उन्हें हम बादशाह कहते हैं। बताते हैं उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें, तब तक अगर आपने गेस कर लिया कि वो कौन सी फिल्म है हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं कर पाए हैं तो आई थिंक इस गाने से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस फिल्म की बात हम कर रहे थे। सुनते रहिए इंडिया टॉप 20 अपनी आर जोंदी के साथ, आपके अपने FM रेडियो 99.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: दार
1: उनका। क्या बात है भाई, ये वो गाना है ना जो सुनने के बाद पैर थिरकना बंद नहीं करते, ऐसा होता है ना आपके साथ? ऑफ कोर्स होता होगा। और हम आपको बता दें, इस बेहतरीन से, इस लाजवाब से सुपर सुपर हिट गाने को बनाने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, न जाने कितने ही सिंगर्स की आवाज लगी है। पहली आवाज जो आपने सुनी वो थी लता जी की, उदित नारायण की, उसके बाद उद्भव की, मनोहर शेट्टी की, ईशान की, श्वेता की, सुनाली की और प्रिधा की। भाई इतने सारे लोगों ने मिलकर, प्लस उसमें जो डायलॉग डाले हैं वो डाले हैं हमारे पाजी शाहरुख खान ने। इतने सारे लोगों की बेहतरीन आवाज एक गाने के अंदर आपने एंजॉय किया है। और संगीत है जतिन ललित का, बोलते हैं आनंद बख्शी के, मोहब्बतें फिल्म जिसने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। कई लोग अब जाकर अमिताभ बच्चन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे हैं कि सही बात कह रहे हैं अमिताभ बच्चन भाई साहब की, कॉलेज में तो नहीं करना चाहिए ये सब, कॉलेज के बाहर करो, पहले करियर सेट करो। वहीं पर एक मैं इंसान थी जो अमिताभ बच्चन के इस रोल को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा सा डरने लगे थे कि ये थोड़े बड़े खूसट टाइप के हैं, बट नहीं, किसी की भी फिल्म से उसके कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए। ये बात हमें तब समझ में आई जब हम बड़े हो गए और हमने केबीसी देखना शुरू किया, और उसके बाद मेरी मम्मी ने केबीसी घर पर ही लगा दिया और कहा कि ये देखो वो देखो, 5 साल के बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं और तुमसे नहीं हुआ, तुमसे एक सवाल हल नहीं हुआ, तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी फिल्म को देखने के बाद किसी विलन से आपको डर लगने लगा हो, आपको खौफ बैठ चुका हो? ये तो शाहरुख खान मुझे बड़े पसंद है, लेकिन जब वो किसी ऐसी फिल्म के अंदर आते थे ना जहाँ पे वो निगेटिव रोल कर रहे होते थे और हम सोचते थे शाहरुख खान हमारे बचपन का हीरो अचानक से विलेन कैसे बन गया, और विलेन बन गया तो क्यों बन गया, किसने बनाया इसको विलेन, इतना क्यूट सा मुंडा है, इतना प्यारा सा दिखता है, क्यों इसको विलेन बना दिया। और उसके बाद जब उनकी एंट्री हमने देखी इंडिया वाले, इंडिया वालों में, और उनका गाना निकला हैप्पी न्यू ईयर से कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, वो गाना मेरा पसंदीदा यूं चुटकियों में हो गया। फिलहाल हमारे साथ सविता दुबे जी जुड़ गई हैं जो लिख रही हैं, आज घर पर हूँ इसलिए चैट रूम में आई हूँ। जी आपका स्वागत करते हैं, और कैसी हैं आप? आई थिंक आज आप घर पर हैं तो रेस्ट कर रही होंगी, या फिर घर पर भी काम चल रहा है। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले बीट की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ। और अगला सॉन्ग हम आपके लिए लेकर आए हैं पठान फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अब आप गेस कीजिए कौन सा गाना होने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: अंजी तनी पार्टनर, क्या आपको डांस वांस आता है? क्योंकि हमने इस गाने पर डांस करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि हमको डांस नहीं आता है। हालांकि कोशिश करने में क्या ही जाता है, वो अलग बात है कि कोशिश कर रहे थे तो जिगजैग बनकर हम ही फ्लोर पर आ गए, फ्लोर हमारे ऊपर आ गया, तो वो अलग चीज़ है। बट मज़ा काफ़ी आया था। इस गाने को जब भी सुनते हैं हमारे हाथ पैर अपने आप चलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई 440 वोल्ट का करंट मेरी बॉडी के अंदर छोड़ रहा है। और आप सुन रहे हैं टॉप 20 आपकी अपने आप में रेडियो 99.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर आपका आफ्टरनून का स्पेशल शो इंडिया टॉप 20 अपनी आरजे अनुदी के साथ। चैट बॉक्स में अगर देखा जाए तो भाई हमारे साथ लवली सिंह जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं रुतिची गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। टॉप 20 में अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया सभी सुनने और सुनाने वालों को। शुभ दोपहरिया, कैसे हैं आप? सविता जी लिख रही हैं आराम से रेडियो सुन रही हूं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते रहिए क्योंकि आज हम आपके बहुत ज्यादा पसंदीदा वाले गाने प्ले करने जा रहे हैं। अगर आपको शाहरुख खान पसंद है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, फिलहाल अगर नहीं भी पसंद है तो भी मजा आएगा क्योंकि सोनू निगम की आवाज होने वाली है अगले गाने की तरफ। और अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं परदेस फिल्म से। ये वो गाना है जहां पर शाहरुख खान के पास टाइम नहीं था कि वो रुक कर, यानी कि शूटिंग करने के लिए किसी शहर में रुक जाए, उन्हें कहीं जाना था और ये गाना जाते जाते शूट किया गया है। सोचिए वो कौन सा गाना हो सकता है। और इसके स्टार्टिंग में ही आपको वो गाना दिख भी जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही धूल धूल उड़ती हुई नजर आ जाती है। और मेरा भी एक सपना था जब मैं शाहरुख खान को ऐसी कारों में चलते देखती थी ना, कि धूल भी चारों तरफ से उड़ रही है और कार ऊपर से खुली हुई है, मैं सोचती थी कितना मजा आता होगा। बाद में समझ में आया धूल सब मुंह पे ही आती है, इसलिए बिल्कुल मजा नहीं आता है, बालों में चली जाती है। शाहरुख खान को उसमें भी देखने में बड़ा मजा आता है। फिलहाल आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है शाहरुख खान की, मुझे जरूर से बताइएगा। और कौन सी फिल्म आपने सबसे ज्यादा बार देखी है? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला गाना गाने से ही पहले, यानी कि अगला गाना आने से ही पहले कुछ तो हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि हमारा ओके हम गाना सुनाने जा रहे थे आपको, ये वाला बच गया कुछ और, क्योंकि भाई दिल कहता है दिल मांगे मोर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: निगम साहब की आवाज ने शाहरुख खान के इस गाने में जो चार चांद लगाए हैं ना, ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है जैसे कि शाहरुख खान खुद ही इस गाने को गुनगुना रहे हो, गा रहे हैं। और इसके लिरिक्स इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं कि हर एक बंदा इससे रिलेट कर रहा होता है। इवन जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, स्पेशली ये उनका पसंदीदा गाना है। और कुछ लोग हैं जो अपनी हालातों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो इस गाने को पकड़ के बैठ गए हैं कि छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ तोड़ दे और वो कहता है कि जंजीर है, नहीं तोड़ी जा रही, ये रिश्ता नहीं तोड़ा जा रहा उसके इन गानों से। और इस जबरदस्त प्लेलिस्ट में तब जरूर सुनती हूँ जब मैं किसी रोड ट्रिप पे निकली होती हूँ। मुझे पता है कि अब मैं जाऊंगी कार के अंदर बैठूंगी, मुझे मोशन सिकनेस होगा, मेरा दिमाग खराब होगा, लेकिन जैसे ही SRK की और सूर्य निगम का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है ना, मेरा कहाँ मोशन सिकनेस, किसको चक्कर आ रहा, कौन सो रहा, कुछ याद नहीं आता। सिर्फ एक चीज याद आती है और वो होता है म्यूजिक पर वाइब करना। एंड हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा SRK की फिल्म कौन सी है, तो अनिल जी ने लिखा है DDLJ, बहुत ही रोमांटिक मूवी था, मैं इसे लगभग 15 बार देख चुका हूँ। क्या बात है। और आपको DDLJ के बारे में चले थोड़ी सी बातें बता देते हैं। लिसनर्स ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह है बॉलीवुड का अपना वाला शो और इसमें बॉलीवुड के किस्से ना हो, कहानियां ना हो तो भाई ये अधूरा सा लगता है तुझ। शाहरुख खान शुरुआत में जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ के राज का किरदार उनके पास आया था, तब उसको बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उस समय वो डर और बाजीगर जैसी फिल्मों में लगे हुए थे। उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि वो एक लवर बॉय की तरह नजर आए, वो चाहते थे कि वो एक्शन हीरो की तरह नजर आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक विलन का किरदार निभा रहे थे अपनी दूसरी फिल्मों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बनना पड़ेगा मुझे लवर बॉय, और मुझे बिल्कुल नहीं बनना, मुझे खुद को एक्शन हीरो ही दिखाना है। बट क्योंकि आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा का शाहरुख खान के साथ डर के समय बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका था, उस रिश्ते को देखते हुए और बार बार शाहरुख खान को ये बात समझाई गई कि भरोसा रखो, दिलासा रखो, हम तुमको भरोसा दिला रहे हैं ना, मान जाओ यार, मान जाओ। और उन्होंने उस रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए DDLJ के लिए हाँ भरी दी, अदरवाइज वो इस फिल्म को करने वाले ही नहीं थे, वो इस फिल्म को मना करने वाले थे। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे और उस दौर में एक खूबसूरत लोकेशन ढूंढना, गाने ढूंढना और वो चॉकलेट बॉय, वो लवर बॉय, वो सॉफ्ट बॉय वाला एरा वो नहीं करना चाहते थे। बट क्योंकि डायरेक्टर के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे बन चुके थे और दोस्ती हो चुकी थी, तो उस दोस्ती की इज्जत रखते हुए उन्होंने इस फिल्म को हाँ बोला था बिना स्क्रिप्ट पढ़े। और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को जब इसमें किरदार अपना निभाया तो इस कदर निभाया कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। अब आप बताइए, ये फिल्म शाहरुख खान अगर नहीं करते तो कौन सा और एक्टर करता और शाहरुख खान की तरह इस फिल्म के साथ इंसाफ कर सकता? किस एक्टर के ऊपर राज का रोल थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता या फिर शाहरुख खान की तरह अच्छा लगता? ऐसा कौन सा एक्टर है जो राज के किरदार में आपको पसंद आता, बताइएगा जरूर चैट बॉक्स के अंदर। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि अगला गाना वो है जो आपको सिखाता है कि हौले हौले ही हवा लगती है, हौले हौले दवा लगती है, किसी चीज में जल्दबाजी ना करें क्योंकि जो जल्दबाजी करता है उसको फिर कुछ भी नहीं लगती क्योंकि दुआ भी हौले हौले ही लगती है। और इसीलिए इश्क हो, मोहब्बत हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो, प्यार हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि चांद हो, वो भी आसमान में हौले हौले ही नजर आता है। आई होप आपने गाने को डिसाइड कर लिया होगा, गाने को गेस भी कर लिया होगा और चैट बॉक्स में आप अपनी पसंद जरूर बताएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर। आप सुन रहे हैं टॉप 20 की सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट, आपके अपने FM रेडियो 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: हले हले हो जाएगा प्यार, बेशक हो जाएगा। और ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं द टॉप 20 अपनी आरजी उन्नति के साथ, और ये वो फिल्म है जिस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट गए हैं। अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह की आवाज में जयदीप सहानी के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक। सलीम सुलेमान जिन्होंने रब ने बना दी जोड़ी, इस टाइटल को, इस गाने की इंस्पिरेशन, इस गाने के म्यूजिक की इंस्पिरेशन ली थी गोल्डन टेम्पल से। वहीं पर ये जो फिल्म का टाइटल है वो इंस्पायर्ड हुआ था अमिताभ बच्चन की सुहाग फिल्म से, 1979 में रिलीज की गई फिल्म थी जिसमें गाना था तेरी रब ने बना दी जोड़ी, उससे प्रेरित था ये टाइटल फिल्म का नेम। और इसी दौरान हम आपको बता दें भाई, तानी पार्टनर के लिए, यानी कि आपने जो तानी की भूमिका देखी थी, पहले डायरेक्टर और पहले निर्देशक ढूंढ रहे थे किसी और लड़की को, बट जब उन्हें कोई और लड़की नहीं मिली तब उनकी तलाश जाकर रुकी अनुष्का शर्मा के पास। और तानी पार्टनर यानी कि आपकी अनुष्का शर्मा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी, और 19 साल में उन्होंने इस किरदार को निभाया था जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। सबसे पॉपुलर सॉन्ग राज कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया था। फिल्म का लोकप्रिय गाना फिर मिलेंगे चलते चलते दिग्गज अभिनेताओं, जिसमें राज कपूर, शमी कपूर, ऋषि कपूर, देवानंद और राजेश खन्ना के ट्रिब्यूट था। हर गाने में जो उनका अंतरा मौजूद था वो उन्हीं के फिल्मों से उठाया गया था। आपने अंदाज देखा होगा शाहरुख खान का, उसमें अलग अलग जो हीरोइंस थी हर एक एरा से एक अंतरा लिया गया था। बहुत ही खूबसूरत गाना था, लोगों ने इसको भरपूर एंजॉय किया था। और हम आपको बता दें भाई, ये गाना जो आप एंजॉय कर रहे थे हौले हौले हो जाएगा प्यार, इसमें जो डांस स्टेप थे वो शाहरुख खान ने खुद से इम्प्रोवाइज किए थे, उन्हें किसी कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाया था, वो खुद से इस डांस स्टेप को ढूंढ रहे थे और इस गाने की शूटिंग चल रही थी। आप सोचिए एक फिल्म जो हम देखते हैं जो सिर्फ 3 या 2 घंटे की होती है और उसमें कितनी सारी बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी अक्सर अलग होती है जो आपको सामने दिखती है। अब आप बताइए आपका इनमें से फेवरेट वाला फैक्ट कौन सा था। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चैट बॉक्स में हमारे साथ कौन जुड़ गया है। लवली सिंह जी लिख रहे हैं कितना शिद्दत से गाया हुआ गाना है, बिल्कुल बेशक सही कहा आपने। अनिल जी लिख रहे हैं फिल्म ओम शांति ओम, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे बात तो एकदम सही है, और सोचते भी हैं कि शाहरुख खान का ये डायलॉग आई थिंक पत्थरों पर लिख दिया गया है, क्योंकि हर दूसरा इंसान इस डायलॉग को कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है। इट्स कुमार जी लिख रहे हैं हे गोंडा हे कैसे हैं आप, और कार्तिक आर्यन उन्हें राज के किरदार में पसंद आते। ओके ओके ओके। एंड अनिल जी लिख रहे हैं DDLJ यदि सैफ अली खान भी अच्छा कर सकते थे मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो भैया आपको सैफ अली खान लगते हैं और कार्तिक आर्यन लगते हैं हमारे इट्स कुमार जी को। आज्ञाकारी पुत्र तो दो ही थे, एक राम और एक श्रवण कुमार। ओके, एंड इसके बाद आया है फिल्म जब तक है जान, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। ये अच्छा लगता है आशुति जी, क्या बात है। वैसे आपने बहुत बखूबी लिखा भी है, थैंक यू सो मच। नीना जी लिख रही हैं जी आप करती रहो तरक्की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस दुआ के लिए। एंड दीपांशी तिवारी हमारे साथ जुड़ गई है, लिख रही गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड नीना जी आपका भी स्वागत करते हैं हमें द टॉप 20 में। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगले गाने में शाहरुख खान के साथ मौजूद है ऐश्वर्या राय। ये वो फिल्म है जिसको देखने के बाद आपको नाना पाटेकर से डर लगने लगा होगा, क्योंकि उनका रोल इतना धांसू था इसमें। एक तो उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है, इतनी नेचुरल होती है कि वो अंदर तक फील होती, लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और ऊपर से करिश्मा का करिश्मा था इस फिल्म के अंदर, और एक ऐसी फिल्म जिसने पता नहीं कितने लोगों के दिलों में दहशत बैठाई, जिसमें शाहरुख खान को भैया हमको कोई अस्पताल ले चलो इस डायलॉग को न जाने कितने लोगों ने आंखों में आंसू भरकर देखा है। अगर आपने इस फिल्म को गेस कर लिया है तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और एंजॉय करते रहिए आपका बेहद ही पसंदीदा शो के अंदर सॉन्ग नंबर 15 इश्क कमीना। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग नंबर 15।

0: हां जी, आप सुन रहे हैं ओम शांति ओम का वो बेहतरीन गाना जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 31 सुपरस्टार्स नजर आए थे। आवाज थी शान की, उदित नारायण की, श्रेया की, सुनिधि चौहान की, राहुल सक्सेना की। बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, विशाल और शेखर का म्यूजिक। और इस गाने में जो आर्टिस्ट नजर आए थे अगर उनकी बात करें तो तुषार कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, जूही चावला, अमृता, विद्या बालन, लारा दत्ता, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, काजोल, रेखा, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, श्रेयस, आफ्ताब, सैफ अली खान, सलमान खान और इतने सारे एक्टर्स एक गाने के अंदर नजर आना बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी भाई इन सबको एक साथ लेकर आने पर। तो भाई ये वो फिल्म थी जिसके अंदर आपको शाहरुख खान का डबल रोल देखने को मिला था। और अगर मैं कहूँ तो ये एक आइकॉनिक फिल्म थी। दीपिका पादुकोण की डबिंग यहीं से हुई थी, उन्होंने डेब्यू यहाँ से ही किया था। और बिल्कुल बता दूँ मैं आपको कि दीपिका पादुकोण की आवाज़ आपको इस फिल्म में नज़र नहीं आती है। इस फिल्म में जो आवाज़ आपको दीपिका पादुकोण के ऊपर नज़र आती है वो किसी और एक्ट्रेस की है या फिर कहें तो किसी और वॉइस एक्टर की है, क्योंकि दीपिका पादुकोण की आवाज़ उस वक्त सूट नहीं कर रही थी जब वो शांति प्रिय का रोल कर रही थी। लेकिन उनकी खूबसूरती, उनके अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया, उनकी ये सुपर डुपर हिट फिल्म गई और इसके बाद शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण की जोड़ी हिट हो गई। तो भाई इस फिल्म को मैंने न जाने कितनी दफा देखा होगा और जितनी दफा भी देखती हूँ ना, हर बार वही ट्विस्ट, वही क्लाइमेक्स, वही फन, वही वाइब, वही सस्पेंस, सब कुछ वही रहता है। बस एक चीज बदलती है, वो ये है गानों का इंतजार कि कब मेरा पसंदीदा गाना आएगा। और आज भी जब दीपिका पादुकोण को मैं देखती हूँ उस आग वाले महल के अंदर तो दिल टूट जाता है। लास्ट में जब दीपिका पादुकोण का भूत सामने आता है, वो जो ट्विस्ट था ना, भाई ऐसी फिल्म में क्या लगता है दोबारा से बननी चाहिए ना आपको? मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि लोगों को ऐसी दोबारा से फिल्में बनानी चाहिए। अब हमने बहुत रियलिटी देख ली, अब रियलिटी से हटकर थोड़ा सा फिक्शनल फिल्म बननी चाहिए और थोड़ी सी ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसमें क्लाइमैक्स। और ये एक वो फिल्म है जिसका पूरा फिल्म का जो ब्यौरा होता है वो उसके गाने के अंदर नजर आ जाता है, अगर आपने गाना कोई भी ध्यान से सुना होगा तो। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ, अगले बीट की तरफ। एक घंटा हो चुका है और अभी तक हमने सुने हैं सिर्फ और सिर्फ 6 गाने और आपके बाकी के गाने इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 13 से कुछ कुछ होता है फिल्म से, कोई मिल गया मेरा दिल गया। इसके बाद आते हैं आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेज को पढ़ने। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasani 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 13.

कोई मिल गया, मिल ही गया। आप सुन रहे हैं आपका सॉन्ग नंबर 13 कोई मिल गया, और इसी के साथ चैट बॉक्स में दीपांशु तिवारी जी के मैसेजेस हैं और वो कर रही हैं डांस। क्या बात है भाई, ऐसी डांस बनाए रखिए। एंड नीना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनिल जी लिख रहे हैं फिल्म मोहब्बत में एक डायलॉग है, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सिर्फ समझौता करे। उस समय मेरे लिए सीख जैसा लगा था, और आई थिंक ये हर उस इंसान के लिए सीख ही है जिसने मोहब्बत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है, या फिर जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना। अगर आपको कोई बदल कर मोहब्बत करता है वो मोहब्बत नहीं, समझौता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जरूर बदलते हो उस इंसान के लिए जिससे आप मोहब्बत करते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि वो आपकी वजह से कभी भी उदास हो, कभी भी हर्ट हो, इसलिए आप अपनी आदतों को जरूर बदलते हो, और मोहब्बत हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। शाहरुख खान ने जो भी रोल करते हैं उसके लिए वे बाजीगर है, चाहे वन रोल हो या डबल रोल। ये बात लिखी है लवली सिंह जी ने, और जो कि बहुत प्यारी बात लिखी है। और ये बात सच है कि शाहरुख खान की एक्टिंग एकदम नेचुरल होती है, इतनी कि अगर वो डबल रोल भी करते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एंजॉय इट। एंड सविता जी के मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच सविता जी, ओम शांति ओम। फिल्म 2008 में आई थी, तब हम 4 साल के थे, मेरी पहली फिल्म जो याद है दीपिका की डेब्यू फिल्म थी। और ये लाइन लिखी है इट्स कुमार जी ने, I was thinking कि इट्स कुमार जी 4 साल के बैठकर ओम शांति ओम देखते हुए

0: लग रहे होंगे। एंड इसके बाद ओके आप ही के मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आर्जुनती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने शो एंटर टॉप 20 में। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, सॉन्ग नंबर 12। सॉन्ग नंबर 12 लेकर आए हैं डर फिल्म से, एक ऐसी फिल्म जहां पर हीरो से ज्यादा विलन को प्यार दिया गया। गाना है जादू तेरी नजर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 99.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 12.

0: अंजी, तो आप सुन रहे हैं आपका सॉन्ग नंबर 11 इश्क शवा, और आरजे अनहोनी, आज सब ओल्ड ओल्ड सॉन्ग ही हैं क्या? कुछ न्यू मिक्स का भी तड़का डालिए, बेशक आपको नए गाने भी मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भैया, जब एसआरके की बात आती है तो 90s के गाने थोड़े ज्यादा हिट हो जाते हैं और इसीलिए आपको 90s वाले ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। उन्नति मैम, ये सॉन्ग आप पर सूट करता है 100%। थैंक यू सो मच दीपांशी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज एक ऐसा गाना ना बजा जो हमको दे न चाह, शुक्रिया गॉड, बाल बाल बजा। वैसे बजा तो था, बट आप लेट आए थे इसीलिए आप डांस नहीं कर पाए। लाल, आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आरजे अनहोनी जी। बेशक आपकी बात समझ में आ गई। किरण, डर मूवी के इस डायलॉग में क्लास में किरण नाम की लड़की थी जिसे हम अक्सर डराया करते थे, आज यादें ताजा हो गई। क्या बात है, पहले किरण बोले में मुझे बड़ा टाइम लगा था लेकिन मजा बहुत आता था। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और करते हैं 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, क्योंकि आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए। इसके बाद मिलते हैं अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैलेक्सी 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, आप सुन रहे हैं छैया छैया। ये वो गाना है जो हमारे पहले वाले फोन में बजता था। हमको जब पिंक कलर का फोन दिलाया गया था ना, तो उसमें ये गाना बहुत बजता था और हम इस गाने को सुन के छैया छैया करा करते थे। भाई कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देते हैं, और ये सॉन्ग भी उनमें से ही है। क्या फिलहाल के लिए आप इन्जॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20। और आइए चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। फिलहाल अमल मलिक की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी बात कही जा चुकी है, और उन्होंने कहा है कि भाई सेल्फ रिजेक्टिंग 12 सॉन्ग, उन्होंने 12 गानों को रिजेक्ट कर दिया है, फाइनलाइज किया गया है उन्हें आवारापन 2 के लिए। अब उनका कहना है कि भैया चाहो तो मुझसे 60 फिल्में ले जाओ, यानी कि 60 फिल्म्स आप मुझसे ले सकते हो, हर एक फिल्म का गाना मुझसे ले सकते हो, मैं सबका जवाब एक फिल्म के अंदर देने जा रहा हूँ, जान लगा दूंगा अपनी, और आवारापन 2 में जो अपनी आवाज़ दूंगा वो टॉप नॉच होने वाली है। ये बात अमल मलिक ने कही है फिलहाल जब उन्हें आवारापन 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप सुन रहे हैं टॉप 20, आपकी अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम, यह गोंदा शहर की धड़कन पर। वक्त है अगले गाने की तरफ चलने का, और अगला सॉन्ग है आपके लिए सॉन्ग नंबर 8 फैन फिल्म से छबरा। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 8

0: मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, शाहरुख खान का फैन खतरनाक भी हो जाता है लास्ट में फिलहाल के लिए। भाई आइए बता देते हैं आपको कॉकटेल 2 से क्या सामने आ रहा है। कॉकटेल 2 की कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 17.15 करोड़ रुपए से शुरुआत की गई थी और टोटल 31 करोड़, यानी कि 31 करोड़ की कमाई अभी तक कॉकटेल 2 कर चुका है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कॉकटेल 2 में लोगों ने कीर्ति को कंपेयर करना शुरू कर दिया है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर वेरोनिका से और कहा है कि कॉकटेल कितनी दफा भी क्यों ना बन जाए लेकिन वेरोनिका का जो कैरेक्टर है वो दीपिका पादुकोण के अलावा कोई बेहतर नहीं कर सकता है। आप बताइए कि आपने कॉकटेल 2 देखी है या अभी तक आप कॉकटेल 1 पर ही हैं और वही आपकी पसंदीदा है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इस फिल्म को, इस फिल्म के गानों को लेकर के भी काफी बातें सामने आ रही हैं। फैंस की नाराजगी है कि भाई क्यों इसमें डांस स्टेप डाले गए हैं। कोई स्टेप नहीं था पहले, जो था जो मीरा डांस कर रही थी वही डांस हमें पसंद है, बचपन से वही करते आ रहे, अचानक से चेंजेस क्यों आ रहे हैं। गानों को लेकर रिमेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई रिमेक वर्जन पर काफी लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। अब चाहे गाना हो अक्षय कुमार का ऊंचा लंबा कद जिसमें अभी तक कटरीना नजर आ रही थी, अब अचानक से उसमें दिशा पटानी नजर आई है जिसका फैंस को काफी बुरा लगा है। जिनको कटरीना काफी पसंद थी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने हमारा दिल तोड़ दिया साहब। और वहीं पर कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो उसको भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं आप मुझे जरूर से बताइएगा। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। एंजॉय करिए दिल तो पागल है इसे, अरे तेरे ये क्या हुआ। स्टूडियंट
1: रेडियो 99.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

0: और ये वो गाना है जिसको सुनने के बाद आपको मन करता है अपने उन सपनों को पूरा करने का जिन पे शायद आप हार मान रहे हो। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स और ऑफ कोर्स इस गाने को सुनने के बाद करता है ना दिल, जब कुछ पूरा हो जाएगा, जो कर रहा हूँ वो हो जाएगा, तो इस गाने पे ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। इस गाने को मैंने तब सुना था जब मैं अपनी लाइफ में कोई एम सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी और मेरा ख्याल था कि जिस दिन अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएंगे सबसे पहले यही गाना बजा बजा कर सब में डांस दिखाएंगे। हालांकि डांस तो नहीं आता लेकिन गाना ज़रूर सुनाया है मैंने सबको, क्योंकि भाई ज़िंदगी कब बदल जाए कब ना बदले आपको क्या पता। और इसीलिए शाहरुख खान ने अपनी इस फिल्म में एक डायलॉग भी कहा है कि ज़िंदगी या फिर कहें तो किस्मत बड़ी सही चीज़ है, अगर मेहनत की जाए तो पलट ही जाती है। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 5 की तरफ। 0 से लेकर आए हम आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ दिस टाइम, जो उस वक्त उस साल में उस ईयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, इवन उसके बाद भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। इसकी स्पेसिफिक लाइंस, इसके कलर्स, क्रियोग्राफी इतनी खूबसूरत हैं, इतना प्यारा है कि सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। फिलहाल इस गाने में फूल गुलाब के हैं, कमल के नहीं, पर आपके दिल में कमल खिलेंगे गुलाब नहीं। आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं मेरे नाम तू। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 5।

0: जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। कितना खूबसूरत गाना है। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं ये तेरे। ओह माय गॉड, अगर कोई इस तरह से आकर आपके सामने इजहार करे तो आपसे रहा जाएगा। मतलब बॉलीवुड सच में बहुत खूबसूरत गाने देते हैं, लेकिन वो बात अलग है। आपको गाने की सही पसंद तक पहुंचाना मेरा काम हो जाता है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला गाना एक बार फिर से रोमांटिक होने वाला है। चेन्नई एक्सप्रेस से आप सुनने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 4 तितली और सॉन्ग नंबर 3 बन के तेरा जोगी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। स्टे ट्यून।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 4।

0: फिर भी दिल हिंदुस्तानी से आप सुन रहे हैं बनके तेरा जो की, और हमारे पास जो आखिरी मैसेज है वो है अनिल वर्मा जी का, शाहरुख खान को हवा में बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर रोमांटिक पोज इन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया है। TDLJ से इनकी स्थायी पहचान बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वाला पोज हम घर पे भी ट्राई करते हैं। फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दो गाने और सुनाने वाले हैं, सॉन्ग नंबर 2 एंड सॉन्ग नंबर 1। पहला गाना होगा अरिजीत सिंह की आवाज में दिलवाले फिल्म से गेरुआ, और दूसरा है वीर ज़ारा से आपका पसंदीदा गाना दो पल चुका यादों का कारवा। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली मत सुनना मत भूलेगा। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर के साथ आप एंजॉय करें सनी का स्पेशल वाला प्रोग्राम इंडिया टॉप 20। आज की प्लेलिस्ट, आज का शो आपको कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
6: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
5: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
6: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
5: जी।
6: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
5: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
6: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
6: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
6: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
6: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
5: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
6: जी आज दीदी,
5: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
6: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
5: जी।
6: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
5: जी,
6: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
5: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
6: जी दीदी
5: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
6: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
5: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
7: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है क्यों?
7: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
7: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट

0: तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
1: और बाकी?
0: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले 1 घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
0: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, 1 मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
1: जी।
0: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे। KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस NBSU।
1: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी। लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में

0: परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
1: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
1: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
1: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
2: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी आर्ज उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम संडे के स्पेशल हेल्थ वाला शो क्लिनिक ज्ञानश्री का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। और ये खूबसूरत पहल है रेडियो ज्ञानश्री और स्मार्ट NGO की। और आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक और मेहमान, एक और स्पेशल गेस्ट। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनसे उन्हीं के बारे में जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ।
2: आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञानश्री में। प्लीज़ हमारे लिसनर्स को अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं अंजनी कुमार दुबे, मास्टर योग ट्रेनर, आयुष विभाग गोंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2: अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज हमारे साथ ही नए मेहमान कैसे, तो आज हम आपको बता दें कि आज है इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि योगा दिवस है, जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा क्योंकि आपने सुबह उठ के कोई योगा नहीं किया है। वेल, आपने किया है सर?
3: बिल्कुल, आज तो सुबह की शुरुआत ही योग से ही हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। उसमें मुझे नेतृत्व करने का सौसर प्रशासन के द्वारा प्रदान हुआ।
2: क्या बात है। वेल, आइए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से भी पूछ लेते क्या उन्होंने योगा किया आज। हेलो राहुल सर, कैसे हैं आप?
4: हेलो, बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आपके साथ हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे। और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो मुझे लगता है कि जो लोग योग करते हैं, जो लोग बराबर से योग जैसी चीज़ों का पालन करते हैं, वो तो और भी अच्छे होंगे।
2: बेशक, और मुझे लगता है ना योगा हर किसी को करना चाहिए, योगा से ही होगा, ये डायलॉग हम अक्सर सुनते आए हैं।
4: बिल्कुल, योगा से ही होगा और करें योग और रहें निरोग, ऐसा भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे सुनने को मिलता है और मुझे लगता है कि इसे प्रमोट करना भी एक अच्छी बात है।
2: जी, और आज हमारे साथ क्योंकि दो दो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो भैया मेरा तो ख्याल है कि आज योगा पर बात कर लिया जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। वर्कआउट को तो काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन योगा कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। योगा जो कि भारत से ही निकला है, और भारत से ज़्यादा योगा आजकल विदेशों में ज़्यादा हो रहा है। क्या ख्याल है सर आपका?
3: हाँ, ये ठीक है कि भारत से ज़्यादा विदेशों में इसको अपनाया गया है, लेकिन अभी कुछ विगत वर्षों में हमारे भारत सरकार के विशेष प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, और उसके साथ ही साथ वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई, हेल्थ वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, और अलग अलग दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा, कभी हेल्थ सेक्टर के माध्यम से, कभी एजुकेशनल सेक्टर के माध्यम से योग को प्रमोट किया जा रहा है, और योग जन जन तक अब एक मूवमेंट के रूप में, एक रेवोल्यूशन के रूप में अडॉप्ट किया जाने लगा है, और भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक ऐसे संकल्प के साथ ही इस विजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें योग फॉर हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और हम लोग उसके लिए तत्पर रहे और बहुत ही अच्छा अभियान चला।
2: जी, और इसी के साथ अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो लिसनर, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर है 6393316429। आई रिपीट 6393316429 दोनों। आपका स्टूडियो का नंबर जिस पे आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जब तक आपकी कॉल आती है तब तक आपकी आर्जुनति हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चंस कर लेती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी योगा किया नहीं है, सिर्फ योगा के बारे में सुना है या किताबों में पढ़ा है, बट अगर वो आज का शो सुनने के बाद योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेस पहले करनी चाहिए?
3: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और इसी के लिए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया है, जो जनमानस में फैल इसका अभ्यास प्रचारित और प्रसारित किया गया है, आप इसे मोरारजी देसाई नेशनल योग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। खाली पेट ये करना है, आप चाहें तो एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके लें और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें डालें, और सुबह आप सबसे पहले यौगिक सूच व्यायाम से शुरुआत करें। यदि आपके पास अधिक समय है तो उसका और अभ्यास पढ़ाएंगे। कॉमन योग प्रोटोकॉल टोटल 45 मिनट का है, यदि उसमें भी आपके पास समय कम है तो आप जब अपने कार्यस्थल पर हों और उस बीच में जब आपको लंच का समय होता है और एक ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में वाई योगा ब्रेक के नाम से, वाई ब्रेक के नाम से एक कैप्सूल फार्म में योग को डिजाइन किया गया है, जिसमें 5 मिनट में योग के अभ्यास किए जाते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं और प्राणायाम है और ध्यान है।
2: 5 मिनट की एक्सरसाइजेज, जो कि सुनने में भी काफ़ी छोटी लगती है, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसे इतना बर्डन महसूस नहीं होता कि आप 45 मिनट कैसे निकालूंगा, अभी तक तो किया ही नहीं है। 5 मिनट एक छोटा सा टाइम लिमिट है और आप बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं, यानी कि एक म्यूज़िक जो होता है 5 मिनट का म्यूज़िक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ पर हो सकता है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 5 मिनट का जो योगा है, क्या ये शुगर, स्ट्रेस और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर चल रहे हैं इनमें मदद करता है?
3: हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से मदद करता है। जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेस आपको हो जाती हैं, उन स्ट्रेस को रिमूव करने में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो ताड़ासन है, ऊर्ध्वहस्तासन है, ये बहुत कारगर होते हैं। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन्स, सेरोटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है और ये 5 मिनट में ही आपको स्ट्रेस रिमूव करने में कारगर दिखाई पड़ेगा। आप इसे करके देखें।
2: बिल्कुल, यानी कि 5 मिनट का योगा भी आपको बहुत मदद करता है, स्पेशली आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, जो आप हमेशा चेयर पर बैठे रहते हैं, फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, तो उसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी मददगार साबित होता है। फ़िलहाल के लिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल, क्योंकि हमारे पास दो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी योगा के बेनिफिट्स और आपसे हम जानना चाहेंगे एक्सरसाइज के बेनिफिट्स।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमें जो हमारे योग के एक्सपर्ट हैं, हमें मुझे लगता है कि पहले उनसे जानना चाहिए।
2: बिल्कुल, और ये भी जरूर बताइएगा कि योगा और एक्सरसाइज में फर्क क्या है।
3: योग जो है एक संपूर्ण लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा आपका जीवन का वे ऑफ लाइफ जिसको कह सकते हैं, एक जीवन का जीने का तरीका है, जीवन मूल्यों के विकास के लिए कार्य करता है। ये आपके शरीर को तो स्वस्थ करता ही है, मानसिक स्वास्थ्य की भी अभिवृद्धि करता है। जब आप आसन करते हैं तो आपका शारीरिक सौष्ठव विकसित होता है, और जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम, निश्चलम निश्चलम भवेत। जब आपका प्राणवायु आपकी स्थिर होती है तो आपका मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तभी आपका अपने कार्यों में मन लगता है और आपकी स्किल डेवलप होती है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिर्युक्तो जहाति उभय सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगायोजस्य योगः कर्मसु कौशलम्। इस तरह योग एक संपूर्ण विधा है, जबकि एक्सरसाइज केवल एक एकांगी विकास पर ध्यान देता है, आपको केवल शारीरिक सौष्ठव की तरफ प्रेरित करता है। और यदि आप एक्सरसाइज के साथ में अपने मन को भी जोड़ लें, अपने सांस को भी जोड़ लें, तो योग हो जाता है। और योग एक जीवन मूल्यों के विकास के लिए एक योग संस्कृति की तरफ ले जाता है।
2: बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं कि योगा जो कि एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ है, जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ही चाहिए, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखता है, और जो कि बहुत कम आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल में इतनी सारी टेंशन है, कहीं घर की टेंशन है, करियर की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, महिलाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव हैं जिसमें हार्मोनल चेंज उनके काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, और इस दौर में उनसे कहा जाता है कि आप जिम नहीं जा रहे हो तो एक्सरसाइज करो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी फीमेल को हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, बैलेंस में नहीं है, तो क्या योगा भी उनकी मदद कर सकता है उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में?
3: जी, योग जो है हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस करता है। आप जब आसनों में खास करके भुजंग आसन करते हैं, सर्वांग आसन करते हैं, तो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिव होती है और हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छा होने लगता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से वेसल डायलेशन की क्रिया अच्छी होती है और आपकी कार्डियक मसल्स स्मूथ होती है, और कार्डियक मसल्स स्मूथ होगी तो जाहिर सी बात है रक्त का संचार अच्छा होगा, और जो हार्मोनल सिक्रेशन इम्बैलेंस हो रहे हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। फिर आता है, अभी आपने मेडिटेशन का जिक्र किया है, मेडिटेशन कराया नहीं जा सकता है, मेडिटेशन स्वतः घटित होता है। उसके पूर्व आपको अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करना सीखना होता है, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकारा इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारा। आप अपने इंद्रियों पर अर्थात अपनी कर्म इंद्रिय जो एक्शन ऑर्गन्स हैं और जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, इन पर आप जब कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो बहुत कुछ शरीर में अच्छा परिवर्तन होता है। और फिर आता है कंसंट्रेशन, जिसको हम धारणा कहते हैं, देशबंधस चित्त से धारणा। आप किसी एक विषय पर अपने आप को कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे तो आपका मन निर्विषय हो जाएगा, ध्यानम निर्विषय मना, तब आप मेडिटेशन की प्राप्ति करेंगे। और जब आप मेडिटेशन आपका घटित हो जाएगा तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगे।
2: और राइट, और मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि मेडिटेशन का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है आपके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं चल रही होती है। और जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, क्योंकि जब मेरा भी थॉट प्रोसेस एक टाइम पर वही था, सबसे सुना कि मेडिटेशन करते वक्त आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता, मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल एक साथ आते हैं, मुझे सब चीज़ सुनाई पड़ रही है, मैं आँखें बंद करके बैठी हूँ, कान मेरे चल रहे हैं उस वक्त, मुझे हर एक चीज़ नज़र आ रही है और बहुत सारे सीन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं मेडिटेशन कर नहीं पा रही। क्या सर, सच में ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन करते हैं उनका दिमाग एकदम से शांत हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उनको कोई थॉट्स नहीं आते, या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को आना ही मेडिटेशन कहते हैं?
3: ब्लैंक नहीं होता है, बंडल ऑफ थॉट्स जब जनरेट होते हैं तो उसके अंदर एक फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, उस फ्लक्चुएशन को एक रिदम में लाना ही योग का मूल लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि ने मन पर ही कार्य किया है और योग वस्तुतः मन का विज्ञान है, उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग शून्य नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और विचार संगीतमय हो जाते हैं, एक रिदम में आ जाते हैं, और आपकी समस्त कोशिकाओं में जो एक प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन है वो क्रिएट होता है, और आपके शरीर में इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो क्रिएट होती है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होने लगता है, और आपके सभी ऑर्गन्स आपके स्वायत्त तंत्र की प्रणाली में कार्य करने लगते हैं, एक तरह से लोकतंत्रीय व्यवस्था है आपके शरीर में।
2: ओके, तो भाई जिनको आज तक ये लगता था ना कि मेडिटेशन का मतलब होता है आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा, आप सिर्फ शांति से बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, ख्याल बहुत सारे आते हैं, बस वो एक रिदम में जब कन्वर्ट होते हैं तब आप मेडिटेशन करते हो। चलिए सर, आपसे ही बात कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि ख्यालों की ही बात चल रही है, और मुझे लगता है कि जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है या हमारा दिमाग शांत नहीं होता, तो योगा में बहुत सारे पोजेस ऐसे हैं जो बैलेंस के ऊपर बने होते हैं।
3: जी, सबसे पहला तो आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बैलेंस के ऊपर ही आधारित है, जैसे आप वृक्षासन करते हैं तो बैलेंस का ही आसन है, इसमें जब आप राइट लेग पर खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन का हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, और लेफ्ट पर जब खड़े होते हैं तो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, और ताड़ासन भी एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग को अच्छा बनाता है, वो बैलेंस का ही पोज है। ऐसे ही आप जब सर्वांग आसन करते हैं तो ग्रीवा क्षेत्र पर बैलेंस करते हैं अपने पूरे भार को, और इससे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बहुत एक्टिव होता है, और आपकी हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर दोनों ही बैलेंस होते हैं इससे।
2: तो सर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि कुछ लोग वैसे तो बहुत फिट होते हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जब वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा कभी वो कर नहीं पाते, तो इसके पीछे का जो हमारा रीज़न है वो क्या है और योगा किस तरह से हेल्प करता है हमें चीज़ों को बैलेंस करने में?
3: देखिए, कोई भी कार्य आप अगर पहले शुरू करते हैं तो आपको उसमें आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है और मांसपेशियाँ उसके लिए हैबिचुअल नहीं होती हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन्स और एक्शन ऑर्गन्स में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो कई बार अपना प्रयास करता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वो प्रयास करना बंद नहीं करता है। तो इसमें योग शास्त्र में भी कहा गया है कि अभ्यास को बारंबार करना है, और जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाएगा तभी आप जा करके अपने बैलेंस की स्थिति में आ पाएंगे।
2: तो भाई अब बात है उनकी जो ये कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं योगा कैसे करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनसे आप अगर कहते हैं कि योगा करो तो कहते हैं कि मेरे शरीर में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो योगा के लिए चाहिए। क्या सर बिना फ्लेक्सिबिलिटी के योगा नहीं हो सकता है?
3: फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो योगा किया गया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी अगर आप योग का अभ्यास करते हैं। तो योग में एक शर्त दी गई है जो हमारे योग शास्त्रियों ने कहा है कि जब हम योग करने लगते हैं तो हमारा शरीर कमल नाल के समान हो जाता है, मृणाल वेणु वपुः। मृणाल अर्थात कमल और वेणु उसका जो कमल की नाल होती है उसके समान हमारा शरीर लचीला हो जाता है।
2: जी, तो मतलब अगर आप योगा करते हैं और अभी आपका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे। तो आप मुझे बता सकते हैं उन्हें किस योगा आसन से स्टार्ट करना चाहिए और एडवांस लेवल पर डायरेक्ट ना जाएं?
3: हाँ, बिगनिंग स्टेज पे अगर आप योग करना शुरू करते हैं, जब आपका शरीर कड़ा है, तो आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करें। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं तो माइक्रो ऑर्गन्स पर कार्य करता है और छोटी छोटी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, और जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड का जमा होने लगता है उसको वो ठीक करता है, तो आपकी एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है। तो सबसे पहले आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से करें, जिसमें अंगुल शक्ति विकासक क्रिया है, कर्पिष्ठ विकासक शक्ति क्रिया है, करतल शक्ति विकासक क्रिया है, इसी तरह से आपकी स्कंद शक्ति विकासक क्रिया है, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया है, कटि शक्ति विकासक क्रिया है, और पैरों की अंगुलियों तक जा करके इसका अभ्यास है। पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी होती है और मांसपेशियों को एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है। फिर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएँ।
2: सर मैं आपसे एक बार वापस से यही सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिसनर्स को थोड़ा आसान भाषा में बताएं कि ये योगिक सोच जो व्यायाम है उसमें कौन कौन से आते हैं और किस तरह से वो परफॉर्म कर सकते हैं।
3: ये जो योगिक सूच व्यायाम है, कोई इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है। आप अगर करना चाहें तो जितने भी आपके फिंगर जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट की क्रियाएँ हैं, आप अगर मोरारजी देसाई नेशनल योग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जा करके योगिक सूच व्यायाम को डाउनलोड कर लें। कई ऐसे संस्थान हैं जैसे कैवल्य धाम लोनवाला संस्थान है, भरत योग संस्थान है, आप उसमें देख सकते हैं कि योगिक सूक्ष्म व्यायाम योग और व्यायाम के सूक्ष्म स्वरूप को व्यक्त करता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप शोल्डर जॉइंट मूवमेंट है, रिस्ट जॉइंट मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट मूवमेंट है, नी जॉइंट मूवमेंट है, इन सबको आप कर सकते हैं श्वास के साथ जोड़ करके।
2: ऑलराइट, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें लगता है योगा का नाम सुनते ही कि ये तो बाबाओं वाला काम है, ये बाबा लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे बात की जाए, आजकल कुछ ऐसी नई जनरेशन में भी लोग हैं जो योगा को सपोर्ट तो करते हैं, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो योगा को समझते हैं कि ये वो करते हैं जो अक्सर बाबा बनने की उसमें निकले हैं, वैसे कहते हैं कि आप हिमालय चले जाओ, वहाँ मेडिटेशन करो बैठ करके। सर आप उनकी सोच को कैसे बदलेंगे?
3: एक्चुअल में अब तो परिवर्तन आ रहा है, पहले ऐसा सोच था, अभी भी कुछ लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह विकसित हो गया है
2: जी
3: कि ये बाबा बनने का है, लेकिन बाबा बनने का नहीं है, बल्कि यह सांसारिक जगत में रहने के लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने परिवार के पोषण के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा कार्य कर पाएंगे, और यह शरीर पर एक तरह से बहुत ही अच्छा निवेश है, इन्वेस्ट है, और यह आपको मल्टीपल डायरेक्शन में आपको इकोनॉमिकल रूप से मजबूत बनाता है। पहली बात तो जब आप रोगी नहीं होंगे तो जो उपचार में पैसा खर्च होता है, मेडिसिन में, डॉक्टर्स की फीस में और डाइट में, ये सब बच जाता है आपका। और साथ ही साथ आपके स्किल्स में एक निखार आता है। आप जब कोई भी कार्य करते हैं अच्छे से कर पाते हैं, और जब अच्छे से करते हैं तो आप वर्क प्लेस हार्मनी के कारण आपका कार्य बहुत ही अच्छा पसंद किया जाता है और आपको उससे एप्रिसिएशन भी मिलता है और साथ ही साथ पैसे का भी फायदा मिलता है।
2: बिल्कुल, और मुझे आपकी आपके फेस पर देख के वो साफ समझ में आ रहा है कि जब आप योगा की बात कर रहे हैं तो जो स्माइल है वो कहाँ से आ रही है। फिलहाल के लिए सर आपसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि योगा करते वक्त ऐसी कौन सी आदत है जो गलत होती है, जिसको करने से या तो चोट ज़्यादा गहरी लग जाती है या आपका योगा सफल नहीं होता।
3: होता क्या है कि अति उत्साह में व्यक्ति अपने शरीर की स्थिति को समझता नहीं है और कठिन योग अभ्यास को करने लगता है, जबकि हमें सरल से कठिन की तरफ पढ़ना चाहिए। पहले हमें सरल अभ्यास कर लेने चाहिए, शरीर को पहले हैबिचुअल बनाना चाहिए, उसके लिए तैयार करना होता है। जैसे अभी इसके पूर्व जो चर्चा हुई थी कि योगिक सूर्य व्यायाम करने चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजिंग करनी चाहिए, तो जैसे अब मान लीजिए आप शीर्षासन आपको आता नहीं हो, आप शीर्षासन करेंगे तो गिरेंगे तो चोट लगेगी
2: जी,
3: तो रीढ़ में दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे आप बाबा रामदेव जी को फॉलो करने लगे और हैंड स्टैंड करने लगे, तो उन्होंने बहुत समय तक साधना की है, अपने शरीर को तपाया है। कोई भी कार्य करने के पहले आपको उसके बारे में समझना चाहिए और उसके सावधानियां समझनी चाहिए, उसके लाभ और हानि को समझना चाहिए और एक योग्य व्यक्ति के निर्देशन में वो कार्य करना चाहिए। तो योग में भी है कि एक किसी एक अच्छे योग शिक्षक को आप अपने साथ जोड़िए, उसके निर्देशन में योग का अभ्यास करिए और शरीर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के पहले ढीले वस्त्रों को पहनिए, खाली पेट इसका अभ्यास करिए, तो निश्चित आपको कोई हानि नहीं होगी और लाभ ही होगा।
2: ओके, एंड हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि योगा करते वक्त अपनी सांसों पर काबू करना और उसको एक परफेक्ट सिंक में लेकर आना क्यों ज़रूरी होता है।
3: देखिए, जब आपकी सांसें चलती हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। जैसे आपको जब कोई गाली देता है तो अचानक आपको क्रोध आता है और एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है
2: जी,
3: और उसके वजह से आपका मन विचलित हो जाता है। और जब आपका मन विचलन होता है, इसका एक दूसरे का बहुत अच्छा संबंध है
2: जी,
3: आपका किसी कारणवश मन विचलित होगा तो सांस आपकी बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। यदि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो सांस घट जाती है, और अगर आप अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तो सांस बढ़ जाती है। दोनों स्थितियाँ आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं, खास करके कार्डियक सिस्टम के लिए और ब्रेन के सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में ले जाता है, और इसलिए आपको उससे बचने के लिए योग करना चाहिए। और सांस को नियंत्रित करने के लिए आपको लंबी गहरी सांस भरना है, आपको ज़्यादा नहीं महसूस उसके टेक्निकल पॉइंट में जाना है, आपको केवल इतना करना सीख लेना है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति घटित हो तो आप बहुत ही स्लोली मूवमेंट में इनहेल करें, स्लोली मूवमेंट में ही एक्सहेल करें, सांस को बहुत धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे मन को शांत करेंगे, वो शांत हो जाएगा।
2: ओके, तो भाई इसलिए आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी योगा स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सूर्य नमस्कार जैसी कोई चीज़ योगा में है, वो डायरेक्ट शुरू कर देते हैं कि हम 108 पूरा लगाएंगे और उसके बाद अगले दिन कहते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है तो एक तो उसका परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए, यानी कि कितने बजे आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो जो कि सबसे बेहतर वक्त होता है, दूसरा कितने पैर से शुरू करना चाहिए, 108 डायरेक्ट राउंड करना चाहिए या फिर 10-12 से स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि इंसान की बॉडी भी फ्लेक्सिबल है नहीं अचानक से 108 शुरू कर दो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी।
3: अभी आपने पहले ही कहा कि कुछ लोग शुरू कर देते हैं अति उत्साह में। अति उत्साह के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि आतुर वैराग्य की दुर्गति होती है, वैराग्य तुरंत धारण नहीं किया जाता है, पहले उसका अभ्यास किया जाता है।
2: ओके,
3: तो आपने अभ्यास किया नहीं, ट्रेनिंग ली नहीं और आपने शुरू कर दिया, तो 108 अभ्यास जब आप करेंगे तो आपका शरीर दुखने लगेगा, आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाएगा,
2: लैक्टिक एसिड
3: और अत्यधिक हो जाने के, और दूसरा आप उसको सिस्टमेटिक वे में जब आप नहीं करते हैं, सूर्य नमस्कार का एक तो परफेक्ट टाइम है कि सुबह जब सूर्योदय हो तो आप करें, इसलिए कि उस समय कार्टिसोल हार्मोन्स का डिपोजिशन शरीर में होता है, उसे प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है
2: जी।
3: आपने कभी इसके पूर्व प्रश्न किया था कि श्वास की नियमन क्यों आवश्यक है, सांस को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, तो सांस को कंट्रोल इसीलिए करना चाहिए कि जब लैक्टिक एसिड के फार्मेशन को रोकने के लिए या लैक्टिक एसिड के को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो एटीपी में कन्वर्ट होने लगता है और अच्छे गुड हार्मोन्स बनने लगते हैं शरीर में। तो सूर्य नमस्कार आपको सुबह करना चाहिए और सूर्योदय की बेला होनी चाहिए। उस समय एक तो काम एनवायरनमेंट होता है, शांत वातावरण होता है, शांत वातावरण की वजह से आप जब करते हैं तो आपका मन लगता है। सूर्य की किरणें बहुत तीखी नहीं होती हैं, वो आपके शरीर को अच्छी लगती हैं, उस एक अच्छे फीलिंग आती है, स्पर्श की अनुभूति होती है आपको, वो सुखद स्पर्श की अनुभूति होती है। फिर आपको शुरुआत करना चाहिए सूर्य नमस्कार का किसी के निर्देशन में, एक आवृत्ति पहले शुरू करें, फिर दो आवृत्ति शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हुए आपका शरीर खुद बता देगा कि हम कितना कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण योग क्रिया है, इसमें बंध मुद्रा प्राणायाम और आसन का एक समन्वित स्वरूप है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक युक्ति है जो आपके आत्मा को प्रकाशित करती है और शास्त्रों में कहा गया है सूर्यात्मा जगत चक्षुषु, और ये केवल शास्त्रीय भाषा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग है, ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को व्यवस्थित करती है।
2: ओके सर, हमने सूर्य नमस्कार की बात की और एक और नमस्कार आता है जिसको हम चंद्र नमस्कार कहते हैं।
3: हाँ, चंद्र नमस्कार भी जो है अपने आप में एक बहुत उपयोगी अभ्यास है। चंद्र चूंकि मन से प्रेरित है, जो शरीर के अंदर जो जलीय तंत्र है जिसको हम आसमो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, जो आपके शरीर में जो भी रासायनिक तत्व हैं, चाहे वो रक्त है, उसमें जो लिक्विड फार्म में जो कुछ भी है, जो रस है, उसको चंद्रमा प्रभावित करता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रूव हो चुका है कि जब पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है तो लोगों के मन में विचलन पैदा होता है, उस समय सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस टेंडेंसी को रोकने के लिए आप चंद्र नमस्कार जब करते हैं तो आपका मन शांत होता है, चंद्रमा मन सो जाता है। और सूर्य और चंद्र, अगर आप सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार दोनों कर लेते हैं तो आपकी सर्कैडियन रिदम जो है बिल्कुल आपके बैलेंस में आ जाएगी।
2: ओके तो सर, चंद्र नमस्कार करने का जो सही वक्त होता है वो कौन सा होता है?
3: चंद्र नमस्कार भी उसी समय करना चाहिए जब चंद्रमा उदित हो रहा होता है, यानी गोधूली बेला के समय यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी। गोधूली बेला वो होती है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्र का उदय हो रहा हो।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब जिसको कई भाषाओं में कहा जाता है जब दोनों बेला मिल रही होती हैं उस वक्त आपको ये करना चाहिए। यानी कि आपको नाम से एक तो पता चल जाता है सूर्य नमस्कार यानी कि सूर्य के उगते वक्त, और शाम में जब आप चंद्र नमस्कार करने बैठेंगे तो चांद के निकलते वक्त। और सर दोनों के बेनिफिट्स पे आपने बात कर ली, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी। कई लोगों ने जिक्र किया है कि हमारे शरीर में अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, क्या योगा इसको भी प्रभावित करता है और क्या इसको ठीक भी कर सकता है?
3: हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है आपके शरीर में, वो नेचर ने दे रखा है और नेचर ने ही योग को भी बनाया है।
2: जी,
3: नेचर से ही योग को अडाप्ट किया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया आसनेन समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः, ये चतुर्शीति लक्षणि शिवेन कथितम पुरा, जो घेरण संहिता और हठयोग प्रदीपा में इसका वर्णन आता है। और उसमें कहा गया है कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी से, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, चर अचर जैव जगत से जो भी प्राणी हैं, उन सब में कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। उन क्वालिटीज़ को अडाप्ट करके बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण के द्वारा, एक दिन का अन्वेषण नहीं है, लाखों वर्षों में हमारे योगी जो वैज्ञानिक थे वनों में जाकर के, निकट जाकर के एक एक चीज़ को माइन्यूटली वॉच करने के बाद में उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन किया है और आज उसे हम बहुत ही इजी वे में पा गए हैं, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं।
2: जी,
3: अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, चंद्र नमस्कार करते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो सर्केडियन रिदम है जिसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाती है।
2: ओके सर, जब भी मोटापे की बात की जाती है जो कि आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रही है, धीरे धीरे भारतीयों में डायबिटीज़ भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है और कहते जा रहे हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, सर योगा कैसे मदद कर सकता है और लोगों को लगता है कि योगा से जो वज़न होता है, जो फैट होता है, ये कम नहीं होता, इसके लिए वो सीधे जिम की तरफ भागते हैं, क्या सर योगा वेट सच में कम नहीं करता है या हम उसे गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इसका रिजल्ट हमें अभी नहीं दिख रहा है?
3: देखिए, योग किसी एक विषय पर काम नहीं करता है
2: जी,
3: कि आपके शरीर के अलग अलग फैट को रिड्यूस करे। लेकिन अभी जब देखा गया कि जन सामान्य का आकर्षण केवल एक ही तरफ है, तो हमारे जो आधुनिक योगी हैं उन्होंने उसके बीच का एक रास्ता तैयार किया
2: जी।
3: तो कुछ प्रमुख अभ्यास को उन्होंने मोटापे के लिए, कुछ डायबिटीज़ के लिए, कुछ रिस्पायरेटरी सेंटर को डेवलप करने के लिए, थोरेसिक प्रॉब्लम को अच्छे करने के लिए उन्होंने डिजाइन किए हैं। और मोटापा ठीक करने में योग अपने आप ही कारगर है। अगर आप योग करते हैं तो साइड बेनिफिट अपने आप मिलता है। खास करके जैसे आप सर्वांग पुष्टि व्यायाम करते हैं, मरकट आसन करते हैं, यहाँ तक कि जो ग्रीवाचालन क्रिया है जो वेगस नर्व को और वेगल टोन को प्रभावित करती है, उसके कारण मोटापा जो स्ट्रेस रिलेटेड होता है वो मोटापा अपने आप ठीक होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से जो मोटापा होते हैं, जैसे मेधा शक्ति विकासक क्रिया और आपके बुद्धि तथा अधृति शक्ति विकासक क्रिया जो जालंधर बंद की स्थिति में की जाती है, उससे अच्छा लाभ मिलता है।
2: ऑल राइट, यानी कि योगा आपकी सिर्फ किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करता है, आपकी हर एक चीज़ को टारगेट करता है, आपके दिमाग को, आपके मन को, और मुझे लगता है कि आपकी रूह को भी।
3: हाँ बिल्कुल, आपकी आत्मा तो का उन्नयन उसी से है। अभी आपने डायबिटीज़ के कैपिटल की बात की है। भारत में डायबिटीज़ कैपिटल इसलिए बढ़ रहा है कि व्यक्ति बातें ज़्यादा करते हैं, शास्त्रों का की बात तो करते हैं लेकिन शास्त्रों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे मैं एक योगाचारी हूँ, ये ठीक है कि मुझे सैद्धांतिक पक्ष अच्छे से आता है, लेकिन यदि मैं अपने आप पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो मुझे योग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये स्व विच्छेदन की प्रक्रिया पर आधारित योग का विज्ञान नहीं है, यह स्वयं पर परीक्षण करना होगा। और जो योगी और जो योग के मास्टर हैं, जो ट्रेनर हैं, यदि अपने शरीर को निखारते हैं तो उनका इम्पैक्ट जनमानस पर भी पड़ता है। और हमें इस पर ध्यान देना होगा कि डायबिटीज एक तरह से दिनचर्या की अव्यवस्था पर भी आधारित है
2: जी।
3: और आहार का भी उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हमारे शास्त्रों में, योग शास्त्र में इस विषय पर बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं और योगियों को सात्विक आहार लेने की बात की गई कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक। आहार शुद्धि का मतलब हुआ कि पौष्टिक हो, समयक हो, ऋतु के अनुकूल हो, प्राकृतिक हो, जिसे आप ऑर्गेनिक फूड के नाम दे सकते हैं
2: जी। आपकी भाषा में अगर मैं बहुत आम भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है वो खाना जो नेचर से आ रहा है, जो इंसानों द्वारा बहुत तला भुना नहीं गया है, क्योंकि आपको पता है जो नेचर ने दिया है वो खाना सबसे ऊपर रखा जाता है, उसे हम रियल फूड कहते हैं। और आजकल रियल फूड को लोग डाइट से कंपेयर करते हैं। अगर कोई असली खाना खाता है तो लोग कहते हैं आप डाइट कर रहे हो, वहीं पर अगर किसी ने बहुत जंक फूड खाया तो कहते हैं आप नॉर्मल चीज़ें खा रहे हो, बल्कि वो नॉर्मल नहीं था। एक ज़माने में नॉर्मल था कि हमने वो सब्ज़ियाँ खाई हैं, वो फल खाए हैं, अपना योगा किया है, हमने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में दिया है। और आजकल उसे डाइट कहा जाता है कि आप हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ क्यों खा रहे हो।
3: पहले क्या हुआ कि हमने आधुनिकता के नाम पर अपने आप को गलत हैबिट की तरफ प्रेरित किया
2: जी।
3: लोग कहते हैं कि मैं आधुनिक हूँ और ये पुराना है। क्या पुराना है, क्या आधुनिक है, इसके बीच में हमें इसके अंतर को समझना होगा।
2: बिल्कुल,
3: जैसे एक मोबाइल है
2: जी,
3: आप जिसको लेकर के बातें करते हैं, जो मॉडर्निटी की एक साइन है, आपके पास लग्जीरियस लाइफ के जो भी इक्विपमेंट हैं, ये सब किसी व्यक्ति ने बनाए हैं, वो आपके पूर्वज हैं
2: जी।
3: वो एक तरह से इतिहास है, जो विगत समय है, विगत क्षण है, वो पास्ट होता है और वो ओल्ड होता है। तो आप ओल्ड डेटेड नहीं कर सकते हो, ओल्ड के सहारे ही आप मॉडर्न हैं। यदि आप वास्तव में उसको सूक्ष्मता से अन्वेषण करते हैं और अपने इतिहास का वास्तविक अध्ययन करते हैं, अपने पूर्वजों की हैबिट को महसूस करते हैं, उनके खान पान को आप देखते हैं और माइन्यूटली अगर वाच करेंगे तो उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको मिलेगा और आपको वापस उसी रिदम में आना पड़ेगा। पहले लोग चने और बाजरे को कमज़ोर और गरीब लोगों का खाना समझने लगे थे
2: जी।
3: बीच में ये मध्य समय जब आया था
2: जी जी जी,
3: लेकिन हमारे जो पूर्वज पहले थे, जो वैज्ञानिक थे, वो संपन्न भी थे लेकिन वो नेचर के साथ जुड़े थे, वो उनको पता था कि ये सामान्य भोजन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण भोजन है और उस भोजन को खाते थे। बाद में बीच में लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हुआ कि
2: मोटा अनाज गरीबों के लिए होता है, अनाज
3: गरीब लोगों के लिए है, और अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए उन्होंने ओल्ड डेटेड कह करके उस चीज़ को हटा दिया
2: जी।
3: लेकिन अब वो रिवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, जब लोगों को लगा नहीं अब तो ये गलत हो गया और फिर वो जंक फूड को हटाने लगे और ऑर्गेनिक फूड या रियल फूड के नाम से हमारे उसी पुरातन आहार व्यवस्था को खुद पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस इसमें अंतर यह है कि पहले वो मुफ्त में था और अब हम बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट कर रहे हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अक्सर सवाल हमसे भी किया जाता है, यानी कि मुझसे किया जाता है। जब भी कोई मुझसे कहता है कि चलो पिज़्ज़ा बर्गर खा के आते हैं, और मैं कहती हूँ नहीं मैं ये चीज़ें नहीं खाती, तो वो कहता तुम खाते क्या हो। जब मैं उनसे कहती हूँ मैं फल खाती हूँ, तो कहते हैं तुम डाइट कर रहे हो, तुम डाइट बहुत करते हो। मतलब जो चीज़ मुझे नेचर की तरफ से मिल रही है वो डाइट कैसे हो सकती है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया।
3: लोग क्या है समझते हैं कि जो नेचर है, नेचर कुछ अलग है। नेचर तो आपके साथ चलता है,
2: जी
3: आपका
2: सही का।
3: जो शरीर है वो आपको बता देता है कि अगर दर्द हुआ है तो उसे कैसे दबाना चाहिए, जिससे आज एक्यूप्रेशर के रूप में हम लोग जानते
2: जी।
3: हैं। आप शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं, आप उबने लगते हैं, जब आपके शरीर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन बढ़ जाता है
2: तो
3: अपने ऑटोमेटिक बिना जाने हुए, आप मेडिकल साइंस नहीं जानते हैं लेकिन शरीर की अपनी एक सिस्टम है, वो आपको साइंस की तरफ ही ले जाता है और आप स्ट्रेचिंग करते हैं और आपको आराम मिल जाता है
2: जी।
3: ऐसे ही जो नेचर की कनेक्टिविटी है आपकी, वो स्वतः होती है, आपको नेचर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर जल नहीं रहेगा तो आप मर जाएंगे,
2: बिल्कुल
3: शुद्ध पानी नहीं रहेगा तो मर जाएंगे
2: जी।
3: यदि वायु अच्छी नहीं रहेगी आप उसे खरीद नहीं सकते,
2: बिल्कुल।
3: नेचर जो नेचर बनाता है उसका कोई विकल्प नहीं है,
2: उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
3: अगर आपको नेचर के साथ आप न्याय नहीं करोगे तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपनी संतति के लिए आप बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हो। आप केवल मॉडर्निटी की बात कर सकते हो लेकिन आप मॉडर्न नहीं हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि हमारे शो का भी वक्त होता जा रहा है, तो अब मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी अपने लिसनर के लिए कि आज योगा दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को।
3: मैं तो केवल इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्यापूर्ण विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैं जब आप किसी व्यक्ति को सुखी देखें तो उसमें आप एक मैत्री की भावना लाएँ, मित्रता की भावना लाएँ। यदि किसी व्यक्ति को दुखी देखें तो उसके प्रति करुणा की भावना लाएं। यदि किसी व्यक्ति के कार्यों से आप प्रभावित हों, उसके पूर्ण जिसको बोलते हैं, तो आप उसके प्रति मुदिता प्रसन्नता की भावना लाएं। यदि किसी व्यक्ति के कार्यों से आप नाखुश हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, अपूर्ण की श्रेणी में उसे रखते हैं, तो उसे थोड़ा उपेक्षित इग्नोर करें। अगर आप ये चार चीज़ें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और ये हेल्दी एनवायरनमेंट जो क्रिएट होगा वो एक स्वस्थ राष्ट्र की, स्वस्थ विश्व की संकल्पना को साकार करेगा। यही 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल लक्ष्य है, जिसमें एक टॉपिक दिया गया है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात जब आप स्वस्थ रहें वृद्धावस्था में भी युवा अवस्था जैसी ही ऊर्जा लेकर के कार्य करें। तो ये कभी तभी कर सकते हैं जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को सबके साथ पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं यही मेरा मानना है और आप लोगों से यही निवेदन है कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। और योग केवल आसन नहीं है, योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो आपके विकास के साथ साथ दूसरे का भी विकास करती है। योग आपको ये सिखाती है कैसे सबके साथ हितपूर्वक रहें, सर्वभूत हिते रतः की भावना के साथ रहें, तभी आप अद्वैत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे, तभी आप कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार महावाक्य हमारे भारतीय शास्त्र के हैं और इनकी संपूर्णता को वास्तव में अपने अंदर उतारने के लिए, और यही वास्तविक मॉडर्निटी है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उससे भी अच्छा लगा मुझे योगा के बारे में जानकर। बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में योगा को लेकर के, कुछ लोग योगा करना नहीं चाहते क्योंकि उनका वज़न कम नहीं हो रहा, कुछ लोगों को लगता है कुछ मदद नहीं करता है, और न जाने कितनी ही बातें हैं। जो आज शायद क्लियर हुई होंगी। और मैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात करना चाहूँगी कि सर आपका क्या ख्याल है, आप बहुत ध्यान से पूरा शो सुन रहे थे, आपका ओपिनियन क्या कहता है अब?
4: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे भी इस पे ज़रूर ओपिनियन देना चाहिए। और आज के हमारे विशेष जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई योग के ऊपर और हमारी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में। और इस पर मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना सा है कि यदि आप हमारे योग एक्सपर्ट की बातें मानेंगे तो शायद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मुझे हर संडे यहाँ आ करके। और
2: क्या बात है
4: जी, आप हमारी बात के पीछे की गहराइयों को समझेंगे कि जो हर संडे को आ करके और तमाम बीमारियाँ और तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं, अगर आप सर की बात को मानेंगे, सर की बात को फॉलो करेंगे, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। बीमारियों को और स्वास्थ्य खराब होने की जो समस्याएं आती हैं फ्रीक्वेंट बार बार, उसको आप बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को इसका पालन करना चाहिए और अपने शरीर के, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कि हमें प्रतिदिन आधा एक घंटे का समय ज़रूर निकालना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो भाई अब तो राहुल सर ने भी कह दिया है कि अगर आप योगा करते हैं तो आप उनके पास नहीं जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है।
4: जी बिल्कुल, मैंने इस सत्य को स्वीकार किया।
2: जी हाँ, तो फिलहाल के लिए लिसनर्स, और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में। हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हैं जो लिख रहे हैं हाय, एंड दीपांशी तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम एंड सर, गुड इवनिंग टू यू। आप दोनों लोगों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में। घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज से योगा करते रहिए। योगा करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, करेंगे योग रहेंगे निरोग, क्योंकि योगा से ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।
5: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं, कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
6: धन्यवाद आरजे भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने, नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है और उसको ज़रा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की ज़रूरत भी होती है।
5: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है, शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
6: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों, या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
5: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए।
6: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है, कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
5: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
6: बहुत जरूरी है, मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाएं। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाए उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज्यादा हो और सोना भी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दौरा, फेट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे, लालिमा धाली नाभि या फिर उससे बदबू आने लगे, गंभीर पीलिया हो जाए, खासकर 24 घंटे के भीतर, बार बार उल्टी, दूध वापस आना, मतलब जब हम दूध का सेवन कराएं बच्चों को और वो तुरंत ही उस दूध को बाहर फेंक दें।
7: बिल्कुल, तो भाई एक बात याद रखना, नवजात में देरी का मतलब खतरा, एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओ, इसे दिल में बांध लीजिए कि खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। सो टीकन भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
6: अरे आरजे भैया, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है, मैं एक एक सेवा बताती हूँ। जैसे पहला है वार्मर, इंक्यूबेटर नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन या CPAP, अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों में मदद मिलती है। तीसरा है दवाइयां और एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसलिए तुरंत दवा दी जाती है। फिर है फोटोथेरेपी, पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। कई बार होता है कि हम घर पे ही बल्ब लगा के भी ये थेरेपी देने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखिए, पहले परामर्श फिर कोई थेरेपी। पांचवा है शुगर या फ्लूइड मैनेजमेंट, लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठवां है फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो नली यानी एनजी ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर यानी KMC, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। अगला है निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर एक दो घंटे में इन सभी की जाँच होती है। फिर अगला है परिवार को सलाह देना कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कब वापस आना है। और आखिरी और दसवां है फॉलोअप यानी डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, अभी समय भी बताया जाता है।
7: वाह क्या बात है, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।
6: बिल्कुल भैया, और सबसे खास बात ये है कि ये सारी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क यानी मुफ्त है।
7: मुफ्त?
6: जी।
7: सच में?
6: बिल्कुल।
7: लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्च होगा।
6: नहीं जी, सरकार ने नवजात के लिए इलाज को मुफ्त रखा है, इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबी और पैसों की वजह से कोई इलाज ना रुके, ये सरकार का एकदम साफ साफ संदेश है।
7: तो भाभी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन बात ये आती है कि परिवार आखिर क्या करे?
6: परिवार तो आरजे भैया बहुत कुछ करता है, समय पर अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की दवा बीच में ना रोके, KMC जरूर करें, साफ सफाई, हाथ धोकर ही बच्चे को छूना, केवल माँ का दूध, 6 महीने तक कुछ और नहीं, और फॉलो अप की तारीख कभी ना छोड़े।
7: सही बात है, घर की जिम्मेदारी घर वालों की।
6: हाँ अर्जी भैया, और प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को जल्दी ठंड पकड़ती है और इन्फेक्शन जल्दी लगता है, बार बार दूध चाहिए होता है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है। तो KMC यानी कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
7: तो भाभी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं आती थी, क्यों?
6: बिल्कुल, और इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये जरूर करवाना चाहिए, जैसे 4 ANC चेकअप, IFA की गोलियां, TT और TD वैक्सीनेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच, और संस्थागत प्रसव अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU जाने से बच सकता है।
7: और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो?
6: तो आरजे भैया सीधे 108 पर फोन करो, एम्बुलेंस आती है, ऑक्सीजन, ट्रेन स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सामान सबके साथ होते हैं, और वो भी सब कुछ एकदम मुफ्त।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड। अब वक्त हो चला है संडे स्पेशल प्रोग्राम चटपटी चाची का, जिसमें होगी अब चुगली। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम चटपटी चाची।
1: अरे दुलारी, ओ दुलरिया,
2: बुझात बात।
1: ए दुलारी, कहाँ हो?
3: अरे आई थे चटपटाओ हो जानो कहाँ है पाड़े। पल्लवा खोलो, देखो क्या चिल्लात है, चटपटो न हुई है।
1: अरे खोलो, धूपम खड़ी हन।
3: हाँ खोली तो खोल दे पल्लवा। आई जाओ बगली, आओ बहनी आओ। राम राम, राधे राधे।
1: जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम सोचा कि तुका बताई दे।
3: हाँ।
1: कि आज हम बहुत परेशान हो, हमका जौन है दुलारी बहुत क्रोध लगा रहा है।
3: बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। हाँ। इतनी ठंडवा चलाए, बैठ जाओ।
1: ये जान लो कि हाँ। गाँव का होत है।
3: हाँ।
1: तुम्हार दिमाग एकदम खराब हुई जाए सुन के।
3: अरे मोरी माई, यही बिचौम तनी हम चली गए ना जो है नखलऊ, टहरे गए ना नखलऊ।
1: लखनऊ गई रहो?
3: हाँ।
1: और हम चला गए दिल्ली।
3: अच्छा दिल्ली गए?
1: दिल्ली गए रहा।
3: हाँ।
1: तो वही से तो हम तुझसे ना मिल पाए।
3: हाँ हाँ, 15-20 दिन कहाँ मिले।
1: देखो जैसे आए।
3: हाँ।
1: वैसे जो है गौवा में एकदम हलचल मची है।
3: अरे मोरी मैया,
1: पीछे का होत है गौवा माँ।
3: हाँ।
1: जब सुनी हो तो आज तुम्हार दिमाग तर हुई जाएगी।
3: अरे तो बताओ बहनी, हमारे तो पेटवा फिरा लग, जल्दी बताओ का भाव।
1: निकरिन सबेर में जौन है।
3: हाँ।
1: देखा कि गणेशिक बहु ठाणी है।
3: हाँ।
1: और शर्माइन ठाणी है।
3: हाँ।
1: तो भाई अब सुन ले तू।
3: हम
1: हमका पाई गई दोनों जनी।
3: हाँ।
1: तो तुहार अतनी बुराई, अतनी बुराई करीन है।
3: अरे भवानी उन पाई।
1: हाँ, बस ये कहा है कि अरे वही जो पड़ाइन है ना।
3: हाँ।
1: अपने आदमी खाना नहीं देती।
3: अरे
1: अपने लड़का खाना नहीं देती।
3: अब
1: हम मन में सोचा के अतना सुंदर उनके पाड़े जी और उनके लड़कवा अतना सुंदर है।
3: हम खाई कर देबे।
1: हाँ, चमकत है, चमकत तोहरे लोकर के पलवार में तो ऐसे कौनो है ही नहीं।
3: पूरा ही कहूँ। हाँ। बहनी पूरा ही कहूँ।
1: हम कहा नहीं कुछ, कहे के लिए हम झगड़ा मोल ले तोहरे खातिर।
3: हाँ।
1: हम कुछ नहीं कहा, सुनत रहे हम बताई थे तू का।
3: अच्छा सुनी ऐसे बतवात रहे।
1: हम बैठी रहा ना।
3: तो
1: देखिन तू नहीं हो हमरे संग।
3: हाँ, हाँ।
1: तो तुहार बुराई हमसे करीन।
3: करीन की? हाँ
1: हाँ, कहीन की खाए बगैर मरा जात है पाड़े जी और उनका लड़कावा गौवा में अहर बैठा, अहर खात है कहूँ, अहर खात है अतनी।

0: कहाँ हो?
1: अरे आई थे चटपटाऊ हो जानो कहाँ है पाड़े। पल्लवा खोलो देखो देखो क्या चिल्लात है, चटपटोन हुई है।
0: अरे खोलो धूपम खड़ी हन।
1: हाँ हाँ खोली थे खोली थे, खुआ दे दो पल्लवा। आई जाओ बगली आओ, आओ बहनी आओ। राम राम राधे राधे।
0: जय श्री राधे जय श्री राधे। आज हम सोचा कि तुका बताई दे।
1: हाँ
0: कि आज हम बहुत परेशान हो, हमका जौन है दुलारी बहुत क्रोध लगा रहा है।
1: बैठ जाओ पहले बैठ जाओ। हाँ। ये तनी ठंडवा चलाए ने बैठ जाओ।
0: ये जान लियो कि हाँ। गाँव का होत है।
1: हाँ
0: तुम्हार दिमाग एकदम खराब हुई जाए सुन के।
1: अरे मुरी माई यही बिचौम तनी हम चली गए ना जो है नखलऊ टहरे गए ना नखलऊ।
0: तो लखनऊ गई रहो।
1: हाँ
0: और हम चला गए दिल्ली।
1: अच्छा दिल्ली गए।
0: दिल्ली गए रहा।
1: हाँ
0: तो वही से तो हम तुझसे ना मिल पाए।
1: हाँ हाँ 15-20 दिन कहाँ मिले।
0: ये देखो जैसे आए।
1: हाँ
0: वैसे जो है गौवा में एकदम हलचल मची है।
1: अरे मुरी मैया
0: पीछे का होत है गौवा माँ।
1: हाँ
0: जब सुनी हो तो आज तुम्हार दिमाग तर हुई जाए।
1: अरे तो बताओ बहनी हमारे तो पेटवा फिरा लग। जल्दी बताओ का भाव
0: निकरिन सबेर में।

0: तोहरे लोगन के पलवार में तो ऐसे कौनो हैये
1: ना। पूरा कहू बहनी, पूरा कहू।
0: हम कहा नहीं कुछ, कहे के लिए हम झगड़ा मोल ले तोहरे खातिर।
1: हाँ
0: हम कुछ नहीं कहा, सुनत रहे हम बताई थे तो का।
1: अच्छा सुनी हो कुल ऐसे बतवात रहे।
0: हम बैठी रहा ना तू देखिन तू नहीं हो हमरे संग।
1: हाँ हाँ
0: तो तुहार बुराई हमसे करीन
1: करीन की। हाँ
0: हाँ कहीन की खाए बगैर मरा जात है पाड़े जी और उनका लड़कावा गौवा में अहर बैठा अहर खात है कहू अहर खात है अतनी बुराई। और कहा थे कि देखो कैसे सीख सलाई बना है बनवा, सोचा तू अपन मर्द का देखो शर्मा जी का देखो
1: तब हा? का उनका नहीं देखा थी कि
0: है तो पतावत है यह। हाँ। गिरत है अहर गिरत है।
1: और बहनी जाने हो शर्मा जी एक जिना जब हम रहें घरा 15 दिन पहलवा तब शर्मा जी आए का और कहें कि हे बहनी दुलारी हमें बहनी कहते हैं। हाँ। बहनी तनी तू बढ़िया एक कप हम दूधवा लगावत रहे बढ़िया एक कप तू हमें चाय पिया दो तो हम कहें काहे शर्माइन नहीं पियावत थी कहना है मारो गोली उनका चाह पानी कुछ पूछते नहीं।
0: अब देखो और यहाँ कहें हाँ। कि उनके घरे कोई जाए ना
1: हाँ।
0: तो एक गिलास पानी ना पाई
1: दिया खन्यो तनी बहन
0: तो हम कहा अरे दादा मन में सोचा
1: हाँ।
0: कि दो ही बार जो है हमार दुलारी उरद की दाल भिगो भेवत है
1: हाँ। हाँ।
0: उसे बड़ा बनाए फुलौरी बनाए
1: हाँ?
0: उरद बनाए चाउर बनाए खिरिया बनाए पुड़िया बनाए का नहीं बनाती हो है
1: और का
0: बांध बांध देती हो हमरे घरे भिजवावत हूँ।
1: और उनका
0: कहा है उनके घरे कुछ बनते नहीं है कुछ पनिए उनके घर जाओ तो पनिया ना पूछिए हुई
1: आए कह दो तुहे परे भवानी हैया तुहे खाई ले।
0: और सुनो
1: हाँ
0: अब की जो शर्माइन तोहरे घरे आवे
1: हाँ
0: तो बताई दियो वो हमार बुराई तुसे जरूर करी।
1: हाँ पूरे कहूँ जब हम नहीं रहें तो हमार बुराई तू से करी।
0: हाँ
1: और जब तू ना रहबो तो तुहार बुराइया हम से करी है उका यहाँ काम है।
0: तो सुनो बे हम तू हमार फ्रेंड हो ना।
1: हाँ बिल्कुल फ्रेंड है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो सुनो ना उनकी बात कौनो हमार अगर बुराइया कहिए
1: नहीं नहीं हम नहीं तो सुना
0: कि तू हमारे घर से चली जाओ
1: बिल्कुल उनका हम एक गिलास पानी ना पूछा
0: कह दियो कि हमार फ्रेंड ऐसी नहीं है।
1: हाँ
0: अबे देखो फ्रेंड डे आवा रहा है ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: फ्रेंड डे पर हम तोरे लिए इतना बढ़िया गिफ्ट खरीदा है
1: और का
0: धरे हन हम।
1: हाँ हम रहबे नहीं किए।
0: हाँ हम वहाँ दिल्ली से लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: हाँ दिल्ली गए रहन ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हम दिल्ली से लेके आए हैं तोरे लिए।
1: अच्छा
0: तू का लाई हमरे लिए
1: हम हो लाइन हो।
0: हाँ तब वहाँ तो कहा
1: अब ये सब चरी मरी
0: जाती है।
1: हाँ
0: सब जो गणेशिक बहु कहा बहुत नीक जानत रहे।
1: हाँ
0: हाँ
1: तो नीक तो है वे
0: नीक नहीं है वे तोहरे लगे बैठी है तो तुहारस हमरे लगे बैठी है तो हमारस।
1: अरे बहनी इनके सबके बीच में नहीं पड़े लायक है।
0: यहाँ आए आए खाए खाए के जाती है और वहाँ पे बदनाम करती है कि उनके घरे पानी ना पीबो।
1: और बहनी कई बाजी हमरे घर आई है और कहीं की है जो है दुलारी तनी एक काम करबो हम कहने बताओ कहीं कहीं लस्सी पिया दो। और बहनी दही जमाए रहे जुड़ते दही कांच के वहाँ निकाल के और बढ़िया एक लस्सी बना एक पियान बड़का गिलास हुआ भर के कहीं छोटे हम ना दी हो।
0: गणेश जी बहू बोली
1: हाँ
0: हाँ तो
1: हाँ भौजी अब बढ़ के हाँ बढ़ के दी हो
0: चतुर हो खाए वाए में।
1: और कहती हम खाहुन का नहीं पाई थे
0: अब यहाँ
1: अरे मरी जाए अब उनका हम खाहिन का नहीं
0: बस कहीं जी। हाँ जब हम चले लगे तो कहीं इनकी ए चाची
1: हाँ
0: अस इधर का उधर ना करे हो तो से हाथ जोड़ी था।
1: अच्छा
0: हाँ
1: यह कहीं
0: यह कहीं कि तो से हाथ जोड़ी था इधर का उधर बात ना करे हो अपने तक रखे हो। हम कहा अच्छा
1: तो तू हमारे सखी बुराई करती हो।
0: हाँ।
1: और तुहार जो है बतिया हम यहाँ के बाहर न कर भाई।
0: हाँ तो तू ये ना पूछो कि हम का कहा
1: का कहूँ
0: हम कहा तू जानो और शर्माइन जाने
1: हाँ
0: और दुलारी जाने
1: हाँ
0: हम से कुछ ना लेख देख
1: ठीक करूँ ठीक हाँ। करूँ ठीक करूँ
0: कहीं के चले आए हम।
1: हाँ ठीक करूँ ये है चाही हो।
0: हाँ अब ज्यादा हम बोलते हैं बात
1: बाढ़ जात मार हुई जात
0: मार हुई जात यह सब हाँ। के चले आए हम जाने
1: ठीक करूँ। और अब जो है अब हम लोग उनसे ना बतुआवा जाए
0: ना बतुआए।
1: हाँ उनसे जो है उनके घरे न जावे उन्हें अपने घरे आवे न देवे
0: ना ही करो ये फ्रेंड का मतलब ना ही
1: हाँ, होता है।
0: तू हमार बचपने के फ्रेंड हो।
1: हाँ
0: तो हर बुरैया हम कैसे सुन ले?
1: हम कैसे सुन ले भाई? हमरे लगा करिए बतिया उनका हम झोटा नोच नोच मारब
0: मार दियो।
1: हाँ हम उनका खूब मारब।

0: यहाँ तो चाही यहाँ चाही दोनों जने यहाँ चाहा थी। अब देखो उनके लगे कोनो काम नहीं, हम लोगों के लगे 70 काम
1: है पूरा कहू बहनी।
0: तो वह तो अब छुछुआत ही इधर गई उधर गई, ऐसे बतवाई वो से बतवाई गलत बतवाई
1: सही बतवाई। क्यों पूछा खाइए नहीं है, क्यों पूछा था नीक मने उनका
0: नहीं पूछी है भाई। ये कर्म पे कौन पूछी, बैठी रहो अपने
2: अब एक तो
0: भैया। हाँ तो लखनऊआ तू गई रहो,
1: लखनऊआ गए ना तनी टहरे वहरे गए
0: लखनऊ टहरे गई रहो।
1: हाँ
0: हम तो समझे कौनो कामे से गई हुई
1: ना ही ऐसे टहरे वहरे
0: गए, दवाई से लोग जात हैं ज्यादा।
1: हाँ हाँ लड़के बता नहीं रहा हमारे दिक।
0: हाँ
1: वही दिखाए उसके बाद फिर कहीं चलो अम्मा घुमाई दे तू है। अच्छा। चलो घूमिन ले जब आए है कहाँ निकल पाए थे
0: नाई, नाई।
1: यही गाय गोरु भैंसियम रह कर रह जाये थे
0: नाई नहीं करे घूमी आयो।
1: अब पता तब तक हम जहिया हम जात रहे के एक दिन पहले आए हैं बाजारे मार्केट।
0: अच्छा
1: तो मार्केट आए तो सामान खरीदे न करे बाद फिर हम गए घरा।
0: हाँ बहुत है दिल्ली वगैरह मार्केट।
1: हाँ
0: अब एक ठो कार खड़ी रहा है बहुत नीक एकदम सुंदर कार।
1: हाँ
0: तो हम सोचा ये कार हम खरीद ले।
1: हाँ
0: तो उसे पूछा भैया एक करवा कितने का दियो।
1: हाँ
0: तो कही इसकी महतारी 8 लाख की है।
1: अरे मोर मैया
0: 8 लाख
1: 8 लाख कितना होएगा।
0: हम मनम सोचे कि हम तो घर कुरिया बेच दे गांव वाला।
1: हाँ
0: कहो हम ना जोर पाई 8 लाख
1: तो कौन गलिया रही वो रही थार
0: तो उन्हों रहा है। अब ना हम लोग कहाँ पढ़ा लिखा जाएगा।
1: हाँ
0: क्या लिखा है
1: हम जब लखनऊ
0: ना बस वो बड़ी एक जनी बतवात रही उनसे।
1: हाँ
0: कितने का है कितने का है।
1: हाँ
0: तो हमहू पूछ लिया हमारे लड़कवा कहा कि का करे का है तू कहे पूछ रही हो। हम कहे रुको ठाड़ रहो तू।
1: हाँ
0: तो हमसे हम पूछा भैया कतने के दे हो दे वाला रेट बताओ।
1: हाँ
0: तो कहे इसकी 8 लाख का।
1: बाप रे
0: 8 लाख। हाँ 8 लाख का दूंगा और कहूँ बतवात रहा है रोडे पड़ी तो हम जान नहीं पाएनी रोडे कैसे पड़ी।
1: हाँ।
0: ये सब हम नहीं जान पाए।
1: हाँ।
0: लेकिन बताए तो हम कहा भैया हमरे सुनियो कि नहीं सुनियो।
1: हाँ अपने तो
0: हाँ बताइए बताइए।
1: हाँ
0: तो हम कहा कि इका तू दे दो 3 लाख मा। हम कहा 3 लाख मा दे दो।
1: हाँ
0: तो वो हसा लाख तो हम कहा ये हसत का है हो तो कहीं की इतना मोल भाव नहीं होता है। तो हम कहा देखो हमरे गौआ मा
1: हाँ।
0: सड़िया बेचे आवत है।
1: हाँ
0: और 1.5 हजार की 2 हजार की बतावत
1: है। हाँ
0: और हम लोग
1: 300-400 हाँ पूरा कहू बहनी पूरा है
0: खरीदा जाते है कि नहीं
1: और का और दई जात है
0: और कितना हम लोग मोल भाव करके ले लेते थे।
1: हाँ
0: और वो कहे कि नहीं आतने नहीं मिले तो हम कहा कि चलो अच्छा नहीं 3 लाख में दे दो तो 4 लाख में दे दो लेकिन नहीं दहेज। और हमसे हुआ सबे कहा लगी।
1: हाँ
0: कि आप कैसे बोलती हैं आप यहाँ दिल्ली में आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता।
1: तो तू तो बोल ले थू अंग्रेजिया
0: बोल तो ले था देखो अपने गौआ मायन
1: अब। हाँ।
0: छोड़ आए हुआ दिल्ली वाली भाषा छोड़ आए
1: अंग्रेजी बोल रही
0: है दिक्कत होता है वो
1: हम नहीं जा पाई थे। हाँ। बहनी वहाँ
0: उनसे अब एक बिटिया मिली हुआ।
1: हाँ
0: तो हमका हुआ पहरावा नहीं समझ में आवत हो।
1: हाँ
0: अतना छोट छोट पहनी है।
1: हाँ
0: और जौन है अखिया झुकाए ले परत है।
1: हाँ का कहा जाए अपने अपने देश की बात है।
0: हाँ तब तो कैसे कही कि तुहार जौन है पहनावा हमें नाई नीक लागत है कहियो ना इस सके थे भाई।
1: हाँ हाँ
0: तुहार तो मर्जी तो नंगी घूमो हमें
1: हमसे का और का
0: है
1: वो अपने अपने मर्जी के सब है मालिक
0: तो है। कही इसकी आप की मतलब आपके कपड़ा अपड़ा पहन के तो आंटी आप बहुत अच्छी लगती हैं।
1: हाँ
0: कहाँ से आई हैं आप तो हम बता दिया हम कहा हम जिला गोड़ा से आए हैं।
1: हाँ
0: हम कहा
1: हाँ
0: कि जिला गोड़ा से आए हैं
1: और का
0: और वहाँ हमरे यहाँ ऐसे बढ़िया कपड़ा पहना जात
1: पहरा जात है। हाँ
0: अस ये नाई कहा कि अस जस तू पहने हो
1: अस नाई
0: पहने या नाई पहना जाता।
1: हाँ हमारे सबके संस्कृति सभ्यता है।
0: हाँ तो कह आइए आंटी इधर बैठी आकर के आप उन सबसे अलग है।
1: हाँ
0: से कहिस कि आप उन सबसे अलग है आप इधर आके बैठिए
1: तो कहीं नहीं दूर आके हम नवा फेल हन दस दसम फेल हो गए
0: तो पास हम कहा के यहाँ से तो हम पढ़ा लिखा मनाई हुई हम
1: हाँ, हाँ
0: तो यहाँ से हमारा कपड़ा पड़वा तो तनिक ठीक ठाक है
1: हाँ, पूरा ही
0: तो उन्हें समझ में आएगा
1: हाँ,
0: मनाई ऐसे नहीं
1: है
0: सब उनका समझ में आएगा
1: अंग्रेजी
0: बतुआ हाँ,
1: हाँ, तो अंग्रेजी हम का बोली रहा
0: बताएं कि हमारा हुआ फ्रेंड है
1: हाँ,
0: हाँ, तो का बताएं
1: अच्छा
0: डे रहा है ना फ्रेंड डे
1: अच्छा फ्रेंड डे रहा
0: हाँ, तो हाँ, हमरो एक फ्रेंड है
1: हाँ,
0: जो बचपने की है कहीं बचपने
1: हाँ,
0: क्या मतलब होता है
1: हाँ,
0: हम कहा बचपने का अंग्रेजी में बचपने कहा था
1: हाँ,
0: हाँ, बताई दिया उनका
1: हाँ,
0: हम कहे बचपने का है वो हमारे फ्रेंड है जो
1: हाँ,
0: वो बचपने का है
1: हाँ,
0: हाँ,
1: अच्छा
0: तो अच्छा
1: हाँ,
0: तो पूछेंगे ये बचपने का कैसा होता है
1: हाँ,
0: तो हम कहे पूछ लियो कौनो से
1: हाँ पूछ लिया हाँ, और कौन डर पड़ा है झूठ तोले बोले न है
0: तो वही हमें खरीदवाए दे सब तुम्हारे लिए एक ठो कहीं से अच्छा अपनी फ्रेंड के लिए
1: अच्छा वही खरीदवाई थी
0: वही खरीदवाए दिए
1: अच्छा
0: और हमें बोलो भाव नहीं करे दिए
1: हाँ
0: हाँ कहीं सिया ऐसे नहीं होता है आंटी जी
1: हाँ
0: हाँ तो हम कहा ठीक है नहीं होता तो हम तो हमारे फ्रेंड के लिए अपन दुलारी के लिए जितना महंगा हो हम खरीद ले
1: हाँ
0: तो हम कुछ नहीं कहें दुकानदरवा से वह जितने देत है ले लो बहनी ले लिया
1: अच्छा
0: अब घरे आइया सरप्राइज है
1: अच्छा
0: बताई सरप्राइज
1: हाँ सरप्राइज
0: तो का जब आइया हम तब दे
1: हाँ,
0: तब तक उस सरप्राइज होए
1: अच्छा
0: हाँ, तो
1: ये अंग्रेजी हुए सीखी हुए दिल्ली में
0: नहीं हमें आवत हो
1: ये आवत है परपराई
0: और का
1: अच्छा।
0: सीखा है ना ये सब इतना बोल रही थे
1: हाँ हमारा तो बहनी
0: कौनो हमें फैल नहीं कर सकत कौनो फैल नहीं कर सकत
1: हाँ लेकिन हमें तो बहनी दिल्ली आ जात बहुत डर लागत
0: नहीं अब तू हमारे संग चलो दिल्ली
1: हाँ
0: चला फूका
1: कहूँ कुछ बोली कहे की यही ये कौन मेरे बोलत थी तब का करवाए
0: नहीं तो जैसे हम बोला
1: हाँ
0: वैसे तू बोले हमारे पीछा पीछे बोले
1: हाँ हाँ हाँ तो अब की तू दिल्ली चले तो हम लाई चले
0: लाई चल
1: आए
0: हाँ बहुत नीक लागत है
1: हाँ
0: अरे दादा रे दादा दुलारी एक
1: हाँ,
0: बात जान लो
1: काओ
0: तू दिल्ली में ऐसे खड़ी रहा अपन का एकदम बचाए के
1: हाँ
0: एकदम हाँ तू का हिले डुले के ना जहाँ तू हिले डुलो
1: हाँ
0: तू फाट पड़ी हो हुए
1: साला क्या
0: फाट पड़ी हो तू
1: अरे
0: यकीन जानो
1: हाँ,
0: यकीन कही लो हमारी बात
1: तो ये कहे के हम फाट पड़ पाए
0: हाट इसे पढ़िया हो ना
1: हाँ
0: अतनी भीड़ है अतनी भीड़ है
1: घटिया
0: दे है तो का गिराए दे है गिरा मतलब कोशिश में लगे रही है कि तू का गिराए दे यही कह दे कि तू एकदम ठान रहे हो एकदम कस के
1: हाँ
0: हाँ जमीन में पैर गड़ाए के
1: गड़ाए के और हम ऐसे ठान रहे हमें जे गिराई तो के पकड़ टंगरिया चीर दे
0: तब आता ना भीड़ है हुआ तो तू का चले के नाई पढ़िए हुआ
1: हाँ
0: हाँ सब तू का धकिया धकिया चलाए दे
1: अरे तो चलक ना ये तो नीक रही कि भैया चला ना हाँ।
0: अपना पैरवा हिलावे के ना पड़ी
1: हाँ
0: वही सब तू का धकिया के बढ़िया कर दे सब बढ़िया है
1: बहुत बढ़िया भैया बात बताओ
0: मजा आवत हो
1: बहुत नीक बात बताओ क्या है बजरिया में निकला चलाऊ ना
0: हम नहीं चलक पड़ी
1: बस ऐसे जमीनियम ऐसे
0: हम तो ठाड़ हो जा हम ठाड़ रहे
1: हाँ
0: और एक दुकानिया से पचई दुकानिया पहुंच गए हम कहे
1: अरे मुझे हम
0: कहे तो हमें चलक नहीं पड़ा ये सब धकिया के हमका दूसरी दुकान पहुंचाए दिन
1: ये तो बड़ा नीक काम है
0: और सुनो का वो जगह का नाम बड़ा नीक हो चांदनी चौक उका कहा था चांदनी चौक
1: ओका चांदनी चौक कहा
0: हाँ हुआ है बस धकिया है दुकान एक दुकान से दूसरे दुकान
1: तो हुआ बहनी ये का बिकात का है हुआ
0: अरे हुआ बड़ा बड़ा लहंगा बिकात है
1: हाँ
0: सड़िया बिकात है और ये गहना गुड़िया बिकात है
1: अच्छा
0: अब बड़ा बड़ा मेहरारू खड़ी रहा थे लहंगा पहने और सड़िया पहने एकदम शीशा का दर बंद कर दिया जाता है उनका
1: तो मर नहीं जाती
0: नहीं हो सब एकदम बढ़िया मेकअप वेकअप करके खड़ी रहा थी
1: अच्छा
0: मेकअप
1: सिसवा में हाँ
0: सिसवा के अंदर कह देते ना उनका कोनो छू ही ना ले
1: तो उनका सांस नहीं फूलत है
0: कुछ नहीं होता उन्हें
1: ये तो चलो हमू लोग बहनी सज के ठाड़ हो जावा चाहिए।
0: बड़ा नीक लागत।
1: हाँ बहनी मजा आ जाए।
0: भिड़िया होत है तो का,
1: हाँ
0: लेकिन नीक लागत है।
1: तब अब की हमका लेके चलो तो हम उनसे कहबे कि
0: लाओ खाए वाला बड़ा सामान बिका।
1: हाँ।
0: सड़किया पर एक से एक खाए वाला सामान बिकात है।
1: अब काव काव रहा थे खाए वाला।
0: खाए वाला बहुत फल फ्रूट रहा है तमाम। कहूँ डोसा बनावत है।
1: हाँ।
0: कहूँ वो का कहते फूला फूला का कहते है भटूरा
1: भटूरा
0: छोला बनावत है भटूरा।
1: भाई हमें वो बहुत निक लागत है डोसावा।
0: हाँ भाई डोसावा डोसावा भर के एकदम तुमका बढ़िया एकदम बड़ा एक बना के दे।
1: हाँ, हाँ। उकरे साथे वहाँ दे हैं
0: चटनियों दे हैं
1: चटनियाँ
0: चटनियों दे हैं उनके साथ
1: उकरे साथे नारियल के चटनी संभारा वा।
0: हाँ वहाँ तरकारियों देते हैं उनके साथ।
1: अच्छा हाँ तब हमका ले चलो तब हम दिल्ली रहे तो हम वहाँ दो तीन दिन खा।
0: अरे दिल्ली में बड़ा मजा आवत है।
1: हाँ
0: तो रहे ना चार पांच लोग रोजे हुए रहा है
1: तब वहाँ कोई दिल्ली में रहा था कि वो यहाँ रहू होटलिया
0: नहीं को एक जने है नहीं उनके घरे रह।
1: अच्छा
0: हाँ होटलिया में ना जाइबे हो।
1: हाँ
0: अब बड़ा बड़ा होटल हुए हुआ हमारा तो ससिया फूले लगा अतना। हाँ। ऊंचा ऊंचा के ऐसे गर्दनिया उठाए के ऐसे तुम देख नहीं सकत।
1: अच्छा
0: अतना ऊंचा ऊंचा
1: बिल्डिंग या।
0: हाँ तो हर गर्दनिया गर्द होए लगी।
1: अरे मुरी मैया रे मैया
0: वहाँ बड़ा मनाई जाए सकत है।
1: हाँ
0: तू
1: ऐसे डखनवा पकड़ के चला गयी है।
0: हाँ
1: उड़े वाले से उड़े वाले।
0: हाँ हाँ बहुत से जात है लेकिन हम तो टरनिया से कह रहे हैं बहुत बढ़िया लागत है।
1: टरनिया से
0: टरनिया ठंडी टरनिया रहा था वो
1: टरनिया ठंड रहा थी।
0: हाँ एकदम ठंडी टरनिया रहा तो वही के अंदर अपना भैया बैठा रहा और लेटे हो जाओ
1: तो अमन बर्फ भरे रहा थे का
0: नहीं ऐसे बहुत बढ़िया लग रहा था वो बट काहे ठंडा रखा था तो बर्फ बर्फ कौन भरे रहा तो
1: भरे रहा तो यहाँ
0: ठंडा टरनिया
1: ठंडा पनिया भर लेते
0: हैं। हम लोग कानपुर जब एक बार गवा गया रहा तो कतनी गर्मी रहा
1: बहुत गर्मी। हाँ याद आवत है।
0: अब की बात टरनिया अतना ठंडा अतना ठंडा हमें तो लागे कि रजैया वजैया मिल जाए तो
1: मैया यही यही गर्मिया माँ।
0: हाँ यही गर्मिया
1: है बनी तो हम क्या ले चलो बर्फवा वाले ट्रेन माँ
0: उनका नाम देखो कहा एसी ट्रेन है एसी ट्रेन
1: एसी ट्रेन।
0: हाँ एसी ट्रेन।
1: अच्छा एसी ट्रेन में गयु रहा।
0: हाँ वहाँ
1: हाँ बर्फ वाले ट्रेन में
0: बहुत नीक लागत।
1: अच्छा तो हम हूँ हम का ले चलो तो हम हो गए हमें बर्फ वाले में ले चलो।
0: हाँ ठंडी टरनिया ले चलो।
1: हाँ
0: बैठा जाए एकदम बढ़िया बाटी चोखा बना के ले चला जाए।
1: हाँ
0: और रसेदार तरकारी रख ले।
1: हाँ
0: अब हुए बैठ के खा
1: खावा
0: चापा
1: सुनो प्याज धैलियो तनी प्याज। हाँ,
0: प्याज रख ले।
1: हाँ प्याजवा रही तो तनी
0: पूरी तैयारी से चला जाए दुलारी।
1: हाँ खाना के साथ प्याजवा रही तो तनी चुरूर मुरूर रह जाये
0: तो ये बताओ तो तू ये रही हो तू कब आई हो नखलऊ से।
1: हम बहनी आए है 16 दिन रहे हम हुआ।
0: अच्छा 16 दिन रहे।
1: हाँ।
0: तो 5 दिन में लौटी
1: 16 दिन रहे खूब टहरन खूब खायन दुलवायन तब आयन।
0: तो अब सुना है कि हिया जो है गौआ में करस करस का कहा जाता है वो कौन है बाबा। अरे खाटू श्याम बाबा का कीर्तन भवा रहा है।
1: हाँ खाटू श्याम बाबा की कीर्तन एक जनी कराई ना हुए मीबिया के निचवा जा रहा था नहीं दुबाइन।
0: हाँ,
1: पातर पातर ही जे।
0: हाँ, तो वह तो कहा कि कीर्तनवा भा
1: वो है कराए रही कीर्तनवा
0: तो कुछ बढ़िया पार्टी वार्टी आई हुई है यार।
1: हाँ बहिरे की पार्टी आई रहा ओ महान मनई सब गावत रहे।
0: अच्छा
1: किसन
0: अच्छा।
1: भगवान की गनवा।
0: अच्छा
1: एक मिला ढोलिया बजावत रहा।
0: हाँ तो हम आओ गए ना दिल्ली में।
1: हाँ
0: तो दिल्ली में एक जनिक घरे में यहाँ एक कीर्तन भा रहा है।
1: हाँ
0: तो वो ऐसे कीर्तन करें तो हुआ एक मेहरारू रहा है बहुत नेक गाइस गाना।
1: हाँ
0: तो हम हूँ या आद कर लिया उनका
1: आद करी है
0: आद है हमें
1: तो आज गाय जा रहा हूँ
0: हम तो चलो सुनाई दे।
1: हाँ
0: दिल्ली गाना हो दिल्ली।
1: हाँ तो दिल्ली के हो तो हम ढोलिया बजाए दे और जो है गनवा सुनाई दो और ये चटपटाओ
0: का
1: ये बताओ ये लड़कवा बहुत मुरहा है देखा तू इशारा करत है हमका
0: का सिवा मुआ का है
3: हम का गए थे मैं हमें का बतावत हूं
1: ये कुछ देखा मटकावत है किया
3: हमें नाके नाक मां
1: देख लो
3: जी बतवा दी तो मैंने पंचायत चला थी हमें बतावत की सारा कर दिया
1: देख लो देख लो चटपटो देख लो
3: अरे काम करो चाची नाके नाक मां बताओ ठीक है जाए जो
1: देख लो अच्छा चलो अब
3: जाए थे मां भाई बहन
0: हां जाओ जाओ जाओ तू जाओ हम मिठाई लाए हैं तोहरे खातिर
1: हां
0: तो ब्रेक ले ली
1: हां
0: और ब्रेक लेके मिठाई खा लो तनिक
1: गनवा एक ठो गाय लियो
0: हां नहीं
1: हां
0: पहले मिठाईया खा लो मुंह मिठुआ खा लियो तनिक और का
1: अच्छा अच्छा लो पहले खा ली भैया
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा क्या करें
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल गुर्दे दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज
7: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO INO वेंटिलेटर फोटोथेरेपी डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है
6: विजिट करें ऑल्टस किप्स IIM रोड लखनऊ संपर्क करें 0522-2711-827
8: डिलीशियस
9: है ना लेट्स डाइन कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट
8: और क्या क्या है खास
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन लाइव बारबेक मॉकटेल बार आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक
8: अब चिल करेगा शहर खुशियों की आ गई लहर खाना स्वादिष्ट हर पहर कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45
10: सिर में लगातार दर्द चक्कर आना याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें
11: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर जहां दिमाग नस रीढ़ माइग्रेन कमर दर्द लकवा ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर अभी कॉल करें 9838-288-386
10: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा
12: इलाज होगा बेहतर खुशहाल होगी जिंदगी
13: शर्मा जी आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है अरे भाई सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है
14: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है
13: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है
14: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जहाँ योग ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं
13: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी
14: बिल्कुल इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतुराला रोड गोंडा आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए कॉल करें 888-100-9400
15: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ कोई आइडिया है
16: अरे हाँ मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है
15: सच में क्या खास है वहाँ
16: बहुत कुछ है वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है
15: अच्छा डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था
16: सब कुछ टॉप क्लास था फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो सब संभाल लेंगे
15: और फोटोग्राफी वगैरह
16: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है और हाँ मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है
15: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है लोकेशन कहाँ है
16: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949 बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा
15: वाह तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी
17: अरे सुना
18: क्या?
17: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
18: वाओ!
17: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: तो कस रही मिठाई?
2: मिठाई तो बड़ा नीक लाग रहा, दिल्ली में लाग रहा।
1: हाँ, ये दिल्ली की मिठाई हो।
2: तो ये मिठाई पे का चढ़ा रहा?
1: ये वो चमकीला चढ़ाए दिन।
2: अच्छा,
1: हाँ, वो ऐसे चमकीला चढ़ाए चढ़ाए बेचत है।
2: यही मिठाई का कहा जाता, चमचम।
1: अब ये नहीं बताए पे हमका का पता ही का है। चमकीला लगाए दी ना कोनो है मिठाई वह तो हो।
2: हाँ, बड़ा नीक रहा।
1: हाँ, नीक तो लागत है भाई, बहुत महंग रहा है।
2: हाँ,
1: तो वह जिनके घरे गए रहन,
2: हाँ,
1: वो चलत समय कहीं के लड़कों के लिए लिए जाओ तो हम ले आए। मना नहीं किया, इतना सुंदर देख के मिठा हुआ।
2: हाँ, हाँ,
1: हम कहा चलो दुलारी खवावा जाए और सबका खवा दे, पानी पियाई दे।
2: तो गौनैया गाँव जो हुआ बतावत थी।
1: हाँ, हुआ एक जनी बड़ा नीक गायन रहा है, हमें आद है, चलो हम सुनाई दे थे।
2: हाँ,
1: और तुहु पुरवाई लियो संघ।
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ।

0: फटो मैंने कहा था तलिया पीट दे
1: बजाए दियो तू तो
0: बहुत नीक सी क्यों बनी
1: सब नीक नीक गावत ही हम रहिया तो सब फूहड़ बसी है
0: हाँ,
1: उनका उत्ते नाई आई जई है बस तनिक बहुत ताली ऐसे से ठोक दे और कुछ गौनैया उत्ते नाई
0: ना गौनैया आवे और ना पुरवावे कावे उनका पंचायत
1: रही है हां पंचायत करी है पीछे बैठ के तो यहाँ सब तो सुधारे है इनका सबका
0: अरे इन्हें सब
1: हाँ जाओ दिल्ली लिप देखो कतने मन से गावत ही सब तने का हम गाय दे हम एक सुनाए रहा ना हुआ भजन
0: अच्छा
1: वही से सब कहे लगी बहन जी आप तो बहुत नेक गावत हो
0: हाँ,
1: हाँ। तो हम बहुत खुश भाई हम कहा कि हमार दुलरिया हमरे संग नाई है तहिया हम लोग छाई जाते
0: मजा आ जात हो
1: लेकिन सब बड़ा नेक गावत ही हुआ ये बात तो माने पड़ी
0: तो पेन और डियरी नहीं लगी उरा लिख लेती हूँ
1: नहीं हमें नहीं मालूम रहा कि वही कीर्तन इर्तन करी है बुलाए लेकिन कही ना कि हमारे घरे कीर्तन है
0: हाँ।
1: तो हम कहा कि चलो भाई
0: और बहनी सहरिया मैया कीर्तन होत है और देखो हम नखलऊ जब गए नहा तो मंगर परा रहा मंगर
1: अच्छा
0: हाँ मंगरवा परा नहीं रहा दो तीन ठो
1: हाँ हाँ मंगर तो परे रहा
0: तो बड़ा मंगल चलते रहा मलमसवा लाग रहा
1: हाँ
0: अरे बहनी जोन भंडारा जोन भंडारा
1: अच्छा
0: ना अरे
1: और अपने गवक निया है
0: हाँ जगह जगह जैसे तू कर रहे हो बहनी
1: अच्छा अच्छा वैसे
0: हाँ पूड़ी रहा तरकारी चना कह रहा और नुक्ती रहा और सलाद रहा
1: अच्छा
0: अचरवा रहा
1: तब तो बहुत नीक रहा है सब
0: खूब खाए हम एको रोज हम लोग बनाए नहीं एक्टियम वहाँ
1: हाँ
0: भंडारा की है एक्टियम
1: तो बनावे तो ना चाहिए जब भंडारा हो
0: हाँ।
1: तो हम तो कहते घर में कौन जरूरी है बनावे
0: कौनो जरूरी नहीं है
1: वही खाए अपन कचर के
0: वही खाए एक दिन हुआ खाए सवेरे जून और संजक जून हुआ खाए दूसरे जगह
1: अच्छा
0: अब खूब बहनी खाए पूड़ी पाँच पाँच छह छह पूड़ी मोट मोट पुड़िया रहा थी
1: अच्छा दिल्ली एक मंगर हमहूक परा रहा है
0: हाँ।
1: लेकिन हुआ जौन है बहुत थोर थोर दिया जात है प्रसाद
0: अच्छा।
1: तन छोट छोट जौन है दुनैया माँ दुई दुई पूड़ी तनी हलवा धर दे है तनी चना धर दे है ऐसे तनिक तनिक
0: हाँ
1: ज्यादा नहीं हुआ पर
0: अच्छा हुआ नखलऊ मरा कि खाओ
1: हाँ, नहीं दिल्ली तो मंदिर मंदिर पर तनी बहुत दिखा है
0: हाँ।
1: हुआ ना इतना भंडारा कोई खवा अब कोई पर छुट्टिया नहीं है
0: हाँ।
1: क्या खवाई के का
0: पूरे कहू फुर्सत हाँ। तो हुआ है
1: फुर्सत नहीं है कोई बनावे करे के
0: हाँ।
1: खवावे पियावे की
0: हाँ,
1: ये सब अपने गौवा में चला था ये हमार गोणा सबसे आगे हमार गोणा ये मामला बहुत बढ़िया है
0: हमार भाव भक्ति भजन
1: सहरिया में निकल भर जाओ तू अतना भंडारा मिली अतना भंडारा मिली कि का बताई तुक
0: मजा आई जाते और का
1: हाँ तो वह है कि हमरे गोड़म जौन भक्ति भावना है हमका तो कहूँ नजर नहीं आई
0: हाँ और जानियो भंडारवा जब खाए गए हुआ नखलऊ माँ तब भंडारवा खाए बहनी और 201 रुपया चढ़ाए दी
1: बढ़िया करे दान पुन तो करे चाहिए
0: सभी कहा है
1: कि भंडारा खाए के दान जरूर करो
0: हाँ, कि भंडारा हाँ। वैसे नहीं खाए के चाहिए
1: हाँ, चाहे
0: दान जरूर करो चाहे तू दस
1: रुपया डालो हाँ, और
0: हाँ, का? लेकिन दान जरूर कर ठंडवा कहाँ गवा ठंडवा बंद करे वाला
1: ठंड ज्यादा ठंडवा लगत है
0: हाँ बहनी अब हमारे ठंड लगत है
1: तो अच्छा मैं बंद करवाई थे देखो हम नहीं जानी थे ना
0: हाँ
1: ये हम सब नहीं जानी थे ये शिव मुआ जौन है चला गया है अब आवत हुई तो बंद कराए दे
0: अच्छा
1: हाँ तो ये बताओ
0: हाँ
1: तू का एक नई बात बताई दी हम
0: हाँ बताओ
1: तू कोई बतायो ना
0: ना बताए पूरे का किरिया खाए थे
1: अरे वो जो दुबे रहा है ना दुबे
0: हाँ।
1: जी
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो वो एक दिन उनकी बिटेवा जौन रहा है
0: हाँ
1: चली गई कहूँ
0: अच्छा
1: हाँ तो हम खेते गए रहन
0: हाँ।
1: तो हमसे पूछी चाची कहूँ हमार बिटेवा देखे हो
0: हाँ।
1: तो हम कहा कि देखा तो रहा है हम उनका देखा रहा है
0: हाँ।
1: लेकिन हमें का पता कहाँ जाती हमका देखा रहा है लेकिन हमें नया आदावत है कि केहर गई है पर देखा रहा है तो जाओ देखो जा करके कहूँ हो सकत है कि गणेशी बहू क्या बैठी हो
0: हाँ।
1: चाहे शर्माइन क्या कौनो क्या बैठी होई
0: दुबाइन क्या
1: तो कहीं कि हम तो ढूंढे जाई थे और चाची कौनो बताए ना हाँ तब तो देखो बिटिया बिटारो होए तो चिंता नहीं होते कि नहीं,
0: काहे नहीं होते, हाँ।
1: तो हमें तो चिंता भूल गई, तो हम पूछ दिया दो चार लोगन से,
0: हाँ।
1: कि देखे हो कहूँ दुबई इनकी बिटिया कहूँ देखे हो तू लोग, हम तो यहाँ ढूंढे के मारे पूछा,
0: हाँ।
1: और उसके बाद भाई वो फैल गया, पूरे गाँव फैल गई बात कि दुबई इनकी बिटिया भाग गई, दुबई इनकी बिटिया भाग गई, दुबई जी की बिटिया भाग गई, सब यहाँ चले। अब दुबई जौन रहा है कोई हमसे लड़े आए गई दुलारी,
0: काहे की कह दी सब
1: तो सबका काहे बताए दियो, हम कहे जस तोहार बिटिया बस हमरो बिटिया है,
0: हाँ।
1: है तू का चिंता भई रहा है तो हमसे पूछियो, तो हम तो चिंता भई,
0: हाँ।
1: तो हम दूसरे से पूछा,
0: हाँ।
1: है तो इमें बतावे वाली कौन सी बात है, कहीं पुलिस तक बात पहुंच गए, हम कह के पहुँचावा तू ही तो गई रहो बहनी, पुलिस तक तू ही तो पहुँच गये,
0: हाँ।
1: को देर जौन है सोच नहीं पायो कि हिया हुआ पहले देख ले ढूंढ ले,
0: हाँ, तब पुलिस है? के लगे जाए।
1: तब जाते के गवा पुलिस लगे, हम गए इनका, अब पुलिस के लगे गए तब पत्रकार लोग आए गए गुआ माँ
0: पत्रकार,
1: हाँ तू तो चली गई लखनऊआ, लेकिन ये सब भाई बड़ा परपंच भाईया
0: हमारे जाता है, हाँ।
1: तो पत्रकार लोग हमारे पास आए गए, हमारे मुँह खोस दिन मई के वा,
0: हाँ
1: हाँ, कहीं बताओ दुबे जी की बिटिया किधर गई है,
0: अरे मोरी माँ,
1: तो कह हाँ हमका बता दे, हमें का पता कहाँ गई है, अब हमें पता हो तब तो हम बता दी,
0: हाँ। हम कहना कि जाओ,
1: अब वो लोग चिल्लाए लगे वह पर,
0: हाँ।
1: माई के वहां अच्छा समय सुनत है,
0: हाँ। हाँ।
1: तब सब जगह फैल गई बात, अब उनका हमार जौन है 36 का आंकड़ा हुई का, हम ना बोला वो महरारू से भैया
0: हो जाई,
1: हाँ हम तो अपन बिटिया समझ के सबसे पूछ दिया,
0: हाँ।
1: तो हम बहुत बड़ा गुनाह किया दुलारी, अब ये गुनाह हमें कब्बो नहीं करेगा, कौनो बिटिया जाए बही जाए एहर जाए ओहर जाए कौनो के पचड़म हमें फंसे खाइये ना,
0: तो बिटिया आए कि ना आए,
1: आई गई गणेशी बहु छता बैठी रहा,
0: अरे मोरी माई,
1: अब वो है तो हम कहते रहा पहले ढूंढ लो एहर ओहर देख लो, तो कब पुलिस के लगे जाए की जरूरत नहीं रहा, और तू गये तो तुम हो गो,
0: तो पुलिस वा इनका का कही,
1: यहाँ से होता कि हम परपंची होए, हम परपंच करी तो होए, हम कोनो परपंच नहीं करी थे,
0: नहीं हमारे लोग कोनो परपंच नहीं,
1: हम तो गौवा सुधारक सोची थे,
0: और का
1: और सब हमारे ऊपर जोन है,
0: हमारे सब ने नीक नीक काम किन जात है, वहाँ तो सुधर जाए,
1: वहाँ होम करो हाथ जरे,
0: हाँ।
1: ये जमाना है होम करे भर का ना ही है आज,
0: हाँ
1: बहनी
0: जब
1: हमका
0: बहनी
1: हाथ जोड़ी थे तो जाओ अपने घर, नहीं हमारा दिमाग गरम हुई जाए, तुहार करनी हम ये बनाई दे,
0: जमाना बहुत खराब है, हाँ। कोई का
1: तब चली गई है अपन बिटिया संभारो,
0: हाँ।
1: कहे निकले देती है तो कब जब नाई विश्वास है
0: पूरा कहो बहन,
1: तब वही अब पूछे लागत है ना कि बचपन से आप जानती हैं उसको कैसा नेचर था, अब हमसे हम कहा नेचर हम कहा जानी कैसे रहा है,
0: हाँ करो हमारी बिटिया ना हम नहीं पैदा किए हैं,
1: और का
0: अब नेचर उनके मतारी बाप जाने,
1: तो यहाँ सब होत रहा गौवा में एकदम खोपड़ी हमार दग्गा,
0: हाँ
1: यहाँ सब हाँ परपंच में,
0: अच्छा देखो जब हम नखलऊ गए तो एक जनी मेम साहब रहे, मेम साहब
1: मेम रहा है,
0: हाँ, हाँ। एक जनी मेम रहा है, वे मेम एक बहुत नीक गाना गाए ना,
1: अच्छा
0: हाँ हमरे
1: तो हुआ मैं एंजॉय करे हो,
0: एंजॉय किया ने एंजॉय, अब देखो हम तो बहनी मुँह सीखे उनके घर वो रहा बिया,
1: अच्छा
0: तब वह नक्ता वक्ता गावत रही,
1: हाँ।
0: तो हम बहनी नक्ता सीखे
1: तो गाय दो तो सुनाई दो,
0: पुरवाई ली हो,
1: हाँ पुरवाई ली,

0: आ बिचवा में बिसर जाय छ हो कहू कहू
1: भैया देखो ये गाना गाय दियो है ये गाना भगवान जी तक पहुंच जाए हाँ। अपनिया बरसाए दे बहुत तपत हो भैया बहुत तपत है। हो कौन मतलब जन्म जन्म की दुश्मनी निकारे पड़े हैं सूरज भगवान।
0: अरे तब अब का हाँ, करेंगे
1: समझ में ना आओ तो इतना गुस्सा काहे दिखाए हैं
0: हाँ, हाँ
1: एकदम गुस्सान पड़े हैं एकदम तपिस फैलाए पड़े हैं लड़के बच्चा सब परेशान है, सबसे ज्यादा तो जनावर परेशान
0: जनावर करिहा एक कुकुरा दनिया के नादम पानी भरा वही बैठ रहा है
1: वो का करे भाई इतनी गर्मी
0: है
1: इतना
0: गर्म की
1: हम तो यहाँ कही थे सब जौन हमार दोस्त लोग हमार सहेली लोग सुनत हुए जहाँ जहाँ से वही बस यहाँ करें कि बाहर जौन है नादा आदम पनिया भर दिया करो और तनी खाए पिए वाला जौन हो वो सब रोटी वोटी हो चारा वारा हो जो बेकार चीज हो वो गैया और जानवर के हाँ जानवर के लिए दे दो रोटिया दे दिया करो
0: पानी
1: दे दो
0: चाउर फेंक दो चिड़िया
1: सुनो हाँ चिड़िया चुग्गा सुग्गा ये सब बहुत बेहाल
0: है
1: और तुका बताई एक ठो सुग्गा बैठा हुई पेड़वा डिया पर कहूँ घोसला उसला बनाए रहा अतनी गर्मी में एक ठो लेदा रहा है
0: हाँ।
1: और लेदा गिरा के पट से तो जुड़ते मरी का
0: अरे राम
1: और चाऊ चाऊ चाऊ चाऊ चाऊ चाऊ दोनों का महतारी और बाप चौने
0: सब चिल्लाए
1: चिल्लाए
0: हाँ बताओ
1: तब यहाँ सब होत है भाई इतनी गर्मी ना करो सूरज देवता मान जाओ भाई बरसाए दो पनिया
0: बहनी अब देखो एक ठो गौनैया और हमारे चेतावत है मौसम देख कर
1: अच्छा
0: गाय दो एक करी
1: गाय दो गाय दो।

0: पिया काहे बिनिया डुलाई दे,
1: हमरे सबके पिया तो नहीं है डुलाई है, काहे डुलाई दे भाई।
0: कोई उल्टे कहिए हमरे हां की देओ बेना, बहुत गरम गरमस लागत है।
1: अब वो हमारे हाँ की दिए हैं भला, छोट हो जाई हैं
0: तो।
1: हम समय चाहे दिन रात बैठ के हाँ की
0: लेकिन चलो आज आज इतने दिन बाद हम लोग मिला गा है,
1: आज बड़े दिन बाद मिला गा है।
0: हमारे जीरा में एकदम सब भरा रहा है
1: हाँ।
0: अब जाए के तनिक अब ठीक भा
1: हाँ, गमक सब बतिया हाँ, रहा
0: बोझ रहा है तो उन कम होगा। अब लागत है की हम ठिकाए गए बीमरिया मार लाग रहा है तो उसे कहा बिना जो ना हमरे बीमारी लग जाते।
1: सही कहा तू, पूरे बतिया है यह नाते कि हम हूँ जब कोनो बतिया जानी थे तो हमारी हमारे पेटवा पिराए लागत है।
0: तो चलो भाई बहुत टाइम हुईगा है घरे हाँ। जाए खाए अब नाश्ता पानी सब कुल बनावे खाए
1: बनावे खाए बड़ा हाँ। काम बड़ा
0: बहुत काम है। बड़ा है और जो हमरे श्रोता लोग बैठे हैं सुनत हुई है
1: हाँ।
0: उनसे राम राम कहेगा टाइम आएगा है
1: हाँ हाँ।
0: तो हम लोग अब चली थे राम राम
1: राम राम भैया,
0: यह गुजारिश करी थे कि आप लोग जो है रेडियो ज्ञान स्त्री 89.6 FM
1: ये है गोंडा शहर की धड़कन,
0: हमेशा सुनते रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए।
1: राधे राधे
0: राधे राधे।

0: मोहब्बत के इस सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जहां चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार।

के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

उसके लफड़े लफड़े झगड़े

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार? मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

बोला दे, माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी।

खुशी पर लौट के आए।

प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहाँ चारिया

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश लीक 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। तो भाई इस ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट में आज हमने थीम चुनी है फ्रेंडशिप। और आपको बताएं, आप सभी को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके पश्चात आज एक ऐसा रिश्ता है जिसका दिवस है, वो है फादर्स डे अर्थात पितृ दिवस। और तीसरी जो सबसे अहम बात जो हमको और आपको जोड़ती है वो है संगीत। आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। तो इन तीनों की आपको शुभकामनाएं, और इन तीनों को हम अपना मित्र बना कर रखें, योग को, पिता को और संगीत को। सोचिए अगर ये तीनों हमारे मित्र हों तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। एक पिता है जिससे हम खुल करके अपनी सारी बातों को रख देते हैं, और कहा भी जाता है कि पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता ही से अपने सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जी हाँ, और संगीत, आहा, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सात सुर होते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन जीवन में एक प्यार का रस और होता है। सात की जगह हो सकता है आठ भी हो, क्या आपने कभी सुना आठवें सुर के बारे में? अगर भाई सुना हो तो बताइए कि वो आठवां सुर कौन सा है। जी हाँ, बड़े बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, किसी गीत में आया है कि भाई सात सुर के बाद आठवां सुर, ऐसे पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार, तो एक मौसम वहाँ भी था उस गीत में। तो क्या ऐसा कुछ सुरों के साथ भी है क्या? जी हाँ, जरूर गेस कीजिए, हम प्रतीक्षा में हैं। जी बिल्कुल, जल्दी बताइए। और हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं गीत की ओर, और गीत के बाद जी हमारे साथ दीपांशु तिवारी जी हैं। गुड इवनिंग सर जी, को शुभ संध्या, आपको भी बहुत बहुत खूब सांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सविता शास्त्री जी हैं, शुभ संध्या सर जी, चरण स्पर्श करते हैं सविता जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। आइए अब आपको ले चलते हैं गीत की ओर, और इसके बाद आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत दोस्ती के लिए हम सभी के नाम।

कहा जाता है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ दिन खास होते हैं और वो खास होते ही चले जाते हैं, मतलब फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज पितृ दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। और आप लोगों के लिए स्टूडियो में एक सरप्राइज भी है, लेकिन फिलहाल चूंकि योग के बारे में बात की तो पिता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है। पिता पालन है।

0: है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। जी हाँ, इस दुनिया में बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके पास माता पिता का साया होता है। और आज हमारी इस स्टूडियो की जो धूल है वो पावन हो गई, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता, हम सभी जिनसे परिचित हैं, जिनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलता है, वो आज गोंडा के इस FM में, रेडियो गणस्लेट 9.6 FM में हम सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपसे उनकी बातचीत कराते हैं। नाम आप बताइएगा कि उनका नाम क्या है। मैं उनसे बातचीत करूंगा और देखना चाहूंगा कि भाई हमारे श्रोता इस आवाज़ को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। जी हाँ, तो दादा
1: जी चरण स्पर्श। अरे नमस्कार मनु जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, और हमारा शुभकामनाएं हैं ज्ञानस्थली के जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है हमें कार्यक्रम।
0: हाँ नहीं, मतलब आप गोरखपुर से यहाँ तक आए।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि
1: अरे मुझे यहाँ पहुँच के आपसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता हो रही है।
0: नहीं लेकिन मतलब हम तो ये मानते हैं कि आज हमारी जो है स्टूडियो की जो भूमि है वो आपके चरण पड़ने से एकदम पावन सी हो गई है।
1: अरे ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद वही अनुभूति हुई जो आप बोल रहे हैं।
0: क्या
1: वो स्वयं महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ पहुँचने पे, जो आ जाने के बाद जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, पर मैं यहाँ आके धन्य हो गया ये सब चीज़ों से मिल के।
0: वास्तव में मतलब आपका गीत अगर कभी नहीं होता है तो लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं और पूछते हैं कि क्या आज उन्होंने गाना नहीं गाया। तो फिलहाल तो हमारे दर्द कुमार जी अलग हैं, लेकिन हमने जब आपको पहली बार सुना था तो आपने शुरुआत में लगातार इतने रफ़ी साहब के रोमांटिक गीत सुनाए कि मुझे लगा कि आपको रोमांटिक कुमार बोला जाए।
1: धन्यवाद।
0: और आपको देखकर लगता भी है कुछ कुछ दादा कि आप रोमांटिक टाइप के व्यक्ति हैं।
1: अच्छा जी।
0: तो क्या वास्तव में अपने जीवन में आप बहुत गंभीर हैं या फिर ऐसे ही जीवन को जीते हैं जिसमें खुशहाली हो, हरियाली हो, मस्ती हो, प्रसन्नता हो?
1: देखिए जीवन जो है ना वो ऐसा रंग ही है कि उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, लेकिन आदमी को जीवन भर कभी, देखिए दुख तो आते रहते हैं लेकिन प्रसन्नता तो क्षणिक होते हैं, लेकिन आदमी को प्रसन्न ही रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपकी चीज़ें आपके साथ रह जाती हैं।
0: अच्छा, मतलब और जो आपका अनुभव है अपना जीवन का, अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन को परिभाषित कीजिए, तो आप चूंकि बहुत योग्य हैं, व्यक्ति हैं, तो आपके हिसाब से जीवन क्या है?
1: भाई हमारे हिसाब से जीवन है कि बस सबके साथ प्रेम से रहो, प्रेम करो, क्योंकि ये शरीर जो है बस जब तक आप हैं तब तक ये आपके नाम की पहचान है, बाकी तो सो कुछ नहीं है। फिर तो इससे बढ़िया है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सबके साथ हंस खुशी और बढ़िया ढंग से अपना जीवन व्यापन करें।
0: अच्छा, और आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है,
1: तो अगर आप कहेंगे तो
0: नहीं, तो संगीत को लेकर आपका क्या?
1: भाई संगीत तो समझिए कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सबसे बड़ा, आप समझ लीजिए कि जीने की चाह है, कि संगीत से बड़ी कोई चीज़ें आप पूजा बोल सकते हैं उससे बड़ा भी नहीं।
0: क्या बात है, मतलब वास्तव में संगीत ही आराधना है।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: और इसीलिए शायद कहा जाता था कि लता मंगेशकर जी को कि वो साक्षात उनके गले में माँ शारदे विराजमान थी।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: और रफ़ी साहब के गले को कायनाती गला कहा जाता था।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो और आप जो है रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और कुछ हद तक आप उनको पकड़ भी ले जाते हैं।
1: कोशिश करता हूँ, बाकी देखें।
0: नहीं तो फिर भाई आज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आज विश्व संगीत दिवस है और संगीत के बहुत बड़े पुरोधा, बहुत अच्छे जानकार, बहुत अच्छे गाने वाले शख्स हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हम उन्हीं की आवाज़ में आज संगीत सुनेंगे और देखेंगे वास्तव में गीत और संगीत का क्या संयोजन होता है। जी हाँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भाई आज कई बार तो आपने हमको जो है वो फ़ोन पर सुनाया है, आज हम चाहते हैं कि आप लाइव हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: धन्यवाद, मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ रफ़ी साहब का ये गाना।
0: जी।
1: और आज गम उठाने के लिए।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है।
1: तो मैं शुरू करूँ?
0: जी जी। आवाज़ सुनकर आप श्रोता लोग बताइएगा कि ये आवाज़ किसकी है।

मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लैप तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने

0: क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है, क्या उठाया है। लगता ही नहीं है कि मतलब इस समय के रफी साहब आपको हम कह दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
0: अरे
1: सबको।
0: क्या बात है दादा, मतलब इतना, और
1: मैं
0: वाह,
1: कोशिश किया हूँ।
0: अरे क्या बात है भाई, इतने लोगों के संदेश आ चुके कि जी हाँ दादा को मेरा नमस्कार। जी हाँ, लवली सिंह जी आपको भाई, ममता कसोदन जी, वाह क्या आवाज़ है, वेरी नाइस, क्या बात है। जी हाँ, या बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हमारे दादा हैं अनिल बनर्जी जी, और हम सभी के लिए तो भाई प्रेरणा स्रोत हैं। और जी हाँ, शुभ मुशर्रे में लिखा है भाई, बहुत खूब, क्या
1: भाई
0: बात
1: सभी
0: है।
1: लोगों को भाई मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नहीं, मतलब आज वास्तव में ये स्टूडियो, मतलब क्या बात है, मतलब आई एम सो लकी टू हैव अ एल्डर ब्रदर लाइक यू। आप जैसे बड़े भाई को पकड़ के हमको लगता है कि आज जिंदगी ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपको दे दिया, अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं
1: अरे
0: रहेगी।
1: मुझे आप जैसा भाई मिलके तो मैं अपना दिल मेरा बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है।
0: अरे नहीं, मतलब हम सही गोरखपुर से यहाँ तक आना, और वो भी इस भीषण गर्मी में, और बाइक से आना, मतलब क्या क्या कहा जाएगा इसको, ये संगीत के प्रति दीवानगी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: क्या बात है। तो दादा, एक गीत तो हो चुका है, लेकिन हमको लगता है कि एक गीत से काम चलने वाला है नहीं।
1: अच्छा जी
0: अगर आप पानी पीना चाहें तो
1: बिल्कुल पानी तो मैं पीऊंगा ही सर।
0: जी। और हमारे साथ भाई लवली सिंह जी हैं, मनु सर जी गुड इवनिंग जी। हाँ, और मेरे दादा से कहाँ आ पाए हैं, बाहर संगीत में नया उभार है, क्या बात है भाई। जी हाँ, क्या बात है, और भगत सिंह की फोटो भी लगा रखी है उन्होंने, वाह क्या बात है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे जाते हैं, और अभी जनाजे की ही बात। और अश्विन सर ने लिखा है लखनऊ से, क्या बात है अनिल सर, आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, क्या
1: बहुत बहुत
0: बात,
1: धन्यवाद भाई इनको भी हमारा।
0: क्या भाई, क्या महफिल लूट लिया आपने। जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी सुन सोच रहे हैं कि मतलब वास्तव में वो इस युग के रफी को सुन रहे हैं, क्या बात है, वाह। तो दादा फिर अगले गीत की तरफ बढ़ें,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगे दादा
1: अब आप बताएं या मैं थोड़ा सा देख ही लेता हूँ,
0: जी। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए।
1: थोड़ा
0: और
1: टाइम दें।
0: हाँ, मतलब वास्तव में होता है कि भाई वाह, इससे अच्छा संयोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और दादा हम सभी के साथ स्टूडियो में लाइव, कोई
1: मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: आहा क्या बात है। हमको लगता है आज ये देखिए, धर्म पत्नी जी श्रीमती सविता शास्त्री, चरण स्पर्श है आपको, 100% गुलाब का फूल, और मतलब बहुत आइसक्रीम वगैरह सब भेज दिए हैं।
1: गला बैठ जाएगा।
0: अरे गला बैठ जाएगा तो गुनगुना पानी देकर वो गले को खड़ा कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो स्टार्ट करें।
0: जी जी निसंदेह।

0: धन्यवाद सर।
1: क्या बात है भाई, मोहब्बत के सुहाने दिन। वास्तव में दिन मोहब्बत के सुहाने होते ही हैं, मतलब मोहब्बत को लेकर भी आपका कुछ नज़रिया होगा ही होगा। और भाई लिखा है भाई अर्शु मिश्रा ने कि अनिल जी बहुत खूब, क्या बात है। आइए भाई, जी हाँ, तो थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार।

जी हाँ, कहा जाता है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसकुमार जी आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं भाई। और सविता जी ने तो भाई एकदम से आइसक्रीम भी भेज दी है, और क्या बात है भाई। और आवाज़ की तारीफ बहुत लोगों ने की भाई। राजेश सिंह जी जुड़ चुके हैं मालवीय नगर से, जी हाँ नमस्कार। और आशु मिश्रा जी ने जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब नाइस सॉन्ग, जाने वो कौन है, रफी साहब फिल्म भी गिरा जी। तो बात पिता पर हो गई, फादर्स डे है, लेकिन हमको लगता है कि बिना माता के अगर पिता है तो फिर वो अधूरा लगता है, माता पिता होना चाहिए। तो क्यों ना कुछ पंक्तियां माँ के नाम करने के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माँ क्या है, पिता क्या है, ये तो बताया। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। आप याद कीजिए, अगर हम अपने बचपन में जाएं और जब हम सभी छोटे थे तो स्तनपान करते थे माँ का। और देखिए, कभी छोटे बच्चे जो माँ स्तनपान कराती है अपने बच्चों को, तो बच्चे पैर चलाते हैं, चोट लगती है माँ को। और उस चोट को बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे बच्चे का पेट भर जाए, माँ उस अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करती। इसलिए किसी लेखक ने कहा था कि रस्किन बॉन्ड ने कहा था कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, शायद इसीलिए उसने माँ बनाई। लात खाकर भोजन दे देने की परंपरा या वो निष्ठा केवल माँ के ही अंदर होती है, शायद और किसी के भीतर नहीं होती है। इसीलिए हम लोग जब मनुष्य के रिश्तों की बात करते हैं तो चाचा चाची कहते हैं, मामा मामी कहते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा आता है जहाँ पर हम माता पिता कहते हैं। क्योंकि जो भगवान होते हैं उनमें राधा कृष्ण सिया राम कहा जाता है, तो जो आध्यात्मिक पारलौकिक नाम है उनमें स्त्री पहले है और पुरुष बाद में है। और जो इस धरती के रिश्ते हैं वहाँ पर पुरुष पहले है और स्त्री बाद में है। शायद इसीलिए कहा भी गया कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। वास्तव में धरती पर हमारे माता पिता हमारे लिए विधाता की ही पहचान होते हैं। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन में फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली में मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर चुंबन है, ममता की धारा है। माँ झुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कले। माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। तो मैं ये कविता की पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, और अब भाई वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी की प्रतीक्षा है आपको, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी जी, बताते हैं आप। जी हाँ, अजीब सी उप शामिल हो गई है रोज जीने में। अजीब सी उप शामिल हो गई है रोज़ जीने में। पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर। हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं।
उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। नंबर वही है आपका, दूरभाष क्रमांक 6393316429 6392 3364 हाँ, अब गीत बजेंगे, लेकिन वो बजेंगे जो आप चाहेंगे। और इस श्रृंखला में हमारे पास पहला गीत आया है आने से उसके आए बहार, और ये फरमाइश है आशु मिश्रा जी की। चलिए अब बढ़ते हैं फरमाइश की तरफ।

जी हाँ, तो आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत आने से उसके आए बहार। अब गीत बजेंगे लेकिन वो जो चाहेंगे आप, फिलहाल ये पहला गीत।

भाई क्या गीत चुना भाई सुरेंद्र यादव जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं राजू सलमानी साहब की तरफ, हमारे बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता, पुराने फिल्मों के धुरंधर। और आज गीत चुना है दगाबाज तोरी बतिया ना मानू रे, राजू सलमानी जी की एक तरह से।

जी हाँ, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश। जी हाँ, जहाँ हम सभी लोग समाये हुए हैं कायनात में, उनकी फरमाइश है च्यवनप्राश भाई। अब च्यवनप्राश गर्मी में तो नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, इसकी जगह कुल्फी होती कुछ और मज़ा आता, लेकिन फिलहाल आइए गर्मी में लेते हैं च्यवनप्राश का आनंद।

0: को गरम।
1: जी हाँ, इस गीत के बाद हम फरमाइश पूरी करेंगे शिव कुमार जी की, क्या तुम्हें पता है यह गुलशन
0: दोस्ती का यही राज है कि तेरे चुम्मे में।

जी हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बजाने वाले हैं, बहुत ही प्यारा गीत। अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे और हनुमान भक्त श्रोता के पास, श्री पवन मिश्रा जी। भाई बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक और बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी, और गीत भी उन्होंने आज भेज दिया है, पंगा ना ले मेरे नाल। जी हाँ, जो इनसे पंगा लेगा, जिम वालों से पंगा लेकर कोई कहाँ जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं लेगा।

जी हाँ, पंगा नहीं लेने का। और अब की बात चलते हैं भाई, श्री साजी की फरमाइश है, ओ साजन। और इसके पश्चात हमारे बहुत ही जानकार प्यारे और अच्छे श्रोता श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश है, मालवीय नगर से, जाने वो कौन है।

जी हाँ, और अब चलते हैं ये जानने कि जाने वो कौन है भाई। हाँ, श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश मालवीय नगर से जाने वो कौन है, और इसके बाद मुकेश जी की फरमाइश है ताल से ताल मिला।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

क्या बात है भाई, क्या गीत। नागेश्वर धाकड़ जी ने गीत चुना था उन्होंने ये तो सच है कि भगवान है। वाह, वास्तव में बहुत ही प्यारा गीत। और ये गीत जो आपने अभी सुना वो फरमाइश हरिलाल जी की थी, प्यार किया तो डरना क्या। और अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता मुमताज़ अंसारी जी की तरफ, और फरमाइश है मोहब्बत अब तजारत बन गई है।

सुना भाई मुमताज जी, आपने मोहब्बत अब तजारत बन गई है। अब चलते हैं चांदनी जी की तरफ और गीत है मेरी जिंदगी है तू।

जी हाँ, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया चांदनी जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता जो हमको सुनते हैं जी लखनऊ के, पहले क्या पड़ता है, बाराबंकी पड़ता है, वहाँ से सुनते हैं सारे लड़के करे तो करे शादी फिल्म का नाम इंसानियत। मोहम्मद मुशीफ जी की बहुत ही प्यारी फरमाइश है।

क्या गीत भाई चुना है मुशीफ जी ने, और नागेश्वर के लिखते हैं, सर जी फरमाइश मेरी नहीं थी, सुनना कोई और चाह रही थी, अवनी धाकर जी। हाँ तो भाई अवनी धाकर जी की फरमाइश पर हमने गीत बजाया था, ये तो सच है कि भगवान है। भाई अवनी धाकर जी आपको प्रणाम करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो आप सुन लीजिए, हमने आपका नाम ले लिया है अवनी धाकर जी। अब चलते हैं भाई नाजुक नाजुक हल्की फुल्की, और फरमाइश है अरमान जी की। भाई नागेश्वर जी हमने नाम ले लिया।

जी हाँ भाई, नाजुक नाजुक हल्की फुल्की बहुत ही प्यारा गीत। अब चलते हैं भाई हमारे बगल में ही रहने वाले श्रोता राकेश वर्मा जी हैं और गीत है शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था। जी हाँ, आगे आप

दिल टूट गया, वास्तव में शीशे का दिल लेकर अगर आप यहाँ हैं तो दिल तोड़ जाएगा। और चलते हैं भाई, संतोष जी की फरमाइश, बहुत ही प्यारी फरमाइश, ऐ यार सुन यादी तेरी। और आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे रवि जी की फरमाइश पर, दिल का भंवर करे पुकार। भगवान ने चाहा, आसमान वाले ने चाहा, तो अगले रविवार पुनः आपसे मुलाकात होगी गुना मैसेज मसाला में।

0: आग नफरत की हमारे शहर में लग न जाए, आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा।
6: यहाँ लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
16: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
17: मतलब?
16: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
18: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
19: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
20: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
21: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
20: सच में? क्या खास है वहाँ?
21: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
20: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
21: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
20: और फोटोग्राफी वगैरह?
21: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
20: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
21: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
20: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ। कार्यक्रम चल रहा है बाहर एक गजल, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। हमारे साथ भीम कुमार जी जुड़े हुए हैं, भीम कुमार गुजरात अंकलेश्वर शहर से। क्या बात है भाई, मुकेश यादव जी थैंक यू सर दिल से माई गजल प्ले करने के लिए। क्या बात है भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गीता बहन जी हैं, शुभ संध्या अजय सर प्रणाम करते हैं आपको। और मुकेश यादव ने कहा गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू भाई। कायनाथ जी हैं, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता, क्या पंक्ति चुनी आपने। और हैप्पी फादर्स डे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको भी मुकेश जी। और आप भी अपने पिताजी की कुछ सेवा वगैरह करें आज। और मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती है ये दुनिया की नज़रें, लेकिन पापा की दुआओं में असर बहुत है। क्या बात है, चलिए अभी पिता पर हम भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जो हमसे बन सकेगा। और आज जिनको हम लेकर आपके बीच आए हैं उनका नाम है शकील आज़मी। उन्होंने लिखा कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूं, कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूं, अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, मैं इसीलिए कोई और हूं। न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, मैं इसीलिए कोई और हूं। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी, मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी। मेरे हक में लोगों दुआ करो, अभी ठीक से मैं खिला नहीं। ये जो बोतलों में शराब है, ये जो बोतलों में शराब है, ये खराब थी ये खराब है, इसे छोड़ दे इसे तोड़ दे, ये किसी मरज की दवा नहीं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा संदेश देती हुई ये उनकी गज़ल। और अब आइए आपको ले चलते हैं। इंसान चाहता है कि हम किसी की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, लेकिन अभी कायनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। और इंसान जहाँ पर उम्मीद लगा लेता है कि यहाँ से मुझको मोहब्बत मिल जाएगी, सारे जहाँ से मिल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों। एक शेर है कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को चाहा और वही न मिला। तो होता है ज़िंदगी में। और आइए ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखते हैं। हम चाहते हैं कि किसी के लिए खास हो जाए, लेकिन कभी होता है जिनके आप खास बनना चाहते हैं अक्सर वही आपसे दूर हो जाते हैं। इस मौजू पर एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल मुझको याद आ रही है, आइए आपको सुनाते हैं वो प्यारी सी गज़ल। और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार, सुनते रहिए और रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत और इस्तकबाल। शकील आजमी साहब एक पुस्तक लिख चुके थे, उसकी टाइटल उन्होंने दी थी जंगल। मुल्क फिल्म के डायलॉग उन्होंने लिखे और बहुत आसान लफ्जियात में अपनी बात कह देने का हुनर उनके पास है। तो उन्होंने किताब लिखी और किताब का नाम जंगल रखा टाइटल। फिर पता नहीं क्या उनके मन में आया, उन्होंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया और जंगल की जगह अब उन्होंने उस पुस्तक का नाम रखा वनवास। जी हाँ, गीता श्रीवास्तव ने लिखा है, बहुत ही प्यारी आवाज है। जी बिल्कुल, त्याग और समर्पण के लिए अपनी हर खुशी को छोड़कर जिसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, इस दुनिया में कोई और नहीं, वो सिर्फ मेरे पिता हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए ना उम्मीद रहना चाहिए और अकेले जीवन बिताना चाहिए। उत्तम, क्या बातें करना। जी आपकी बात से थोड़े से हम सहमत हैं बिल्कुल, लेकिन आवाज़ अभी मैं आपको पता करके बताता हूँ। जी हाँ, रणवीर सोनी जी है, गुड इवनिंग मनु सर। जी हाँ रणवीर जी, शुभ संध्या आपको भी। नीना जी हैं, नमस्कार सर जी, आदाब आपको, कैसी हैं आप। और इट्स कुमार जी हैं, नमस्कार, स्वीकारें। जी हाँ बिल्कुल, स्वीकार कर लिया। ज़मीन से लेकर आसमान तक मेरी सारी उड़ान आपसे है पापा, मेरी पहचान की सबसे पहली शुरुआत आपसे है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पापा के कंधे पर बैठकर मेला घूमा होगा। हाँ, तो बात कर रहा था मैं शकील आजमी साहब की। तो पुस्तक लिखी उन्होंने जंगल, बाद में टाइटल चेंज किया और नाम लिख दिया उसका वनवास। और उन्होंने किया क्या, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबी है कि रामायण के कई सारे कैरेक्टर पर उन्होंने हर कैरेक्टर पर कुछ लिखा। आज फादर्स डे है और आप सभी लोग परिचित हैं एक कैरेक्टर से जिसका नाम है उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। और अगर आपने, आप सभी लोग रामायण की कहानी सभी जानते होंगे, लगभग मुझको लगता है जितने भी हिंदुस्तानी हैं। तो उर्मिला को रहने दिया गया यहीं पर, लक्ष्मण की पत्नी। उन्होंने टाइटल लिखा शकील आजमी ने उर्मिला के ऊपर, क्या लिखा वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन ये शकील आजमी बोल रहे हैं साहब, हिंदुस्तान का शायर बोल रहा है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। यह जो वनवास था यह खेल हुकूमत का था। अब देखिए नज्म कैसे पढ़ी जाती है, किस लहजे से बात करती है। यह जो वनवास था यह खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दांव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए। इतिहास उठाकर देखिए, हमारे यहां भी देश बटा है, उस का बंटवारा जब मैं कभी जान एलिया साहब को उठाता हूँ तो पार्टीशन का वो दर्द, या मनोवर राणा को उठाता हूँ तो वो दर्द महसूस होता है, अल्लामा इकबाल को उठाता हूँ, मतलब विभाजन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों की हुकूमत के लिए। घर से चले राम जो दुनिया को समेट,
घर से चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पर एहसान किया। अब देखिएगा उर्मिला का जिक्र कम आता है। राम राजा भी थे, भगवान भी इंसान भी थे, राम राजा भी थे, भगवान भी इंसान भी थे, उर्मिला के मगर वे भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, रूह जंगल थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर, दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस, मतलब पिंजरा। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे श्रृंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं, एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा ही नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा ही नहीं। शकील आजमी, किस तरीके से उन्होंने देखा है कैरेक्टर्स को, और हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, जो चश्मा हम पहन लेते हैं, उसी तरह से हमको दुनिया दिखती है।

बन गए हमारे मिस यू पापा। क्या बात है भाई, वास्तव में मतलब सही बात है। जो संबंध हमारे पास नहीं होते हैं उनका महत्व हमको तब समझ में आता है। गांव में एक कहावत है कि घर का कूड़ा और गांव और परिवार का बूढ़ा, ये दोनों कोने में है। लेकिन नहीं साहब, घर का बूढ़ा इंसान घर की इज्जत है। वो अगर घर के सामने बैठा हुआ है ना, आपका पिता टेक लेकर के छड़ी लेकर के भी बैठा हुआ है, तो आपका घर महफूज है। अशु मिश्रा जी हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या आपको। नेहा जी बहराइच से है, नमस्कार सर, आदाब करते हैं आपको भी। और जी पिता की बात करते हैं भाई, ये थोड़ी सी बात कर लें। पिता सबकी नींदों में चले, ख्वाबों में शामिल हो जाएं। सबकी नींदों में चले, ख्वाबों में शामिल हो जाएं। लोग सोए हैं, चलो शहर में दाखिल हो जाएं। लोग सोए हैं, चलो शहर में दाखिल हो जाएं। कीमतें क्या हैं हमारी उसे मालूम नहीं। कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं। उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं। अब देखिए, इस दुनिया के प्रत्येक पिता का दर्द इन दो पंक्तियों में है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप अपनी सहमति या असहमति प्रकट कीजिएगा। दो पंक्तियां हैं कि ऐ मेरी मौत, ऐ मेरी मौत, मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे। ऐ मेरी मौत, मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे। मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए। पिता यही चाहता है, अपने बेटे को सुखी देखना चाहता है साहब। फिर बात करेंगे पिता पर, लौटेंगे इस प्यारी सी गजल के बाद। जी हाँ, फिलहाल सुनिए ये प्यारी सी गजल और लौटते हैं इस प्यारी सी गजल के बाद, और फिर बात करते हैं आज फादर्स डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप

जी, एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय संगीत की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पिता पर चलते हैं और इसके साथ ही एक प्यारी सी गजल सुनाकर आपसे आज लेंगे अनुमति। पिताजी, बाबूजी, कुछ किस्से हैं जो दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, कुछ किस्से हैं जो दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। कुछ किस्से हैं जो दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है। वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी अगर आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और इसके साथ आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। दीपांशु जी, शुभ संध्या, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहार गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गाना 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपसे।

0: उन्नति उठो वहां से।
1: अरे भाई क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो?
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उठो जल्दी वहां से।
1: क्यों, सुबह से थक गई हूँ यार, अभी आकर बैठी हूँ, क्यों उठूं?
0: अरे यार इस कुर्सी पे नहीं बैठना होता, ये मौत की कुर्सी है।
1: मौत की कुर्सी?
0: और क्या, जो बैठता है ना वो सीधा यमराज के पास।
1: भाई ऐसा मत बोलो।
0: और अब तुम कितने दिन के मेहमान हो आए दोनों?
1: यार ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी पॉलिसी के पैसे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं।
0: लेकिन देखो कितने ही दिन की मेहमान हो।
1: वैसे ये बताओ, ये हमारी ये घूमने वाली कुर्सी मौत की कुर्सी बनी कब?
0: देखो यही तो बात है, देखो ऐसे ही लोग डर जाते हैं। लेकिन ये जो मौत की कुर्सी है ना, ये नहीं है, लेकिन एक कुर्सी है जिसपे जो भी बैठता है वो सीधा ऊपर।
1: कितना ऊपर?
0: भगवान के पास।
1: कोई पहचान है उस कुर्सी की? मतलब स्टील की है, लकड़ी की है, किस चीज की बनी है? मतलब मैं देख के पहचानूंगी कैसे?
0: एक कुर्सी जो कि श्राप से बनी है।
2: नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं पर्दा, वो पॉडकास्ट जहां हम वो पर्दे उठाते हैं जो लोग उठाना नहीं चाहते। मैं हूं उन्नति।
0: और मैं आयुषी। और आज का किस्सा एक ऐसी कुर्सी का है जो कि आम सी दिखने वाली कुर्सी है, लकड़ी की, लेकिन बनी हुई है श्राप से। एक पुरानी कुर्सी जिसके बारे में बहुत सी बातें हैं, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में लोग आज भी सुनते हैं तो खौफ खा जाते हैं कुर्सियों से। ये कोई फिल्मी बात नहीं, ये सच में हुआ था। इतना सच कि एक म्यूजियम ने इसको जमीन से उठाकर छत पे लटका दिया ताकि कोई उस पे बैठ ना सके कभी भी।
1: एक कुर्सी को छत से लटकाया? यार ये बहुत अजीब नहीं है? कोई म्यूजियम ऐसा क्यों करेगा?
0: करेगा, वो तो मैं आगे समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर पहले इस स्टोरी को समझते हैं। पहले थोड़ी दूर पीछे चलते हैं, इंग्लैंड में। साल था 1702 और एक आदमी जिसका नाम था थॉमस बस्बी।
1: तो ये थॉमस बस्बी कौन था और क्या करता था?
0: यॉर्कशायर था, इंग्लैंड का एक हिस्सा। वहां पे एक सुनसान, एक खामोश इलाका, वहां थॉमस बस्बी रहता था। बाहर से एक आम आदमी लगता था लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने ससुर डेनियल ऑटी के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाता था, मतलब धोखा करता था।
1: तो दोनों पार्टनर्स थे, ससुर और दामाद?
0: हाँ, वो पार्टनर्स तो थे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अंदर ही अंदर एक दूसरे को देख के खूब जलते थे। और बस्बी को एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी थी जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी, अपने पास के एक पब में रखी एक बहुत ही प्यारी सी कुर्सी। एक ऐसी कुर्सी जो कि कहीं ना कहीं सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। वो कुर्सी सिर्फ उसी की थी, कोई और नहीं बैठ पाता था उसपे। हर कोई जानता था कि बस्बी की कुर्सी पर नहीं बैठना है।
1: कुर्सी के लिए इतना लगाव क्यों?
0: देखो कुछ लोगों को ऐसी चीजें बहुत अजीज होती हैं, कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, और वो कुर्सी बस्बी के लिए वही थी।
1: ठीक है, बट आगे क्या हुआ?
0: एक रात बस्बी वापस आया पब में और उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था जिसका नाम था डेनियल ऑटी, उसका ससुर। बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
1: ओ नो, और मुझे लगता है किसी की पसंदीदा चीज लेना खतरनाक है। फिलहाल बस्बी ने क्या किया?
0: बस्बी ने फिर वो किया जो कि एक बहुत ही खौफनाक कहानी हुई। ऑफ कोर्स किसी की चीज को लेगा तो इंसान तो अपनी असली रूप में आएगा ही। देखो पहले लड़ाई हुई, फिर बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हुई। पैसे का गुस्सा, सालों का गुस्सा, और अब ये, यानी कि कुर्सी का गुस्सा, और सब एक साथ हुआ। और उस रात बस्बी ने अपने ससुर को मार डाला, वो भी हथौड़े से।
1: मार डाला, वो भी सिर्फ एक कुर्सी की वजह से?
0: सिर्फ एक कुर्सी की वजह से।
1: तो फिर बस्बी को पकड़ा गया होगा?
0: हाँ, मुकदमा हुआ, सजा मिली, और सजा थी मौत, यानी कि फांसी। 1702 में यही होता था इंग्लैंड में। जब भी कुछ क्राइम होता था तो कोई माफी नहीं होता था और कोई भी दोबारा मौका भी नहीं दिया जाता था।
1: और उस तरह का आदमी चुप तो बिल्कुल नहीं रहता होगा, और मुझे लगता है कि बस्बी ने मरने से पहले जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा।
0: सही पकड़ा, जब उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो उसने एक मांग की, बोला कि मुझे एक बार बस अपनी कुर्सी पर बैठने दो, बस एक बार, एक आखिरी बार।
1: और सिपाही मान भी गए?
0: मान गए, उन्हें शायद ये लगा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा है, उसे पूरा करना चाहिए। वो उसे पब लेके गए, बस भी अपनी कुर्सी पर बैठा, बस एक घूट पिया, हाथ उसने कुर्सी पर रखा और फिर खड़ा हो गया, मुड़ा पीछे और बोला, जो भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत तय है, अचानक, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरी।
1: ओके, और भाई ये मरने वाला आदमी कुछ भी बोल रहा है।
0: हाँ, फिर उसे ले गए सैंडटन क्रॉस रोड एक चौराहे पे, वहां एक खंभे पर फांसी दी। लाश को वहीं लटका दिया गया घंटों तक ताकि लोग उसे देखें और डरें। पब का नाम बाद में उसी खंभे के नाम पर रख दिया गया, यानी कि बस्बी स्टोपेन। और अंदर अंदर वो कुर्सी वहीं रखी थी एक कोने में, खामोशी में और इंतजार में।
1: इंतजार किसका?
0: यही आगे पता चलेगा।
1: तो बस्बी के मरने के बाद कुर्सी का क्या हुआ? किसी ने उसे हटाया नहीं?
0: नहीं हटाया, कोई छूता ही नहीं था उसको। पब चलती रही, लोग आते रहे, लोग पीते रहे, लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा। बिना किसी के बताए सब जान गए कि वो कुर्सी अलग है, एक कुर्सी जिस पे सिर्फ और सिर्फ बस्बी का हक है।
1: बस्बी के ना रहने के बाद भी इतने सालों तक कोई नहीं बैठा?
0: कुछ सालों तक तो नहीं, लेकिन इंसान का दिमाग भी अजीब होता है, धीरे धीरे भूलने लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो डर को चैलेंज करना चाहते हैं। वो लोग पब में आए और एक रात किस्मत ने पलटा खाया।
1: कैसे, क्या हुआ?
0: अभी बताती हूँ, पहले एकदम गहरी सांस ले लो।
1: तो उस चेयर पे कौन बैठा?
0: बहुत सालों बाद की बात है, 1800 के आखिर में एक चिमनी वाला आया, मतलब जो लोगों के घर में चिमनी साफ करता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। सब खुश थे और उस पब में बैठ के पी रहे थे, हंसे जा रहे थे। किसी ने उसे डराया कि चल बैठा जाए उस कुर्सी पर, या शायद वो खुद ही बैठ गया। ठीक से ये किसी को पता नहीं है कि आखिर उन दोस्तों में क्या बात हुई, लेकिन वो बैठ गया। सबने तालियां बजाई उसके बैठने पर, सब हंसे और वो चुपचाप अपने घर चला गया।
1: फिर कुछ हुआ उसे?
0: अगली सुबह वो मिला उसी जगह पे जहाँ पे बस्बी को फांसी दी गई थी, उसी खंभे के पास लटका हुआ, मरा हुआ।
1: वही जगह? वो वहाँ खुद गया था या कोई लेकर गया था?
0: ये तो आज भी मिस्ट्री है कि वो आखिर वहाँ पे कैसे पहुंचा, और ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, न तब न आज। वो वहाँ था, बस इतना ही सबको पता चला।
1: और ये बात बड़ी मिस्टीरियस है।
0: और ये एक शुरुआत थी, अभी तो मरने का काफिला शुरू ही हुआ था।
1: मतलब उसके मरने के बाद फिर कोई और बैठा?
0: 1940s में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यॉर्कशायर के पास एक कनाडा वाली सेना की जगह थी जहाँ पे जवान रहते थे। वहाँ के जवान लड़के मिशन पे जाते थे, हवाई जहाज से दुश्मन की धरती पर। ये लड़के बस्बी स्टूप इन में आते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे, और उस कुर्सी को सिर्फ दूर से देखते रहते थे।
1: और उन्हें पता था क्या कि ये कुर्सी क्या है?
0: पता था, इसीलिए तो खेल शुरू हुआ उनके बीच। सब एक दूसरे को कहने लग गए, चल बैठ उस पर, अरे हिम्मत तो कर। कोई कहता था कि मैं बैठूंगा, कोई डर जाता था, लेकिन कुछ लोग हिम्मती थे जो हंसते थे और कहते थे बैठ जाते हैं, और वो मिशन पर चले जाते।
1: और क्या फिर वो वापस आए?
0: नहीं, लोग बात करते थे, धीरे धीरे जो भी उस कुर्सी पर बैठता था वो जिंदा नहीं बचता था, उसकी मौत हो जाती थी। जो भी आता उस कुर्सी पर बैठता, उसका जहाज कभी नहीं लौटता। बार बार पूरा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो भी उस पे बैठा वो नहीं था।
1: लेकिन युद्ध में तो मौत होती है ना, ये इत्तफाक भी तो हो सकता है।
0: हो सकता है, लेकिन आगे भी सुनो, फिर तुम खुद सोचना कि ये इत्तफाक था या कोई श्राप। फिर आया साल 1967। और
1: 1967 क्या हुआ था?
0: युद्ध खत्म हो चुका था, पब में एक नया मालिक आ गया था जिसका नाम था टोनी अर्नशॉ। एक रात दो सेना के जवान उस पब में आए, हंसते हुए, बातें करते हुए। टोनी ने उन्हें उस कुर्सी के बारे में बताया और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया बारी बारी उस पर बैठने का, और सब ठाके मार के हंसने लग गए।
1: टोनी ने उन्हें रोका नहीं?
0: रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन जवान लोग मानते कब हैं। वो हंसते हुए निकल गए रात को, अपने हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे और कुछ ही दूरी पे उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई।
1: दोनों टोनी ने क्या ये देखा अपनी आंखों से?
0: नहीं, देखा नहीं, लेकिन सुना, और वो ये बात कभी भी नहीं भूला। उसने कई लोगों को बताई ये बात, और तब से उसने ठान लिया कि इस कुर्सी का कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा।
1: तो क्या किया टोनी ने, क्या किया उस कुर्सी के साथ?
0: पहले उसने उस कुर्सी को नीचे बेसमेंट में रखवा दिया, अंधेरों में, लोगों की नजर से बिल्कुल दूर, लेकिन पहले 1970s में तीन और घटनाएं हुई।
1: तीन, एक के बाद एक?
0: हाँ, अब तुम थोड़ा गौर से सुनो। पहला, एक राजमिस्त्री कुछ काम कर रहा था वहीं पास में बैठकर। लोगों ने उसके बारे में उसको सब चीज बताई कि आखिर ये क्या कुर्सी है, और फिर सबने उसे वहां पे बैठने को कहा। वो बैठा, हंसा और चुपचाप वहां से चला गया। पर कुछ घंटों बाद एक छत से सीधा नीचे गिर गया और वापस कभी नहीं उठा।
1: छत से गिरा सीधा?
0: हाँ, सीधा।
1: और दूसरा?
0: दूसरी थी सफाई करने वाली एक औरत, पब में पोछा लगा रही थी, उसका पांव फिसला और सीधा जाकर वो उस कुर्सी पर गिर गई। एक हफ्ते बाद जाके पता चला कि उसके दिमाग में कुछ हो गया और वो बच नहीं पाई।
1: उसको तो पता भी नहीं था, वो जानती भी नहीं थी और ना वो जानकर उस कुर्सी पर बैठी थी, फिर भी?
0: फिर भी।
1: ओके, अब तीसरा कौन था?
0: तीसरा सबसे अजीब था। कुर्सी बेसमेंट में थी और वहां पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। एक सामान पहुंचाने वाला आदमी आया, नीचे गया और बार बार वो ऊपर से सामान नीचे लेकर आ रहा था। बहुत ज्यादा थक गया, एक कोने में उसने एक कुर्सी देखी और वो वहां पे जाकर बैठ गया सिर्फ आराम करने के लिए।
1: और उस बेचारे को पता भी नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस पर बैठ रहा है वो क्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा होगा उसने। एक घंटे बाद बाहर गया अपना सामान लाने और वहां पे काम करने। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और वो भी गया।
1: बेसमेंट में भी, अंधेरों में भी कुर्सी ने अपना वही काम किया।
0: हाँ, कुर्सी को दिखावट की जरूरत नहीं थी, कोई नाटक नहीं, बस बैठना ही काफी था।
1: फिर टोनी ने क्या किया? इतनी सारी मौतें देख ली थी उसने तो।
0: साल था 1987 और 1987 में टोनी ने थ्रिस्क म्यूजियम को बुलाया। यहाँ एक म्यूजियम है इंग्लैंड में और उसने उनको बुलाकर कहा कि ये कुर्सी को ले जाओ, मैं इसे नहीं रखना चाहता, ये मेरे यहाँ नहीं रहनी चाहिए बस। और फिर म्यूजियम वालों ने उस कुर्सी को ले लिया।
1: म्यूजियम वालों ने उसे रख लिया और उसे पूछा नहीं क्या? फिलहाल वो डरे नहीं?
0: शायद वो डरे, इसीलिए उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया। कुर्सी को जमीन पर नहीं रखा बल्कि छत से ऊपर लटका दिया। पांच हाथ ऊपर उसने इस कुर्सी को लटका दिया और ये सोचा कि इसको ऐसी जगह रखे जहां पे बैठना मुमकिन ही ना हो।
1: पांच हाथ ऊपर, ये तो बहुत अजीब बात है म्यूजियम के लिए।
0: और एक रूल बना दिया गया सफाई करने वालों के लिए, देखभाल करने वालों के लिए, कि कोई भी उस कुर्सी को नीचे नहीं उतारेगा और कभी भी उस पर बैठेगा नहीं।
1: मतलब म्यूजियम वालों ने भी मान लिया था कि ये श्राप सच है?
0: उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर नहीं मानते तो कुर्सी को जमीन पर ही नहीं रख देते, छत पे लटकाए क्यों? और आज भी, यानी कि 2026 में भी, वो कुर्सी वहीं लटकी हुई है। एक छोटी सी तख्ती पर लिख दिया, मौत वाली कुर्सी, थॉमस बस्बी, बैठना मना है।
1: और इसके बाद कोई नहीं बैठा है ना?
0: कोई नहीं, वो लटकी ही रही और बस लटकी। देखती सबको थी लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पाता था।
1: वो वही कुर्सी थी ना सच में जिसपे बस्बी का हक था, जिसपे वो बैठा करता था?
0: यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक पुरानी चीज जांचने वाले डॉक्टर एडम बॉविट, उन्होंने इस कुर्सी को गौर से देखा और कुछ अजीब पाया।
1: क्या?
0: कुर्सी के पीछे एक पतली लकड़ी थी, वो मशीन से बनी हुई थी, लेकिन 1700 में मशीन की कुर्सी बनाई ही नहीं जाती थी, तब हाथ से ही कुर्सियां बना करती थी। बॉविट साहब का कहना था कि ये कुर्सी 1840 से पहले बन ही नहीं सकती।
1: और बस्बी की मौत कब हुई थी?
0: 1702 में। मतलब ये कुर्सी बस्बी के मरने के 138 साल बाद बनी। ये वो कुर्सी है ही नहीं जिस पे बस्बी कभी बैठा करता था।
1: तो मतलब ये अभी तक सब झूठ था। पब ने नई कुर्सी ली, उसकी एक लंबी चौड़ी और बड़ी सी कहानी बना दी।
0: ये एक बात हो सकती है, कहानी से लोग आते थे, लोग बैठते थे और उसका पब भी बहुत चलता था।
1: लेकिन फिर वो मौतें, बिल्डर, सफाई वाली, डिलीवरी वाला, वो सब तो सच था ना?
0: वो सच थे, मौतें हुई, लेकिन कुर्सी की वजह से हुई या वैसे ही, ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया। हम जो चीज पे यकीन करते हैं वो हमारी नजर बदल देती है। जो डर के कुर्सी पर बैठा, शायद वो घबरा के गाड़ी चलाया, शायद वो ध्यान नहीं दे पाया और एक्सीडेंट हो गया। लोग फिर बोलते कि कुर्सी ने मारा।
1: और सफाई वाली, वो डिलीवरी वाला, उन्हें तो पता भी नहीं था।
0: वो एक अलग बात हुई, उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है।
1: आयुषी, तुम खुद क्या मानती हो?
0: मैं सोचती हूँ कि डर बहुत बड़ा होता है। बस भी एक बहुत बुरा आदमी था, लेकिन मरते वक्त उसने एक काम किया। उसने अपनी याद छोड़ने की कोशिश की और वो काम हो गई। 100 सालों बाद भी लोग उस कुर्सी को जानते हैं, बसपी को जानते हैं, और 300 साल बाद भी। यही तो हकीकत है ना?
1: मतलब डर ने ही श्राप को जीवित रखा है।
0: जो सच में डरता है वो घबरा के काम भी करता है, ध्यान नहीं रखता और गलती हो जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि श्राप था। डर खुद ही एक श्राप है।
1: लेकिन फिर वही सवाल आता है कि डिलीवरी वाले को तो पता भी नहीं था, वो तो नहीं डरा था ना?
0: हाँ, और यही बात मुझे भी सोचने पर मजबूर करती है। शायद कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती, और शायद उन्हें समझना जरूरी भी नहीं है। कुछ चीजें वैसे ही रहने देनी चाहिए जैसे वो है।
1: मतलब हर एक चीज से पर्दा उठाना जरूरी नहीं है।
0: हाँ,
1: मतलब वो कुर्सी तो म्यूजियम में है अब, लेकिन वो जगह, वो चौराहा जहाँ फांसी दी गई थी बसवी को, वहाँ कुछ होता है अब भी?
0: लोग रात को वहाँ से गुजरते हैं, कहते हैं कि एक साया दिखा, कोई खड़ा हुआ दिखा, कोई पास से गुजरता हुआ दिखा, और कोई कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है।
1: मैं उस चौराहे से कभी नहीं गुजरने वाली हूँ।
0: हाँ, और वो पब बसवी स्टूप इन 2012 में ही बंद हो गया। अब वहाँ एक खाना घर है, इंडियन खाना मिलता है वहाँ पे, वो भी जयपुर स्पाइस के नाम से।
1: हॉन्टेड पब में अब बिरयानी बेची जा रही है।
0: हाँ, जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन कुर्सी वहाँ नहीं है अब, कुर्सी थ्रिस म्यूजियम में ही है। आज भी वो वहाँ पे लटकी हुई है, 5 हाथ ऊपर।
1: आयुषी यार, मैंने सोचा था कि ये कहानी थोड़ी सीधी होगी, डरावनी होगी, लेकिन ये तो बहुत सोचने पे मजबूर करती है।
0: यही तो अच्छी कहानियों की खासियत है, वो सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, वो अंदर तक उतर जाती हैं। ये सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं है, ये एक आदमी के गुस्से की कहानी है जो मरने के बाद भी कायम रहा। ये एक डर की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और यहाँ एक सवाल है जो हम आज भी मानते हैं, वो कितना असर करता है, कितना हमारे पे काम करता है, और कितना हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
1: और एक बात बताओ, अगर वो कुर्सी जमीन पर हो तो तुम बैठोगी?
0: पहले तुम बताओ।
1: मैं तो पहले से कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं।
0: हाँ हाँ, ठीक जवाब। तो सो आप बताओ, और ये चीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि क्या आप उस कुर्सी पर बैठते अगर वो जमीन पर होती, या फिर उसे इंडिया ले आया जाए और इंडिया के म्यूजियम में रखा जाए।
1: फिलहाल इसी सवाल के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, रात को अकेले मत जाना, और किसी की भी पुरानी कुर्सी पे बैठने से पहले 2 दफा जरूर सोचना।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी आरजे अनोखी। और आज एक अनोखे सफर पे हम चलने वाले हैं। सफर कुछ ऐसा होने वाला है, शमा है, मौसम है, माहौल है और वक्त है रात का। और जब बात आती है रात की, तो हमें सबसे प्यारी जो होती है वो होती है हमारी नींद। और इसीलिए आज हम आपको नींद वाले गानों से रूबरू कराएंगे। हाँ, जिनमें नींद के वर्ड आते हैं, ये नहीं कि आपको सुना के हम सुला देंगे, वैसे आप सो भी सकते हैं चाहे तो। और कुछ एक ऐसी प्यारी सी कहानी की ओर लेके जाएंगे और उसी दौर में उसी स्टोरी के जरिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारे गीतों के, जी हाँ, लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस सफर पे

आज बात सिर्फ नींद पे नहीं होगी, वो नींद जो प्यार भरी होती है, यानी वो रातें जब मोहब्बत नींद चुरा लेती है, बेचैनी जगाती है और यादें हमें जगाए रखती है। आपको पता है मोहब्बत का आगाज कैसे होता है? सबसे पहले तो मोहब्बत की शुरुआत होती है और उसके बाद में उड़ती है तो क्या, नींद। हाय रे हाय, नींद ना आए। जब मोहब्बत सिर चढ़ जाए तो सारी रातें चुप नहीं रहती, ख्वाब भी आंखों से कतराते हुए आती हैं। एक लड़का पहली बार किसी लड़की को देखकर खो जाता है, अब पूरी रात उसके ख्याल में करवटे बदलता है। सोचिए वो रात कैसी होती है जब दिल पहली बार धड़कनों से इजहार करने लगे और आंखों से नींद भाग जाए। तो फिर कौन सा गाना आपके जहन में आए, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वो वाला गाना।

अभी आपने सुना, हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए। चलिए आज एक स्टोरी के जरिए इस मौसम के सफर पे ले चलते हैं आपको। अंजलि एक लड़की जिसने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और चांद बादलों में छुप छुप कर खेल रहा था। दिल अजीब सा धड़क रहा था, जैसे किसी को याद करने का मौसम हो। उसे दिन भर की एक मुलाकात याद आई। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब लेते समय उसकी नजर अर्जुन से टकराई थी। बस कुछ ही पल थे, मगर उन पलों ने रात का सारा सुकून छीन लिया था। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वह बुदबुदाई। क्या बुदबुदाई, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर दिल में एक अजीब सी मिठास थी। लग रहा था जैसे प्यार भरे इस मौसम में हवाएं भी उसी का नाम लेकर गुनगुना रही हूँ। और क्या कह रही हूँ, वही जो भी आपने सुना। हाँ, वही गाना, हाय रे हाय, नींद नहीं आए। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है कि कोई एक पल होता है हमारी जिंदगी का जिसमें हम बंद से जाते हैं, और बड़ा ही प्यारा सा पल होता है, कई दफ़ा हमारी भी नींद उड़ती है। अब आपको वो वाला गीत सुनाएंगे जिसके बोल हैं, बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है। वाकई नींद से ज़्यादा खूबसूरती कहाँ। आप जब थक के बिस्तर पे आते हैं तो सबसे प्यारी आपको नींद ही होती है। कितनी भी ज़रूरी, कितनी भी प्यारी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसको नींद के आगे आप छोड़ दिया करते हैं। लेकिन ये गाना सुनना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा नगमा है। आइए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।

0: अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस सफर की ओर चलते हैं जहां पे होते हैं मुलाकात के वादे। अर्जुन और अंजलि की वो पहली मुलाकात एक चिंगारी बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज कैंपस के पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे दोनों मिलने का वादा कर चुके थे। रात आई तो अंजलि फिर करवटें बदलने लगी। खिड़की के पास खड़े होकर वो आसमान की तरफ देख रही थी। कल की हसीन मुलाकात के लिए आज रात की कुर्बानी करनी ही होगी। मोबाइल पर अर्जुन का मैसेज आता है, सो जाओ वरना कल की मुलाकात में नींद से भरी आंखें तुम्हारी मुस्कान छुपा लेंगी। अंजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा ओके चलो सो जाते हैं। दोनों ने अपने अपने तकिए को गले लगाया और सोचते सोचते सो गए। ख्वाबों में वही बरगद का पेड़ था, वही मुलाकात, और था इंतजार कल की सुबह का। और उस सुबह से पहले एक गाना हो जाए जिसके बोल हैं उसी सफर से जुड़े हुए जो आज हम तय कर रहे हैं अंजलि और अर्जुन के साथ। कल की हसी मुलाकात के लिए, बाकी इस गाने के माध्यम से।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

अब जब ये प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था तो एक और दौर आता है जिसमें हाँ जी शिकायतें भी तो शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तुम इसके कारण हो, ऐसे करते हुए जी हाँ। तो ये दौर है तेरे कारण, हाँ इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। और होती है सुबह, अगली सुबह, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई, अंजलि नींद से जागी तो उसकी आंखें अब भी अधूरी नींद की शिकायत कर रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी क्योंकि अर्जुन आज उससे मिलने वाला था। तैयार होकर जब वो कॉलेज पहुंची तो दूर से ही अर्जुन को बरगद के पेड़ के पास इंतजार करते पाया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और होठों पर वही मासूमियत। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों कल रात नींद बिल्कुल नहीं आई? अंजलि ने शर्माते हुए जवाब दिया, मेरे जो भी हाल थे वो सब बस और बस तुम्हारे कारण थे। दोनों हंस पड़े। उस पल अंजलि के दिल ने पहली बार माना, तेरे कारण ही ये बेचैनी है, तेरे कारण ही ये नींद गायब है और तेरे कारण ही ये मुस्कान भी है। बरगद के नीचे बैठकर उनकी बातें देर तक चलती रही। अब हर करवट, हर नींद, हर मुस्कान सबका कारण वही था, जी हाँ, जो ये गाना बताने वाला है। चलिए फिर इस एक और बेहतरीन सॉन्ग का आनंद लेते हैं और इस सफर को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाना वही, तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण।

दोस्तों, प्यार में तो जागने और सोने का सिलसिला चलता ही रहता है। एक बार किसी की याद आ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है, और अगर आप बहुत उदास हो और उसकी याद आ जाए तो आप मुस्कुराने लगते हो, और बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो किसी से अगर वो एक बार बस कॉल करके आपसे कह दे तो भी आप अपनी सारी नाराज़गी भूल जाते हो। कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार कुछ अनोखा होता है। इस बार जो अनोखा होता है वो ये होता है कि होती है नींद की शिकायत कि मेरी नींद तुम्हारी वजह से उड़ी है। हाँ जी, तो ये शिकायत किस तरह से करती है अंजलि अर्जुन से, आइए जानते हैं। बरगद के नीचे हुई उस प्यारी सी मुलाकात ने अंजलि और अर्जुन के दिल में कुछ ऐसा बो दिया था कि अब दिन छोटा और रातें लंबी होने लगी थी। शाम को जब अंजलि अपने कमरे में आई तो किताब खुली थी मगर पन्ने ठहरे हुए थे। नजरें बस खिड़की से बाहर चांद को एक टक ताके जा रही थी। फोन पर अर्जुन की आवाज आई, क्या कर रही हो? अंजलि ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं, नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, हर जगह बस तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। अर्जुन हंसा, फिर हल्के से बोला, तो क्या करूं, तुम्हारी नींद भी ले आया हूं अपने पास। अंजलि की आंखें भर आई, उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ मेरी नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे पास ही तो है। हाँ मेरी नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे पास ही तो है। उस रात दोनों करवटों में बातें करते करते और नींद को ना जाने अपने पास कब बुला लेते हैं। वो तो कहीं दूर सितारों के बीच छुपकर मुस्कुरा रही थी, पर शायद उनकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। हाँ ज़्यादा मत सोचिए नींद। तो चलिए फिर एक और प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं जो कि 90 के दशक में से जाना जाता है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। आइए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।

आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपनी आरजे अनोखी के साथ, और आज हम जिस सफर पे निकले हैं वो है प्यार और नींद का सफर। जब प्यार में कोई इंसान होता है उसकी नींद उड़ती है या रह जाती है या कहीं से आती है। कुछ ऐसे सफर पे हम चल चुके हैं गीतों के माध्यम से और कहानी के माध्यम से। आज का जो हमारा नायक है वो है अर्जुन और नायिका अंजलि, जिनके प्यार की कहानी हम गुनगुना रहे हैं और आपको गीतों के सफर पर भी लेके जा रहे हैं। आपको कहानी के अंत की ओर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले 90s का एक और हिट सॉन्ग, जी हाँ, इश्क मूवी से ये सॉन्ग, जो कि फिल्माया गया है जूही चावला, काजोल, अजय देवगन और आमिर खान जी पर। सॉन्ग आप खुद ही सुनिए जनाब।

चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं अंजलि और अर्जुन की कहानी की ओर। अंजलि और अर्जुन की बातें रात भर चलती रहीं, दोनों एक दूसरे के साथ खोए रहे और नींद को भूल ही गए। लेकिन जब सुबह हुई तो अर्जुन को अपने परिवार के साथ शहर छोड़ना पड़ा। अंजलि को अर्जुन की याद सताने लगी। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और अर्जुन की यादों में खोई हुई थी। फोन पर अर्जुन की आवाज़ आई। याद सताए, तेरी नींद चुराए, मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना। अंजलि की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी यादें मुझे सताएंगी और मेरी नींद चुराएंगी। अर्जुन ने कहा, मैं जल्दी वापस आऊँगा और हम साथ में रहेंगे, तब तक तुम्हें मेरी यादों में जीना होगा। अंजलि ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यादों में जीऊंगी, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। और उसके बाद उसने लगाया अपने फोन में ये वाला गाना। चलिए आप भी सुनिए। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।

आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपनी आरजे अनोखी के साथ। आपने ट्यून कर रखा है अपना वाला एफएम, जिसका नाम है रेडियो ज्ञानस्ती 89.6 एफएम, जहां आज मैं आपको लेके आई हूँ एक प्यार भरी कहानी की ओर। जी हाँ, ऐसी सफर पे जहां प्यार और नींद की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ ढेर सारी जज्बातों की बातें हो रही हैं। इस कहानी के अंत की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक और सॉन्ग आपके लिए।

श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं इस कहानी के अंत की ओर। बारिश की रात थी और अर्जुन, अंजलि एक दूसरे के साथ बैठे थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, टिप टिप टिप, और उनके दिलों में प्यार की बारिश भी वैसे ही हो रही थी, धीरे धीरे, टिप टिप टिप। हाँ, एकदम सुकून से भरी हुई प्यार की बारिश।

0: अंजलि ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, हाँ, हमारी मोहब्बत ने हमें रोने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। अर्जुन ने अंजलि के आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जीवन को बदल दिया है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, हमारी मोहब्बत सच्ची है और हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए। बारिश की रात में अर्जुन और अंजलि एक दूसरे के साथ खो गए। उनकी मोहब्बत ने उन्हें एक दूसरे के बीच ला दिया था और अब वे कभी अलग नहीं होना चाहते थे। अर्जुन और अंजलि की मोहब्बत सच्ची थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उनकी मोहब्बत ने उन्हें खुशी और संतुष्टि दी। दोस्तों, आप शो सुन रहे थे भूले बिसरे गीत, जो लेके आई थी आपकी आरजे अनोखी। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत और आऊंगी अगले एपिसोड में, आपको ले चलूंगी किसी और सफर पर, किसी और कहानी की ओर, किसी और प्यारी से नोकझोंक की ओर, किसी और जीवन से रूबरू कराते हुए ढेर सारे गीतों की ओर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।